0: प्रिय, किसी का मन ना तोड़ो, देखो सुनो जाने दो छोड़ो।
1: नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी।
0: अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ।
1: जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवान जाए उसके महले।
2: नारद जी।
1: नारायण।

0: नारायण, क्यों बैठी हो खोई खोई? मेरे योग्य है सेवा कोई?
1: भरे नहीं अभी खाओ पुराने, फिर आए हो आग लगाने।
0: मैं सबका सेवक तुम जानो, चाहे परख लो जो ना मानो।
1: कोई उपाय आप बताएं, वो सौतन के घर ना जाए।
0: अच्छा, तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी?
1: वाह वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचाए। निस दिन देखूं जिनके सपने खो बैठूं वो प्रीतम अपने।
0: तुम नहीं समझी कैसा खोना, उनके बराबर तोल के सोना, मोल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना।
1: बस इतना ही? आप करें व्रत की तैयारी, भामा जीती रुक्मिणी हारी।
0: परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना?
1: वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलू, एक नहीं 100 कृष्ण मैं तोलू।
0: नारायण नारायण।

0: सच धोखा है राम दुहाई, इतने भारी नहीं कन्हाई।
1: ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है।
0: मेरे पास जो था ले आई, दे दू मुझको कृष्ण कन्हाई।
1: दे दू लेके जरा सा सोना, मोहन है या कोई खिलौना। चल तुझको संसार में बेचू, दासों के बाजार में बेचू। लो ये तंबूरा बंसी बजैया, पकड़ो ये करताल कन्हैया।
2: भामा
0: स्वामी।
1: कैसा स्वामी, किसका स्वामी? स्वामी की होगी नीलामी।
0: नीलामी?

0: अपना घर जो आप जलाए उसकी बिगड़ी कौन बनाए।
1: भूल हुई मुझसे ये भारी, जाऊं कहां बिरहा की मारी।
0: रुक्मिणी से तुम बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे नाथ ये पूछो।
1: रुक्मिणी मेरी भूल भुला दे, कोई जतन कर कृष्ण मिला दे। आ भामा मैं तुझ पे वारी, तू है मेरे कृष्ण की प्यारी। क्या ये दुख केवल तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है।

ई रेडियो हर पल आपके साथ एमबीसी रेडियो वजह मुस्कुराने की।

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: के घर जन्ने नंदलाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बनी प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी। जन्माष्टमी
1: प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना। रेडियो मॉरिशस पर

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस विशेष कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। भगवान विष्णु के अर्चन की गरिमा, भगवान विष्णु के नाम का एक सीधा सा अर्थ है व्यापक, यह निम्नलिखित प्रमाण से सिद्ध होता है। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु हो पर्वते समस्तके, ज्वला माला कुले विष्णु हो सर्व विष्णु भयम जगत। जल में विष्णु है, स्थल में विष्णु है, पर्वत के शिखर पर भी विष्णु है, तथा अग्नि की ज्वला मालाओं से व्याप्त स्थान में भी विष्णु है। इस प्रकार सारा जगत ही विष्णुमयी है। विष्णु पुराण में आया है, श्रेष्ठे स्थित्वं यत्करणी ही ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम ससंजातम याति भगवान केहम एवं जनार्दनः। एक ही भगवान जनार्दन ब्रह्म विष्णु और महेश नाम के संज्ञाधारक करके सृष्टि स्थिति और संहार किया करते हैं। भगवान विष्णु की व्यापकता भक्ति प्रहलाद की बातों से भी प्रकट होती है। जिस समय हिरण्यकश्यपु की आज्ञा से दैत्यलोक प्रहलाद को मारने आए, उस समय वे निर्भय होकर के कहते हैं, विष्णु शास्त्रेषु युष्मासु मयि चाससो व्यस्थितः दैतय्यास्तेन सत्ये।

माकं कर्माता युधानि च। अरे दैत्य, मेरे भगवान विष्णु इन शास्त्र में भी है, तुम लोगों में भी है और मुझ में भी है, वे सब जगह है। इस परम सत्य के प्रभाव से तुम्हारे इन शस्त्रों का मुझ पर कोई प्रभाव न हो। यूं तो

होता है, जो भक्ति भाव से सरलता पूर्वक इनका स्मरण स्तनव, इनकी मूर्तियों का पूजन, इनके नामों का जप, व्रत एवं उपासक किया करता है, उसका अंतकरण पवित्र हो जाता है और उसे मनोवांछित फल प्राप्त हो जाती है। भगवान विष्णु में सबसे बड़े विशेषता यह है कि ये शत्रु भाव से लड़ने वालों का वध तो करते हैं, किंतु उन्हें सायुज्य सारूप आदि मुक्ति प्रदान करते हैं। यह बात रावण शिशुपाल की कथा पढ़ने वालों से छिपी नहीं है। जब जब देवताओं पर दानवों का अत्याचार बढ़ा, पृथ्वी पर गौ ब्राह्मण साधुओं को पीड़ित किया गया, तब तब भगवान विष्णु ने पालक कर्ता होते हुए भी दुष्टों का दमन करके उनका संहार किया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सब्रम्भका सरोदाश्यम संद्रेण दिवा सहर्षिभिः अर्चयन्ते सुरश्रेष्ठम देवम नारनायाम हरिम। ब्रह्म रुद्र इंद्र तथा ऋषि सहित संपूर्ण देवता सुरश्रेष्ठ नारायण देव श्री हरि की अर्चना करते हैं। भविष्यन्ताम वर्ताताम च भूतानाम चैव भारत सर्वशाम ग्रमे विष्णु सेव्यम पूज्यते नित्यत। भारत नंदन, भगवान विष्णु ही भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में होने वाले समस्त भूतों के अग्रण्य है। अंत सबको सदा उन्हीं की सेवा पूजा करनी चाहिए। महाभारत अनुशासन पर्व के 124वें अध्याय के प्रारंभ में दक्षिणात्य पाठ के एक लघु कथा है, जिससे भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा था। प्राचीन काल की बात है, पुंडरिक नामक एक ब्राह्मण किसी पुण्य तीर्थ में सदा जप किया करते थे। नारद जी ने ब्रह्मा जी द्वारा बताए हुए श्रेण्य मार्ग का उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया कि जो 24 तत्वमयी प्रकृति से भिन्न उसका साक्षात भूत 25वां तत्व पुरुष कहा गया है, तथा जो संपूर्ण भूतों का आत्मा है उसी को नर कहते हैं। नर से संपूर्ण तत्व प्रकट हुए हैं, इसलिए उन्हें नार कहते हैं। नार ही भगवान का विश्वास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायणास्तु जगतम सर्वेनम सर्वकालम प्रजायते तस्मिन्नैव पुनः तस्वम प्रजयते संवृधे। सृष्टि काल में यह सारा जगत नारायण से ही प्रकट होता है और प्रलय काल में उन्हीं में उसका लय हो जाता है। मुहूर्तपेहम यो हो श्यानि नारायण मतिद्रीन सोमी जगद्गति मनोनेतिम निपुस्तया परायणे। जो आलस्य छोड़ कर के दो घड़ी भी नारायण का ध्यान करता है वह भी उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है। फिर जो नर्तन उन्हीं के भजन ध्यान में तत्पर रहता है उसको भी बात ही क्या, उसका भी बात ही क्या। इति ओम शांते शांते।

0: चलिए सुनते हैं आज की पहली फ्लैश करुणा जी से नमस्कार
1: नमस्कार नीलमणि सभी को नमस्कार भक्ति उल्लास और आध्यात्मिक आस्था का पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीनराम गुलाम ने एक नेशनल एविएशन काउंसिल की स्थापना का ऐलान किया जिसकी जिम्मेदारी होगी देश की हवाई नीति की देखरेख करना मैका मॉरिशस ने बम स्टैट्स लॉन्च किया एक नया स्टैटिस्टिकल प्लेटफॉर्म जिसके जरिए औपचारिक आर्थिक व वित्तीय डाटा की उपलब्धि हो सकेगा ज्यादा आसान और पारदर्शी अवसर पर प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के अंतर्राष्ट्रीय छवि को मजबूत करने के लिए स्टैटिस्टिक्स की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की अपनी सरकार की नीति पर जोर दिया और विदेश में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 4 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पाथ से GSLV-F17 EOS मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और अब मौसम की रिपोर्ट हमारे इलाके पर बादलों का असर है अनुमान है कि सुबह के वक्त और दोपहर को भी आसमान में बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी खासकर पूर्व दक्षिण एवं सेंट्रल प्लाटू पर रात के दौरान मौसम सुहाना रहेगा तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 14 से 16 अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 18 से 20 अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी जिसके झोंके कहीं कहीं 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकते हैं प्रवाह रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा दक्षिण पश्चिम में लहरें 3 मीटर तक उठ सकती हैं दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है आज के लिए सूर्योदय 6:16 पर सूर्यास्त होगा 6:02 पर तो पूरा बुलेटिन 6:30 तब तक के लिए अनुमति दें नमस्कार
2: RM3 Radio.

सदकल्लाहुल अलीउल अज़ीम। सामईन इकराम, इसमें कोई शक नहीं कि अगर कुरान करीम को बमंजर ईमान देखा जाए तो पूरा कुरान सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात हैं। रब्बे कदीर ने अपने पाकीज़ा कलाम में नबी रहमत शफीक उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह तरह से तारीफ़ व तौसीफ़ बयां फरमाई। कहीं तो कई कई आयात में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात मौजूद हैं, तो कहीं पूरी सूरत ही सरकारी नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान करती नज़र आती हैं। इसलिए शायर क्या खूब कहता है, इजहार इश्क से तो खुदा भी ना रह सका, इजहार इश्क से तो खुदा भी ना रह सका, तारीफ़ हुस्न मुहम्मद में सारा कुरान लिख दिया।

सामईन कराम, जिस तरह बहार में रंगों की बहुतात बहुत है, उसी तरह रबीउल अव्वल वो रूहानी बहार है जिसमें हमें सुन्नतों के रंग बिखेरने का मौका मिलता है। सरकार नामदार सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा, हर अमल, हर मुस्कुराहट, हर खामोशी एक दर्स है। ये महीना हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा रखने का दर्स देता है। चाहे वो मुस्कुराहट हो, सलाम में पहल हो या खाने की आदाब, हर सुन्नत मुबारका को अपनाना दरअसल रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखने का सबसे खूबसूरत अंदाज है। इसलिए शायर क्या खूब कहता है, तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है।

सामईन कराम, आज का मुआशरा जिन मसाइल का शिकार है, नफरत, तासुब, झूठ, फरेब, इन सब का वाहिद हल आकाए दो जहां दिल बरे जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मौजूद है। सच बोलना, नरम मिजाजी, इंसाफ, रहमदिली, ये सब वो औसाफ हैं जो अगर हम अपनी जिंदगियों में शामिल करेंगे तो हमारा मुआशरा जन्नत का नमूना बन जाएगा। माह रबीउल अव्वल हमें यही पैगाम देता है कि सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं बल्कि अपनाने की चीज़ है।

सामईन इकराम, उर्दू महफिल सबाल खैर में निसार अख्तर एक बार फिर आप लोगों का इस्तकबाल करता है। यूं तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदासराई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल कमालात व मौजजात का जिक्र खा अशार की सूरत में करें या नसर के अंदाज में, ये सब सनाखानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाती हैं। बेशक नाचरीफ जब खुशुलहानी से पर ही जाए तो ये दिलों में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा रोशन करती हैं। सामईन, इसी बात पर आइए ये नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलायजा फरमाइए।

वो कमाले हुस्ने हुजूर है के गुमाने नक्शे जहां नहीं, वो कमाले हुस्ने हुजूर है के गुमाने नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्म है के धुआं नहीं। सामईन कराम, आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेली रहमतुल्लाही अपने इस शेर में फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न ऐसा मुकम्मल है, कामिल है कि कोई नुक्स, कोई कमी का तसव्वुर भी नहीं हो सकता। दुनिया में हर फूल के साथ कांटे होते हैं, हर रोशनी के साथ धुआं,

0: अगर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ऐसी पाकीज़ा है कि ना उसमें कोई ऐब है ना उससे कोई तकलीफ। सामईन, ये शेर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेमिसाल हुस्न ज़ाहिरी और बातिनी की मुकम्मल अकासी करता है। यही इश्क बिलाशुबा ईमान का जौहर है।
1: मेरे

मुअज़्ज़ज़ सामईन, सच्चे आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर जबान से नहीं बल्कि किरदार से होता है, जो अहमद मुज्तबा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है उसकी चाल ढाल में सादगी आ जाती है, उसकी गुफ्तगू में नरमी आ जाती है, उसके दिल में उम्मत का दर्द जाग जाता है। रबीउल अव्वल हमें दावत देता है कि हम अपने अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक पैदा करें, ताकि जब कोई देखे तो कहे ये वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है।

अपना मयार जमाने से जुदा रखते हैं, अपना मयार जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते हैं। मोहतशम सामईन, इसी शेर के साथ हमारी आज की सबाल खैर नशरियात अख्तताम पजीर होती है। ये बज़्म मुस्तफ़ा तो ख़त्म हो रही है, मगर ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ख़त्म न होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा ता क़यामत जारी रहेगा। अल्लाह तबारक व ताला हमें मोहब्बत मुस्तफ़ा, ज़िक्र मुस्तफ़ा, इताअत मुस्तफ़ा, निस्बत मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा, अखलाक मुस्तफ़ा, सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन, इसी खूबसूरत दुआ के साथ अपने मेज़बान निसार अख्तर को इजाज़त दीजिए। आपसे रुख्सत होने का तो दिल नहीं करता, मगर क्या करें, यही दस्तूर है। अगले जुम्मे को फिर हमारी मुलाकात होगी। आइए आखिर में सलातुस्सलाम का नजराना पेश करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, फी अमानिल्लाह।

0: 94.96 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
1: चौराणु 95.6 98.2 तमे सांभळी रह्या छो RM3 रेडियो।
2: टाइम चेक, इट्स 10 AM।
3: दर रोज 10 થી 11 आवो अमारी साथे।
4: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
5: RM3 Manoranjan Radio.
3: Aavo, amari saathe.

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: साड़ी पोगानी
1: काना
0: जड़ी होय तो आल काना जड़ी होय तो आल।
2: तो आज ना अपना पावन कार्यक्रम नी साथे आ पावन पर्व ने अपने खुशी नी साथे हर्ष नी साथे उजवीए अने आज नु आ छेल्लू गीत अपना तमाम कलाकारों ना स्वर में पार्थ भरत ठक्कर नीरेन भट्ट यशिता शर्मा सिद्धार्थ अमित भवसार अने आदित्य गढ़वी ना स्वर में आप सब कोई ने कृष्ण जन्माष्टमी नी पावन पावन कामनाओं नी साथे कार्यक्रम ने अहीं विराम आपीशु। फरी मळीशुं बपोरना पौणा बे वागे। बस त्यां सुधी पण तमे पोतानुं ध्यान राखो। रत्नाने आपो अनुमति। नमस्कार। शुभ दिवस आप सब कोई ने।

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

प्रणाम श्रोताओ, भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में आप सभी का अभिवादन करती हैं पूजा। भगवान श्री कृष्ण के इस जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। श्री कृष्ण केवल मुरली की मधुर धुन ही नहीं अपितु जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। उनकी बाल लीलाओं में सरलता है और उनकी मित्रता में अपनापन है, उनके कर्म में साहस है और उनके उपदेशों में संपूर्ण जीवन का सार छपा है। कहते हैं जब जब अधर्म हुए हैं वे अवतरित हुए हैं धर्म की स्थापना के लिए, और जीवन किस प्रकार से हम जी पाए उसकी सीख देने के लिए परमात्मा अवतरित होते हैं। चलिए इस कार्यक्रम का आरंभ करते हैं गणेश वंदना से।

श्रोताओं कहा जाता है कि कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत कीजिए। जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपने धर्म और

कि आज भी नटखट कान्हा की छवि मन को आनंद से भर देती है। माखन चुराने वाला और बाल गोपाल वास्तव में हमारे मन का प्रेम चुराने वाला है। तो चलिए आज का जो पावन दिन है उसमें बस हम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, आइए भक्ति के साथ इस मंत्र का जाप करते हैं।

0: श्रोताओं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर आज मन को ले चलते हैं उस गोकुल की गलियों में, जहां नन्हे कान्हा की शरारतों से हर आंगन मुस्कुराता था, जहां कभी माखन की मटकी टूटती थी, कभी गोपियां यशोदा मैया से कान्हा की शिकायत करती थी, और कभी वही नटखट बालक अपनी मासूम मुस्कान से सबका क्रोध हर लेता था। बड़े सुंदर भाव से सूरदास जी ने बालकृष्ण की इस मनमोहक लीला को अपनी भक्ति में अमर कर दिया। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कान्हा पर माखन चुराने का आरोप। मैया यशोदा पूछती है, माखन किसने खाया? और नन्हे कृष्ण अपनी भोली सी सफाई देते हैं, मैं नहीं माखन खायो मैया। कान्हा कहते हैं कि मेरे छोटे छोटे हाथ मटकी तक पहुंच ही कैसे सकते हैं, मेरे साथी ही शायद माखन खा गए होंगे, मैं तो निर्दोष हूँ मैया। मैया यशोदा समझती है कि यह नटखट बालक अपनी शरारत छुपाने की कोशिश प्रयत्न कर रहा है, लेकिन कृष्ण की मासूम बातें, उनकी चंचल आंखें और उनकी मोहक मुस्कान देखकर माँ का क्रोध भी प्रेम में बदल जाता है। सूरदास जी की इस लीला के में केवल माखन चोरी का हास्य नहीं, यहाँ माखन प्रेम का प्रतीक है। जहाँ माखन दूध और मथकर प्राप्त होता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में प्रेम, भक्ति और निर्मलता भी अनेक अनुभवों से गुजरकर प्रकट होती है। कान्हा माखन चुराते हैं, पर वास्तव में वे भक्तों के हृदय का प्रेम चुराते हैं। इसीलिए कृष्ण की बाल लीला हमें केवल हंसाती ही नहीं, अपितु हमारे भीतर छिपे प्रेम को भी जगाती है। आज हमारा जीवन बहुत व्यस्त हो गया है, हम सफलता के पीछे भागते हैं, दूसरों के से आगे निकलने की चिंता करते हैं, छोटी छोटी बातों पर तनाव लेते हैं और कई बार जीवन की सरल खुशियां भूल जाते हैं। कान्हा की यह लीला हमें याद दिलाती है, जीवन केवल उपलब्धियां का नाम नहीं है, जीवन उन छोटी छोटी खुशियों का भी नाम है जिन्हें हम भागते हुए पीछे छोड़ देते हैं। चलिए आप सभी के नाम अनुप जलोता जी के वाणी में, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो।
1: ये संसार माया जाल है, बिना इसे छोड़े, इससे नाता तोड़े, भ्रम जाल से मुक्त होने का एक ही सरल साधन है, भक्ति, भजन, भगवान नाम स्मरण और श्रवण। जिसके हम अंश हैं, उसी को अपना सब कुछ समर्पण, यही वो आधार है जिससे ये भवसागर सुगमता से पार किया जा सकता है। भजन कीर्तन उस सच्चिदानंद परमेश्वर का और भक्त का स्वर हो अनुरूप, तो अनुपम अनूप हो जाता है और उस रस की सृष्टि करता है जिसे हमारे ऋषि

भक्ति में शक्ति। श्रोताओं, इसी के साथ हम भक्ति में शक्ति कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। इस जन्माष्टमी पर आप सभी पर परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे, उनकी लीलाओं से लेकर जीवन के सभी सीख अपने जीवन में उतारिए। देखिए, आपको जीवन में सब जो प्रश्न आपके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, सभी के उत्तर भी आपको मिलेंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि जब भी कुछ समझ में ना आए तो हम परमात्मा के शरण में द्वार हम जाते हैं। तो आइए अपने अंदर के सभी बुराइयों का अंत और अच्छाइयों को हम अपनाएं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। पूजा को अनुमति दीजिए। मेरी ओर से सभी को नमस्ते। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। प्रणाम और शुभ दिन।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं करुणा जी, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को नमस्कार। जो लोग इस वर्ष 1 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच 61 वर्ष के हो जाएंगे, उन्हें दिसंबर 2026 तक बेसिक रिटायरमेंट पेंशन प्राप्त होगी। पेंशन का लाभ उठाने के लिए उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए अपने इलाके के सामाजिक सुरक्षा दफ्तर जाना होगा। गौरतलब है कि जनवरी 2027 से बेसिक रिटायरमेंट पेंशन का नाम बदलकर स्टेट एज पेंशन कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने एक नेशनल एविएशन काउंसिल की स्थापना का ऐलान किया है, जिसकी जिम्मेदारी होगी देश की हवाई नीति की देखरेख करना। मैकमोरिशस ने बमस्टाट्स लॉन्च किया, एक नया स्टैटिस्टिकल प्लेटफॉर्म जिसके जरिए औपचारिक आर्थिक व वित्तीय डेटा की उपलब्धि हो सकेगा ज़्यादा आसान और पारदर्शी रूप से। अवसर पर प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के अंतर्राष्ट्रीय छवि को मजबूत करने के लिए स्टैटिस्टिक्स की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की अपनी सरकार की नीति पर जोर दिया। आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी के पर्व का विशेष महत्व है। अर्धरात्रि को विश्व के पालनहार को लड्डू गोपाल के रूप में पालने में झुलाया जाएगा और धरती पर धर्म की रक्षा हेतु और अधर्म के विनाश के लिए अवतरित हुए भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत ही उत्साह एवं प्रेम पूर्वक मनाया जाएगा। विदेश में नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के 9 दिन बाद एक जल विद्युत यानी कि हाइड्रो पावर सुरंग से 2 लोगों को जीवित बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि उसी सुरंग में कम से कम 39 अन्य लोग अभी भी फंसे हुए हैं। नेपाल में ही सरकार का अनुमान है कि हालिया बाढ़ से देश को लगभग $5 अरब का नुकसान हुआ है। ये देश के वार्षिक आर्थिक उत्पादन का 10वां हिस्सा है। ये उस देश पर एक नया बोझ है जिसने जल विद्युत संयंत्रों पर भारी निवेश किया था जो अब नष्ट हो चुके हैं। और भारत में नवी मुंबई से श्रीनगर पहुंची इंडिगो की एक उड़ान आज सुबह श्रीनगर एयरपोर्ट पर पार्किंग के दौरान विजुअल डॉकिंग गाइडेंस सिस्टम के पोल से टकरा गई। घटना में विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, धन्यवाद। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। मेजोनेट गली रिविया डिजांगी में 16 साल की 16-year-old कुमारी अवंतिका डोडान जो मिलिना से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4 बजे इनके पिता आतिन डोडान के मकान मेजोनेट गली रिविया डिजांगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारी जानी रोजबेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फिनरल टुडे एट 4 PM। भारत में

0: 44 साल की 44-year-old श्री शैलेश शर्मा चट्टू, श्री शैलेश शर्मा चट्टू जो श्री गुरुदत्त चट्टू के बेटे थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो हैं शनिवार 5 सितंबर को दिन के 11:30 बजे भारत के समयानुसार महिपालपुर से उठाकर दाह संस्कार के लिए नई दिल्ली की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन सैटरडे एट 11:30 AM। रोट रॉयल पालमा का ट्रिब्यून में 70 साल की 70-year-old श्रीमती मालाबाई लक्ष्मण, श्रीमती मालाबाई लक्ष्मण पैदाइशी नाम हरी जो मालाबाई से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 10:30 बजे इनके पति श्री मारुत लक्ष्मण के मकान रोट रॉयल पालमा का ट्रिब्यून से उठाकर दाह संस्कार के लिए गांधी पालमा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। शोकग्रस्त इन परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
5: Suhana Safar.

के 12:06 हुए हैं। नमस्कार श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। जी हाँ, आज शुक्रवार 4 सितंबर 2024 और दिन के इस प्यारी सी घड़ी में आप सबका स्वागत है सुहाना सफर कार्यक्रम में। और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाऊंगी 2 बजे तक, और आप भी साथ निभाएगा। कहते हैं ना, जहाँ धूप की रोशनी, मुस्कुराहट की मिठास और मधुर गीतों के साथ हम इस दिन को और यादगार बनाएंगे, तो चलिए कुछ हसीन बातें, कुछ प्यारी यादें और मन को छू लेने वाले गीतों के साथ शुरू करते हैं अपना सुहाना सफर। और मैं हूँ आपका साथी उषा कौर, आप सुन रहे हैं एक खूबसूरत सफर गीतों की यादों। और चल पड़ा आज का पहला गाना मन्ना डे साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में।

बजकर 13 मिनट हुए हैं। कहते हैं ना जो पुराने गीत हैं सिर्फ सुर और शब्द नहीं होते बल्कि वो बीते हुए कल की खूबसूरत यादें होते हैं। इन गीतों में मोहब्बत की सादगी, रिश्तों की गहराई और ज़िंदगी की सच्चाई छुपी होती है। दोस्तों आज के इस सुहाना सफ़र में चलिए फिर से एक हसीन लम्हों को उन हसीन लम्हों को ताज़ा करते हैं और जहां हर धुन की हम याद करते हैं। और अगला गाना रोहन जी के लिए जो रहते हैं बुआ शेरी और इस समय हमें सुन रहे हैं साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: दोस्तों, कल 3 सितंबर को हिंदी फिल्म संगीत की मशहूर जोड़ी, मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने अपना जन्मदिन मनाया। और लक्ष्मीकांत जी का जन्म 3 सितंबर 1940 को हुआ था। बचपन से ही उनका रुझान संगीत की तरफ था और उन्होंने बहुत छोटी उम्र से वायोलिन बजाना शुरू किया था। और लक्ष्मीकांत जी के साथ उनकी जोड़ी ने हिंदी फिल्मों को अनेक यादगार धुनें दी। दोस्ती कर संगम सरगम, जहाँ संगम, अमर अकबर, अंटोनी, राम लखन।

जैसे फिल्मों को संगीत आज भी दिलों में बसा हुआ है और प्यारे लाल जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं उनका संगीत यूं ही हर पीढ़ी को दिलों को सुरों से सजाते रहे और कुछ संगीत सिर्फ सुना नहीं जाता महसूस किया जाता है तो चलिए उनका ये गाना हम सुनते हैं

पहले तालियां तो बजा। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

भाव आ रहा है मेरे दिल। जी हाँ, ये खूबसूरत गाना आप सुन रहे थे, रात और दिन फिल्म से लिया गया, और लीडर का गाना भी आपने सुना रफ़ी साहब की आवाज़ में। बहुत धन्यवाद जो आप लोग साथ दे रहे हैं इस समय, और ख़ासकर किरण पुरी, जे जे लाल, नरिंदर कुमार निंदी और काला राम जो रहते हैं वैनकोवर कनाडा में और इस समय हमें सुन रहे हैं। साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और यहाँ पर हमें सुन रही हैं अनीता जी फ्रॉम फ्लक, और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद उनकी उनके दो नाती के लिए, केवंश और जी हाँ केवंश, और आप रहती है फ्लक। साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। और चलिए बढ़ते हैं आगे खूबसूरत गानों को लेकर सुहाना सफ़र प्रोग्राम में किशोरदा की आवाज़ में। ये प्यारा सा गाना सुनते हैं

0: चले थे साथ मिलकर हम चलते रहेंगे हमेशा साथ
1: चले।
0: और यहाँ पर 12:57 हुए हैं और इसी गीत के साथ हम भरेंगे 1 बजे के संक्षिप्त समाचारों की, और हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, एक बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। इस साल पहली सितंबर से 31 दिसंबर के बीच 61 साल के होने वाले लोगों को दिसंबर 2026 तक बेसिक रिटायरमेंट पेंशन मिलेगी। इसके लिए वे अपने इलाके के सोशल सिक्योरिटी दफ्तर में जरूरी दस्तावेजों के साथ पंजीकरण करा सकते हैं। याद रहे कि जनवरी 2027 से बेसिक रिटायरमेंट पेंशन का नाम बदलकर स्टेट एज पेंशन कर दिया जाएगा। पेंशन में बदलाव के लिए श्रमिक संघ संगठन 17 अक्टूबर को पोर्टलुई में शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे। मार्च मारीगन दे ला पे से शुरू होगा। संगठनों की मांग है कि सभी लोगों को बिना शर्त के 60 साल की उम्र से रिटायरमेंट पेंशन दी जाए। मॉरिशस में जल्द ही नेशनल एविएशन काउंसिल बनाया जाएगा। सरकार हवाई सेवा की नीति में बदलाव कर देश को दुनिया के और अधिक बाजारों से जोड़ना चाहती है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और एयर मॉरिशस के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये जानकारी दी। परिषद नई उड़ानों पर सरकार को सलाह देगी, साथ ही देश के आर्थिक हितों और एयर मॉरिशस के भविष्य का भी ध्यान रखेगी। एहतियात है एयरवेज की मॉरिशस के लिए उड़ान शुरू करने पर भी जल्द बातचीत की जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन खतरे को कम कर लोगों की सुरक्षा की जा सकती है। मॉरिशस में नियुक्त ऐसी व्यवस्था पर काम कर रहा है जिससे आपात स्थिति में लोगों के मोबाइल फोन्स पर सीधे चेतावनी भेजी जाएगी। पर्यटक भी ये संदेश पा सकेंगे। सुनामी की चेतावनी भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रीय केंद्रों से मिलती है। मॉरिशस में भूकंप और सुनामी से निपटने के लिए भी योजनाएं तैयार हैं, जिनमें हालात के अनुसार कार्रवाई के 3 स्तर हैं। मॉरिशस की आबादी घट रही है और जन्म तथा मौत की संख्या लगभग बराबर हो गई है। पहली जुलाई 2026 को देश की आबादी 12,40,316 थी। ये एक साल में 3,425 कम हुई है। साल के पहले 6 महीनों में 6,386 जन्म और 6,333 मौतें दर्ज हुई। जन्म करीब 10% की कमी आई है, जबकि मौतें 2% बढ़ी हैं। इस साल नवजात बच्चों की मृत्यु दर भी बढ़ने का अनुमान है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। रॉयल रोड प्लेंडी पपाई में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड के जगदीश रामगति सिबंधन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें रामेश के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनके बेटे विशाल सिबंधन के मकान प्लेंडी पपाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्रियोली की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टूडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv.
3: Upcenter 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
4: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
5: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

कितान मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

दोपहर के 1:10 हुए हैं। श्रोता एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं आरएम फ्री रेडियो, रेडियो मनोरंजन के साथ, और सुहाना सफ़र प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभा रही हूँ। आप भी साथ निभाइएगा और ऐसे खूबसूरत गाने आप लोगों के नाम हम चलाएंगे, 60s और 70s के पॉपुलर गाने, और आपके मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स के लिए भी हम आपको कहते हैं धन्यवाद। चलिए, दिन कैसा गुजर रहे हैं आपका ये भी बता दीजिए, क्योंकि ठंड का मौसम है ना अभी, और कुछ लोग काम भी कर रहे हैं तो काम करते समय हमें सुन रहे हैं। तो आप सभी लोगों के लिए हम अगला गाना पेश करते हैं, प्यार बांटते चलो अपनों के साथ हमेशा, किशोरदा की आवाज़ में।

चलिए इस खूबसूरत सफ़र में हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर आज हम मना रहे हैं कृष्णा जन्माष्टमी और आप सभी को कृष्णा जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और ख़ास गाना हम चलाएंगे 1966 में रिलीज़ हुए फिल्म खानदान से लिया गया रफ़ी साहब की आवाज़ में और ये गाना जाएगा बाबू अनतवा जी के लिए और वो रहते हैं बासा रोड काठरबोन। तो चलिए ये गाना आपके नाम और उन सभी लोगों के लिए जो आज कृष्णा जन्माष्टमी मना रहे हैं।

0: जी हाँ, ये वादा रहा और हम तो कहीं नहीं जाएंगे और इस खूबसूरत सिलसिला को हम जारी रखते हैं। 1970 के गाने आप सुन रहे हैं और ये दशक हिंदी फिल्मी संगीत का एक यादगार दौर था। आइए चलते हैं उसी सुरीले दौर की एक खूबसूरत यात्रा पर और यहाँ पर गीत के साथ जुड़ी है एक प्यारी सी याद।
1: मैं एक और एक डायरेक्टर के साथ काम काफी कर चुका हूँ, जैसे नासिर हुसैन, तो वो भी ऐसा करते थे कि गाना बनाने के टाइम में मेरे साथ शॉर्ट डिवीजन करते थे। कभी कभी वो क्या करते थे कि तुम गाना बनाओ, मैं शॉर्ट डिवीजन करूँगा। तो कभी कभी मुझे बोलते थे कि पहले शॉर्ट डिवीजन करके देता हूँ, तो पूरा शॉर्ट डिवीजन बताते थे और उस शॉर्ट डिवीजन से गाना निकलता था।

0: You're listening RM Free Radio. Radio.
1: दोपहर के 1:54 हुए हैं श्रोताओं, दर्दे जिगर, जी हाँ, कर्ज मूवी से लिया गया। चलिए सुनिए है ये प्यारा सा तराना और इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो चला। जी हाँ, आपने साथ दिया इस खूबसूरत सफ़र में, बहुत धन्यवाद। सुहाना सफ़र कार्यक्रम।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें आस्था से। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, दो बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। इस साल पहली सितंबर से 31 दिसंबर के बीच 61 साल के होने वाले लोगों को दिसंबर 2026 तक बेसिक रिटायरमेंट पेंशन मिलेगी। इसके लिए वे अपने इलाके के सोशल सिक्योरिटी दफ्तर में जरूरी दस्तावेजों के साथ पंजीकरण करा सकते हैं। याद रहे कि जनवरी 2027 से बेसिक रिटायरमेंट पेंशन का नाम बदलकर स्टेट एज पेंशन कर दिया जाएगा। मॉरिशस में जल्द ही नेशनल एविएशन काउंसिल बनाया जाएगा। सरकार हवाई सेवा की नीति में बदलाव कर देश को दुनिया के और अधिक बाजारों से जोड़ना चाहती है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और एयर मॉरिशस के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये जानकारी दी। परिषद नई उड़ानों पर सरकार को सलाह देगी, साथ ही देश के आर्थिक हितों और एयर मॉरिशस के भविष्य का भी ध्यान रखेगी। एतिहाद एयरवेज की मॉरिशस के लिए उड़ान एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और एयर मॉरिशस के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये जानकारी दी। परिषद नई उड़ानों पर सरकार को सलाह देगी, साथ ही देश के आर्थिक हितों और एयर मॉरिशस के भविष्य का भी ध्यान रखेगी। एतिहाद एयरवेज की मॉरिशस के लिए उड़ान शुरू करने पर भी जल्द बातचीत होगी। कुदरती आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन खतरे को कम कर लोगों की सुरक्षा की जा सकती है। इस दिशा में मॉरिशस में नियोक ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे आपात स्थिति में लोगों के मोबाइल फोन पर सीधे चेतावनी भेजी जाएगी। पर्यटक भी ये संदेश पा सकेंगी। सुनामी की चेतावनी भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रीय केंद्रों से मिलती है। मॉरिशस में भूकंप और सुनामी से निपटने के लिए भी योजनाएं तैयार हैं, जिनमें हालात के अनुसार कार्रवाई के 3 स्तर हैं। मॉरिशस की आबादी घट रही है और जन्म तथा मौत की संख्या लगभग बराबर हो गई है। 1 जुलाई 2026 को देश की आबादी 12,40,316 थी। ये एक साल में 3,425 कम हुई है। साल के पहले 6 महीनों में 6,386 जन्म और 6,333 मौतें दर्ज हुई। जन्म में करीब 10% की कमी आई, जबकि मौतें 2% बढ़ी हैं। इस साल नवजात बच्चों की मृत्यु दर भी बढ़ने का अनुमान है। नेपाल में बाढ़ के एक सप्ताह से ज्यादा समय बाद त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग से 2 लोगों को जिंदा निकाला गया है। दोनों घायल हैं और उन्हें काठमांडू के अस्पताल ले जाया गया है। इसी सुरंग में कम से कम 39 लोग अभी फंसे हैं, जबकि दूसरी सुरंगों में से 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। नेपाल तिब्बत से सीमा पर आई इस बाढ़ में 1,300 से ज्यादा लोगों की जानी जा चुकी है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की। एपासुजिए वाली पीटू में 49 ईयर्स ओल्ड के 49 साल के अहमद रेजा रामादियाल इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज दिन के ढाई बजे उनकी पत्नी अली बक्स मेनवाहा सुल्ताना के घर वाली पीटू से निकाल कर दफनाने के लिए बामोशों का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
2: News on NBC Play Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: में हमारी टीम में भाई शिव हैं, उरूसा जी हैं हमारी जानी पहचानी, आप सबकी भी जानी पहचानी, और प्रोडक्शन सीट पर बैठे हुए हैं मिजाम जी। इस टीम के साथ आज के हमारे अतिथि हैं आचार्य रविंद्र मणि त्रिपाठी जी। हमारे साथ आज जन्माष्टमी के उपलक्ष पर आपने यहाँ आना स्वीकार किया, इसके लिए हृदय से आभारी हूँ मैं। आचार्य जी, आपका हृदय की गहराई से स्वागत करती हूँ, अपनी श्रोताओं की ओर से भी और मेरी ओर से भी, और पूरी टीम जो गीत नृत्य और परंपरा के साथ जुड़ी हुई है। 2005 से आप यहाँ पर रोजबेल के मंदिर में कार्यरत हैं, और आज का जो दिन है जन्माष्टमी का उत्सव है, इस उपलक्ष पर आपने यहाँ आना स्वीकार किया, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि एक आपाधापी के जीवन में और एक विशेष तिथि जिसमें कि मंदिरों में आचार्य पंडित जी की आवश्यकता होती है, उस दिन आपने आना स्वीकार किया, ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और आज जन्माष्टमी का दिन है, हमने पिछले दिनों तुलसी जयंती मनाई, कुछ दिन बाद हमें गणेश चतुर्थी मनानी है। ऐसे पर्वों का हमारे जीवन में, हमारी संस्कृति में, हमारी परंपराओं में क्या महत्व पाते हैं आप?
1: ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तनयम् कृष्ण त्वामहं शरणं गत। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सर्वप्रथम मैं आपको और आपके टीम को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। सर्वप्रथम हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में प्रकाश डालते हैं, भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। हम आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, सारे संसार में भगवान कृष्ण की पूजा हो रही है
0: जी।
1: बड़े ही भाग्य की बात है कि भगवान कृष्ण का जन्म जो है, यह उस समय की बात है जब अधर्म की सत्ता जो है, अधर्म जब ज़्यादा बढ़ जाता है और अधर्म की सत्ता जब अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाती है, तब गौ, ब्राह्मण, देवता, ये सब लोग मिल के भगवान के पास जाते हैं, भगवान से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आप अवतार लीजिए और इस संसार में होने वाले अधर्म को समाप्त करिए। तब प्रभु हमारे देवताओं को, गौ को, ब्राह्मणों को, संतों को, संसार में रहने वाले जीवों को कहते हैं कि आप जाइए और समय आने पे मैं अपना अवतार लूँगा। तो इसी स्वरूप को हम लोग यहाँ रखेंगे कि भगवान जब भी अवतार लेते हैं, उनका अवतार लेने के पीछे एक विशेष कारण होता
0: है, कारण रहता है,
1: एक विशेष कारण होता है। वह विशेष कारण क्या होता है? जैसे हम कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, तो भगवान जब इस धरा पे अवतार लिए आए, तो भगवान जब इस धरा पे आते हैं तो उनके आने से यह संसार जो है वो सुखी हो जाता है, धन्य हो जाता है। और यह गीता में एक श्लोक आता है, अध्याय चौथे में जो है ये बात आई, श्लोक सातवां है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य

0: संगीत नृत्य और परंपरा।
1: सभी श्रोताओं का हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं आज के गीत नृत्य और परंपरा।

0: तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय शंभवामि युगे युगे। तो भगवान जब इस धरा में आते हैं तो यदा यह धर्म से, जैसे अभी मैंने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है तब प्रभु इस संसार में प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं और अधर्म को समाप्त करके धर्म की स्थापना करते हैं। तो किसके लिए? साधुओं के लिए, संतों के लिए, महात्माओं के लिए, देवताओं के लिए, इस संसार में रहने वाले जीवों के लिए,
1: प्रजा के लिए,
0: इन सब का उद्धार वो करते हैं। और यही बात उन्होंने कहा, संभवामी युगे युगे, मैं हर युग में अवतार लेता हूँ, हर युग में, द्वापर त्रेता सतयुग और कलयुग। तो भगवान कृष्ण का जो है अवतार जो है वो द्वापर में हुआ था
1: जी।
0: तो द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होने के कारण भगवान भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष, भादो के महीने में कृष्ण पक्ष में, और अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान अवतरित हुए। तो इस बार का जो जन्मोत्सव है वह थोड़ा सा बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही जो विशेष है। क्या है कि इस बार का संयोग जो बना है कि अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र, यह बहुत वर्षों के बाद दोनों एक साथ जो है मिला है। नहीं तो हर वर्ष क्या होता है कि अष्टमी तिथि तो मिलती है, नक्षत्र नहीं मिलता। लेकिन इस बार का जो है वह अष्टमी तिथि भी है और रोहिणी नक्षत्र भी है, और भगवान मध्य रात्रि 12 बजे। तो 12 बजे ही ईश्वर भगवान क्यों प्रकट होते हैं? कारण उस समय का जो मुहूर्त होता है उसको हम अविजिन मुहूर्त बोलते हैं। अविजिन मुहूर्त, राम जी भी 12 बजे दिन में अवतार लेते हैं, वह भी मुहूर्त अविजिन होता है। कृष्ण जी भी अवतार 12 बजे रात्रि में लेते हैं, वह भी अविजिन मुहूर्त होता है। तो भगवान को अविजिन मुहूर्त प्रिय है, भगवान को अविजिन मुहूर्त प्रिय है, इसलिए वो इन्हीं मुहूर्तों में प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं।
1: और हमारी संस्कृति और जो हमारी समाज है वो ऐसी तिथियों को मनाने के लिए गीतों का भी माध्यम चुनते हैं, भजनों का माध्यम होता है और नृत्य उसकी परंपरा है। क्योंकि जब भी व्यक्ति भजन करता है, ईश्वर के साथ जुड़ता है, तो कहीं ना कहीं वे पूरा नृत्य के साथ अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है। इस पर आपका क्या विचार है?
0: बहुत ही सुंदर आपका विचार है। देखिए हमारी परंपरा जो है, आपकी ये जो चैनल है आपका नृत्य
1: गीत नृत्य और परंपरा,
0: गीत नृत्य और परंपरा
1: कार्यक्रम का नाम है
0: जी, कार्यक्रम का नाम। तो देखिए आपका जो यहाँ गीत नृत्य और परंपरा, यह हमारा जो है, हमारी जो संस्कृति है वो क्या है? वो गीत नृत्य परंपरा पे ही तो सब टिकी हुई है।
1: बिल्कुल।
0: अब यहाँ बात आते हैं, हम लोग चलते हैं वृंदावन
1: जी।
0: वृंदावन जहाँ भगवान ने राश किया था,
1: अपनी लीलाएं की थी।
0: तो भगवान ने राश किया, तो वहां पे भगवान ने राश किया तो रास की कथाएं गोपियों के साथ, राश की कथाएं तो बहुत हैं
1: जी।
0: तो हम लोग मुख्य बिंदु पे आते हैं कि भगवान हर जगह जो है वह कला से जुड़े हुए हैं। भगवान की बांसुरी
1: 64 कलाएं।
0: अब भगवान जो है जब अवतार लिए तो यहाँ पे बात आई कि भगवान राम जो है 12 कलाओं से अवतरित हुए, लेकिन भगवान कृष्ण 16 कलाओं से अवतरित हुए
1: जी।
0: भगवान कृष्ण 16 कलाओं से अवतरित हुए हैं। तो भगवान कृष्ण के अंदर जो है उनके साथ क्या है? बांसुरी है। जब भगवान कृष्ण जो है अपनी बांसुरी बजाते हैं तो सारा संसार मंत्रमुग्ध हो जाता है, गोपियाँ मग्धमुग्ध हो जाती हैं। गोपियाँ जो है भगवान के उस बांसुरी को सुन करके मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। अब यहाँ हम बात

0: करेंगे नृत्य की बात आप करें, तो जैसे आप देखते हैं इश्कॉन के लोग, हरे कृष्णा वाले लोग, जब भी वह भगवान के गीत का जो है गान करते हैं, हरे कृष्णा हरे रामा हरे हरे, तो वह जब गान करते हैं तो वह पखावत बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं और नाना प्रकार के वाद्यों को बजा करके, और वह चलते हैं और चल करके नृत्य के माध्यम से भगवान के नाम का स्मरण करते हैं
1: जी।
0: तो कारण यहाँ पे बात आई कि आप भक्ति को कैसे पाएंगे, तो भक्ति को पाने का ये भगवान ने एक हमें जो है आधार दिया कि आप नृत्य के माध्यम से भक्ति को पा सकते हैं, कला के माध्यम से भी भक्ति को पा सकते हैं। कैसे?
1: सुन करके, नृत्य के माध्यम से, अपने भजनों के माध्यम से गिरधारी को पाया
0: एकदम। तो यह उदाहरण के रूप में आप मीरा बाई को ही ले लीजिए
1: जी।
0: उनको लोग कुछ भी कहते रहे लेकिन उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी।
1: बिल्कुल,
0: लोगों ने नाना प्रकार की बातें उनके विषय में बोली लेकिन वह उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ा
1: जी।
0: और यही कारण रहा, उन्हीं का उदाहरण हम लोग लेते हैं मीराबाई का। और भगवान जहाँ भी राश करते हैं तो भगवान के राश में ही जो है नृत्य है, गीत है, संगीत है, और इसी को जो है हमारे इस्कॉन के लोग जो है उसको लेकर के चलते हैं। वह जहाँ भी वह भगवान कृष्ण का जो है वह उत्सव मनाते हैं तो उसमें जो है उनकी जो है सारे वाद्य होते हैं, और वो जो है अपने वाद्य के साथ जो है नृत्य के साथ जो है भगवान के नाम का स्मरण करते हैं।
1: चलिए, आपने इतनी अच्छी तरह से हमारे श्रोताओं को ये सब समझाया, एक गीत के माध्यम से इस कार्यक्रम को सजाते हैं, फिर चर्चा जारी रहेगी।

0: संगीत नृत्य और परंपरा।
1: सभी श्रोताओं और दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं एक बार फिर से। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कार्यक्रम में आचार्य त्रिपाठी जी, जो जन्माष्टमी पर बहुत सारी चर्चा करने जा रहे हैं और भारत में इस समय आज के दिन झांकियां सजाई जाती हैं, चाहे वे मंदिर हो, चाहे वे घर में आपका देवालय हो, उसमें भी एक छोटी सी बाल गोपाल की मूर्ति, कुछ फूल, कुछ तोरण ऐसे सजाए जाते हैं। और मंदिरों में तो खास करके झांकियां सजाई जाती हैं, एक तरफ देव की माँ के साथ कृष्ण हैं, एक तरफ यशोदा मैया के साथ हैं, नंद बाबा के साथ हैं, तो ऐसी झांकियों का प्रचलन है। और मॉरिशस में इस्कॉन मंदिर, जो कि फिनिक्स में पाया जाता है, और बोनाकेई में भी एक इस्कॉन का मंदिर है, वो खूब भव्य रूप से सजाए जाते हैं, वहाँ पर प्रार्थना पूजा होती है। आज तो वहाँ पर खास करके बहुत लोग गए होंगे और शाम को और ज़्यादा जाएंगे। आपका इस पर अनुभव क्या है? क्या सभी मंदिरों में, क्योंकि आप रोजबेल में हैं, सभी मंदिरों में ऐसी सजावट होती है? परंपरा के साथ साथ हमारी संस्कृति भी इससे जुड़ती है, संस्कृति भी कि हम ऐसी सजावट, ऐसा प्रारूप देखते हैं कि जब बाल गोपाल का अवतरण होता है तो चारों ओर सजावट ही सजावट पाते हैं। आचार्य जी,
2: प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय।
1: जी,
2: भगवान कृष्ण का नाम उनके नाम में ही आकर्षण है। एक श्लोक है, करसति आकर्षति इति कृष्णः। करसति मतलब जो खींच ले, जो खींच ले। तो भगवान कृष्ण जो है क्या खींचते हैं? दुख को, रोग को, समस्याओं को, कष्ट को, इन सब को जो खींच के

0: हटा दे, उनके नाम में ही ये वर्णन है। और यहाँ आकर्षति, जो आकर्षण का केंद्र भी हैं, जिनके नाम लेने मात्र से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएं, वही कृष्ण हैं। उनके नाम में ही आकर्षण है। यहाँ पे करसति आकर्षति इति कृष्णः, अर्थात जो आकर्षण का केंद्र है, और इस संसार में जो सब कुछ दे सकता है, और उनके अंदर आकर्षण, जिनको जैसे भगवान सांवले हैं, तो भगवान सांवले हैं, तो सांवले सलोने, तो वह सांवले हमारे भगवान जब सांवले हुए तो इस तरह का जो है उनका प्रभाव है, अगर गोरे होते तब क्या होता,
1: क्या होता, बिल्कुल।
0: हाँ, तो सांवले में ही जो है इतना बड़ा प्रभाव। तो अगर वास्तविक रूप में, अगर वो अगर अपना वास्तविक रूप लेकर के इस संसार में प्रकट होते, अवतार लेते, इसलिए भगवान सांवले हो गए
1: जी।
0: भगवान सांवले हो गए क्योंकि नहीं, मैं अपना वास्तविक स्वरूप जो है वह नहीं लेकर के प्रकट होऊंगा, वो भगवान जो है सांवले स्वरूप में आए और मध्य रात्रि में आए।
1: अब हम झांकियों की बात करते हैं,
0: मध्य रात्रि में
1: प्रकार झांकियां सजाई जाती हैं भारत में, हर मंदिर में झांकियां। हम बचपन में स्वयं जाते थे झांकियां सजाने, और एक से दूसरी झांकी किस प्रकार से ज्यादा सुंदर है, इसमें एक प्रतियोगिता रूप आता था।
0: जी जी, भारतवर्ष की बात मैं आपको बताता हूँ
1: जी।
0: भारतवर्ष में सभी जगहों पे घरों में जो है, घरों में लोग जो है अपने घरों को जो है दिव्य सजाते हैं, सजा करके जो है, और भारतवर्ष की एक परंपरा भी है कि सभी लोग घरों में तो जो है सभी लोग जो है एक नाना प्रकार के वृक्षों को लगाते हैं, वहाँ पे पहाड़ बनाते हैं लोग
1: जी,
0: पहाड़ जो है ईंट पत्थर
1: से
0: जो है,
1: पीछे यमुना नदी का भी हाँ, रूप दिखाते
0: जी,
1: थे
0: जी,
1: पहाड़ एक छोटी सी चद्दर, छोटी सी चुन्नी
0: नदियां बनाते
1: के।
0: हैं
1: जी।
0: और ये सब जो है एक बुरादे को जो है रंग करके, और वहाँ पे जो सारे जितने उनके घर के खिलौने हैं,
1: पूरी झांकी,
0: वो सारे खिलौने ला करके वो सजा देते हैं, और जिनके पास खिलौने नहीं भी होते हैं खरीद करके ला करके वो सजाते हैं, उनका एक रूम जो है वो खिलौनों से भर जाता है।
1: खिलौने इतने मिलते हैं, छोटे से कान्हा बाल गोपाल
0: जी,
1: बहुत सुंदर,
0: और भगवान को पालने में बिठा करके, और पूरा वृंदावन वाला स्वरूप जो है वह प्रकट करते हैं
1: बिल्कुल। और यहाँ पर भी मॉरिशस में भी इस्कॉन मंदिर खूब सजाए जाते हैं
0: जी जी जी। और यह तो बड़े ही भाग्य की बात है कि यहाँ पे इस्कॉन मंदिर के माध्यम से, और यहाँ जितने भी मंदिर हैं, सभी मंदिरों में अपने अपने स्वरूप में सभी लोग भगवान का श्रृंगार करते हैं, क्योंकि भगवान तो आकर्षण का केंद्र है
1: बिल्कुल।
0: और वो जहाँ रहते हैं वहाँ रास होने लगता है, नृत्य होने लगता है, और भगवान जहाँ रहते हैं वो स्वयं ही आकर्षण है, इसलिए भगवान
1: तो उनकी लीला से हम कहाँ बच सकते हैं,
0: कहाँ बच सकते हैं एकदम से। और इसलिए भगवान जो है वो उनका जहाँ भी सजावट होता है, देखिए यहाँ पे इस्कॉन वाले और अन्य मंदिर के लोग जो लोग भी हैं वो बड़े ही सुंदर ढंग से अपने मंदिरों को सजाते हैं, और सजा करके भगवान की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, और रात्रि में जो है मध्य रात्रि में 12 बजे भगवान जो है प्रकट होते हैं
1: जी।
0: तो भगवान के प्रकट होने का जो मुख्य जो है बात जो है, भगवान अत्याचार को समाप्त करके, अधर्म को समाप्त करके, और इस प्रकाश रूपी कृष्ण का अवतरण होता है। भगवान कृष्ण के अवतरण से इस संसार में प्रकाश का आगमन होता है। जब ये अधर्म, उस समय जब सारे संसार में अधर्म की सत्ता थी, उस समय भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ, अर्थात प्रकट हुए भगवान। इसलिए भगवान जो है प्रकाश रूपी कृष्ण का अवतार हुआ
1: जी। अब मैं बात करती हूँ, हम जब कृष्ण के बाल रूप को देखते हैं तो यशोदा मैया के साथ सबसे सुंदर जो साहित्य में हम पाते हैं वे है सूरदास की जो दोहे हैं, उनमें हम बाल रूप को वात्सल्य

0: पूरा जो उन्होंने साहित्य रूप में दिया है वो मेरे ख्याल से सूरदास का जो चिंतन है, सूरदास की दृष्टि से जो दिखाया गया हमें वो है। उसके बाद गोपियों के साथ रासलीला हुई और उसके बाद महाभारत में जाकर गीता का उपदेश, जिससे आज भी हमारा समाज मार्गदर्शन पाता है। बहुत सारे लोग गीता पढ़ते हैं और उस एक पृष्ठ पढ़ना, दो पृष्ठ पढ़ना, ये हर एक के अपने समय के ऊपर है, पर उससे मार्गदर्शन प्राप्त करना ये एक बहुत बड़ी बात है कि किस समय द्वापर में श्री कृष्ण ने गीता उपदेश दिया अर्जुन को, और वो आज भी, आज के इस आपाधापी जीवन में भी हमारे लिए समकालीन पाते हैं। इस पर आपका क्या विचार है आचार्य जी?
1: बहुत ही सुंदर विचार है आपका। देखिए, गीता में भगवान
0: कृष्ण की बात करें और गीता को ना जोड़ें तो ये
1: गीता में भगवान ने सब कुछ बता दिया है
0: जी,
1: कुछ उसमें बाकी नहीं रह गया है। इसी में जो है एक बात आई कि कर्म अंडे वारिका रस्ते माँ फलेशु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भु माते शंगोस्त कर्मणि। और भगवान गीता में यह बताते हैं हमको कि किस प्रकार से जीवन में जो है जब कोई संकट आ जाए तो ये उपदेश भगवान कहाँ दे रहे हैं? भगवान तो
0: कुरुक्षेत्र
1: में खड़े हैं, एकदम फ्रंट पे खड़े हैं और वहाँ युद्ध होनी है और अर्जुन जो है अपना जो है
0: गांडीव छोड़ दिया है,
1: नीचे रख दिया
0: जी।
1: लेकिन उनको मालूम नहीं कि स्वयं जो है साक्षात परमेश्वर उनके साथ
0: खड़े
1: हैं, खड़े
0: सारथी हैं, उनके
1: सारथी हैं उनके। तो इस चीज का ज्ञान उनको अर्जुन को कराना है। और दूसरी बात कि जब अधर्म सामने हो,
0: चाहे वे रिश्तों के रूप
1: में, हाँ, जब अधर्म सामने हो और धर्म जो है वहां पे विराजमान हो तो अधर्म को समाप्त करना ही धर्म की जो है, धर्म का जो है यह मुख्य उद्देश्य हो जाता है। तो अधर्म को समाप्त वहां करना है, मुख्य उद्देश्य भगवान का यही है। तो यही गीता में बहुत सारी बातें हैं, तो हम लोग मुख्य बिंदु में यही लेंगे कि भगवान को वहां अधर्म समाप्त करना है। वहाँ ना कोई चाचा है, ना भतीजा है, ना पिता है,
0: ना
1: भाई है, ना बंधु है, ना मित्र है, कोई जो है वह भगवान के दृष्टिकोण से वहाँ यह भगवान ईश्वर को यह दिखाई पड़ रही कि मेरे सामने जो है यह सब कुछ जो है वह अधर्म है,
0: अधर्म है, शत्रु है।
1: हाँ, तो ईश्वर के दृष्टिकोण से वहाँ जो है वह सब अधर्म है, इसलिए उसको समाप्त करके धर्म की स्थापना के लिए ही तो भगवान का अवतरण हुआ है, इसलिए तो वो प्रकट हुए हैं, इसीलिए तो अवतार लिए हैं।
0: तो आज भी मैनेजमेंट की क्लास में जब शिक्षा देते हैं गीता को सामने रखा जाता है, गीता का मार्गदर्शन सब तक पहुँचता है। आज भी छात्रों के लिए ये एक विशेष ज्ञान है। हम कोर्ट में भी जाते हैं तो गीता ही समक्ष रखी जाती है
1: जी।
0: पर इस ये इतना बड़ा ज्ञान आज भी हमारे लिए बहुत मार्गदर्शन रूप में है हमारे समक्ष। उस समय जो भगवान ने दिखाया, चाहे वे यशोदा मैया ने भी जब उनका मुंह देखा, खोला, उन्होंने माटी खाई थी, उनका मुंह खोला, साफ किया, तो भगवान ने अपना रूप दिखा दिया यशोदा मैया को, जो वो स्वयं सहन नहीं कर पाए कि मेरा लल्ला जो है पूरी सृष्टि को समाये हुए हैं। तो ये सब भगवान समय समय पर बताते आए, दिखाते आए। आज के समय में भी इतना कुछ हो रहा है, जीवन में इतनी आपाधापी है, कहाँ हम उस मार्गदर्शन को जोड़ पाते हैं
1: जी। देखिए, गीता एक बहुत बड़ी चीज है
0: जी,
1: और गीता को सभी लोग समझ भी नहीं पाते हैं। गीता में भगवान ने जो सारी चीज़ें अर्जुन को समझाई है, बताई है, उसके माध्यम से हम लोग आज भी उन श्लोकों का स्मरण करते हैं, पढ़ते हैं और उसमें हमारे जीवन के सभी चीज जो है,
0: संस्कृति जुड़ी हुई जी, है, हमारे
1: धर्म संस्कृति परंपराएं, ये सब कुछ उसमें जुड़ा हुआ है। और भगवान यह अर्जुन को

0: बता रहे हैं और उसके माध्यम से वो सारी चीजें जनमानस तक पहुंचा
1: जी,
0: उसका लाभ ये भी हुआ कि भगवान के मुख से उतनी बड़ी गीता का जो है वहां पे उच्चारण हुआ, भगवान ने अपने श्रीमुख से उस चीज को बताया और यह भी हम तक आज गीता हम लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। यह नारायण की कृपा है, कृष्ण की कृपा है कि हम लोग आज उसको पढ़ पा रहे हैं। तो ये समाज में
1: जो समय पर उदाहरण है हमारे
0: जी
1: लिए।
0: समाज में ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम लोग गीता के बताए हुए श्लोकों को अगर पढ़ें, उस रास्ते पे चलें, तो हमें जीवन में कभी भी अंधकार का सामना नहीं करना पड़ेगा।
1: और
0: गीता जो है वह प्रकाश ही तो है, गीता वह प्रकाश है। जो गीता को पढ़ लेता है वह अंधकार से जो है दूर हो जाता है, वह प्रकाश की तरफ चल देता है। तो गीता क्या है, वो प्रकाश ही तो है, प्रकाश पुंज है, और उसको जो पढ़ लेता है उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है।
1: बहुत बड़ी बात आपने कही, पर आज की स्थिति जो है, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे से अपनी संस्कृति, अपनी समाज, अपने माता पिता के कहने पर चलते हैं, पर एक तरफ आज मोबाइल बहुत कुछ सिखाते हुए कहीं ना कहीं भटका भी रहा है, चाहे वे छात्र हों, चाहे वे घर पर माता पिता हों, समाज में लोग जो कार्यरत हैं वे भी उनको भटका देता है, क्योंकि जो व्हाट्सएप की विश्वविद्यालय है वो कहीं ना कहीं भटकाता है आपको
0: जी।
1: इस पर
0: जी,
1: आपका क्या विचार है?
0: आपने बड़ा ही सुंदर जो है प्रश्न किया है। आज संसार में अगर
1: हर कोई ज्ञानी बन रहा है
0: जी जी, सबसे अगर कोई पीड़ादायक वस्तु है तो यही है। तो इसको जो है मनुष्य जो है अगर इस विषय को समझ जाए कि उससे हमें क्या अर्जन करना है और क्या अर्जन नहीं करना है
1: जी,
0: दो वस्तुएं हैं,
1: अलग पहचान पाए
0: जी जी,
1: कि इससे क्या तो अच्छा प्राप्त कर सकते हैं और क्या छोड़ सकते हैं।
0: खराब नहीं है, लेकिन क्या उससे हमें लेना क्या है
1: जी? बिल्कुल,
0: क्योंकि जब रात है तो दिन है, दिन है तो रात है, तो उसी प्रकार से जो है
1: सावन गया तो भादो आया,
0: भादो आया, हाँ,
1: भादो पहले नहीं आ सकता है, सावन बाद में नहीं आ सकता
0: जी,
1: है।
0: जी जी जी, तो उसी प्रकार से उसमें से हमें लेना क्या है
1: जी,
0: तो हमें ये हमें समझना होगा कि हमें उसमें से क्या लेना है। तो जो हमें लेना है वो हमें अवश्य लेनी चाहिए, लेकिन उसमें ही समाहित नहीं होना चाहिए।
1: हाँ, जब हम गीता का ज्ञान कहते हैं कर्म कर किए जा फल की इच्छा मत कर, पर व्यक्ति विशेष को कर्म तो सही कर्म करने की दिशा दिखा रही है गीता, आपको गलत कर्म करने की दिशा नहीं दिखाती है गीता। तो ये पहचानना आवश्यक है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है।
0: गलत है जी, एकदम सही कहा आपने। तो हमें ये इसको भी समझना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं,
1: अपनी दिशा पहचानें।
0: हाँ, हम किधर जा रहे हैं, तो हम हमारे जो दिशा है उस दिशा को हम पहचानें और उसमें से जो हमारे कार्य की जो वस्तुएं हैं, जो हमारे योग्य की वस्तुएं हैं, उन्हें ही हम ग्रहण करें, और जो ग्रहण करने योग्य चीज नहीं है उनको हम ग्रहण ना करें,
1: छोड़ दें
0: जी, उन्हें हम छोड़ दें, तो हमारे लिए वह लाभकारी होगा, अन्यथा वह जो है हमारे किसी कार्य का जो है नहीं रह जाएगा। और इन सारी चीज़ों में जो है यह मनुष्य को स्वयं समझना है, जो इन सारी चीज़ों को समझ लेगा उसके जीवन में कोई रुकावट नहीं
1: आएगी
0: जी।
1: बहुत धन्यवाद आपके विचारों के लिए। एक गीत के साथ ही टीम कार्यक्रम को सजा रही है, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी।

हरे कृष्ण धुन गाते गाते एक कुएं में गिर गए। कृष्ण को पुकार लगाई, कृष्ण आ गए और ले चले सूरदास को कुएं से निकाल कर बाहर। सूरदास तो समझ गए ये और कोई नहीं, ये मेरे कन्हैया हैं। पकड़ लिया हाथ। कृष्ण बोले अब तो छोड़ दो, मैं तो तुम्हें छुड़ाने आया था बस। सूरदास बोले नहीं, तुम और कोई नहीं, मेरे कन्हैया हो। कन्हैया बोले नहीं सूर, मैं तो बस साधारण ग्रामीण हूं, यहां से गुजर रहा था, तुम्हें गिरे हुए देखा तो निकाल दिया। सूरदास ने कहा नहीं, मैं जानता हूं तुम कौन हो, तुम ही मेरे कन्हैया हो। और कृष्ण ने

0: संगीत नृत्य और परंपरा।
1: एक बार फिर आप सब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं गीत नृत्य और परंपरा। आज के हमारे अतिथि आचार्य त्रिपाठी जी हमारे साथ बहुत सारी जानकारियां बांट रहे हैं श्रोताओं के लिए। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है कि किस प्रकार रास लीला, और चाहे वे दुर्गा पूजा ही लें, नवदुर्गा के समय खूब नृत्य होता है, कृष्ण जन्माष्टमी पर भी रास लीलाएं रचाई जाती हैं, राम भक्ति में भी राम लीला दिखाई जाती है। राम लीला अलग है पर कृष्ण लीला बिल्कुल अलग पाई जाती है, जिसमें कि खूब नृत्य होता है और कहीं ना कहीं हम समाज से जुड़ते हैं, चाहे वे बच्चे हों चाहे वे बड़े हों। जब रास लीला होती है, भजन होते हैं मंदिरों में, तो कहीं ना कहीं समाज एक रूपता पाता है। इस पर आपका विचार।
2: देखिए, भगवान कृष्ण की कथाओं में जो है रास का वर्णन आता है
1: जी,
2: तो वृंदावन में भगवान कृष्ण ने जो है रास किया था
1: जी,
2: तो वहाँ पे भगवान कृष्ण जो हैं वह नृत्य के माध्यम से, वाद्य के माध्यम से, रास के माध्यम से उन्होंने जो है, जहाँ भी आप देख लीजिए, उन्होंने इसका जो है इस पे विशेष जो है बल दिया है। कारण यह है कि इससे जो है जब हम कोई भी भजन करते हैं, तो भजन जब हम करते हैं तो सारे लोग इकट्ठे होते हैं, और उतने लोगों का जो मन है, जो दिमाग है, जो मन मस्तिष्क है, वह कृष्ण के प्रति समाहित हो जाता है। जैसे कोई हम भजन कृष्ण का ही कर रहे हैं, तो जब भजन कृष्ण का जब करेंगे तो उन समयों में जितने लोग भी वहाँ बैठे रहते हैं, एकत्रित रहते हैं, तो यह समाज को एकत्रित भी करता है, संगठित भी करता है, और हमारे समाज से बुराइयों को भी समाप्त करता है और शक्ति भी प्रदान करता है। दूसरी चीज़ जो है, हमारा मन जो है, जो भक्ति में पहले नहीं लग रहा था, तो भगवान ने एक जो ये संगीत का जो माध्यम बना, तो संगीत के माध्यम से हमारा मन कृष्ण के भक्ति में समाहित हो गया, क्योंकि हमारा समर्पित हो गया। हमारा मन पहले भक्ति में नहीं था, हम भक्ति में हम थोड़ा भी ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब हम गीत के माध्यम में आए, संगीत के माध्यम में आए, नृत्य के माध्यम में आए, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। तो इस्कॉन और नाना प्रकार के लोग जो हैं, ये लोग जो है इस धारा से, इस तरीके से जो है संसार के लोगों को जोड़ते हैं, और उनको जोड़ करके इस नृत्य संगीत और कला के माध्यम से भगवान कृष्ण की बात उसकी अंतरात्मा तक पहुंचाते हैं। ये एक माध्यम हो गया, एक सीढ़ी हो गया, क्योंकि आज का जो जनमानस है उसका मन जो है वो स्थिर नहीं है,
1: भटका हुआ है,
2: तो उसको स्थिर हम कैसे करेंगे? तो स्थिर करने का एक माध्यम क्या है? यह भजन, नृत्य, संगीत।
1: आज लोग कहते हैं मेडिटेशन करो, पर जब आपका मन ही नहीं लग रहा है, मेडिटेशन कैसे होगी? भजन एक सुंदर माध्यम हो सकता है,
2: माध्यम है। तो इसलिए अगर वहां तक, क्योंकि उसका मन तो नहीं लग रहा है, भक्ति में वो समर्पित नहीं है,
1: बिल्कुल,
2: तो इसलिए अब उसको हम यह एक माध्यम बना करके कि उसको हम पहले भक्ति में लाना है, तो हमें पहले उसको यहाँ पे एक संगीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से,
1: ऊर्जा से जोड़ने की आवश्यकता है।
2: तो पहले हम उसको यह बात बतानी होगी ना, उसको समझानी होगी कि भाई ये भगवान है कौन, कृष्ण है कौन, और इनके विषय में जब वो सुनेगा, जानेगा, तो उन भजनों को जब सुनेगा, संगीत को सुनेगा, तब उसे ज्ञान होगा कि ये हमारे परमात्मा इतने पावरफुल
1: तो
2: हैं।
1: तो हमारी संस्कृति कितनी गूढ़ संस्कृति है, कितनी विशेष है कि समय समय पर, देखिए आज हम कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, कुछ दिन उपरांत हम गणेश चतुर्थी मनाएंगे, अक्टूबर के महीने में हम नवदुर्गा

0: की पूजा करेंगे। तो समय समय पर ईश्वर ने हमें ये दृष्टि दिखाई या मार्ग दिखाया कि समय समय पर भजन कीर्तन गीत संगीत नृत्य के साथ जुड़कर आप अपने सही मार्ग तक पहुंच पाएंगे और वो सही मार्ग आपको सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा।
1: जी जी, आपने बड़ा प्रश्न किया, लेकिन मैं एक बात आपको बोल रहा हूँ
0: जी
1: कि आप जितने भी ग्रंथ उठा लीजिए उन ग्रंथों में ये बात आती है कि आप भगवान को प्राप्त करने का कौन सा साधन सुनना चाहते हैं, मतलब किस साधन में आप जाना चाहते हैं। तो बात आई कि भगवान कैसे मिलेंगे, तो बात आई कि आप श्रवण करिए भगवान मिल जाएंगे
0: जी।
1: फिर बात आई अगर जो श्रवण नहीं कर सकता तो वो क्या करे, अरे ठीक है आप श्रवण नहीं कर सकते, आप मनन कर लीजिए
0: जी।
1: तो कोई ऐसा भी आदमी है कि वो मनन भी नहीं कर सकता, तो बात आई कि कोई बात तो श्रवण नहीं कर सकता मनन भी नहीं कर सकता तो कीर्तन कर ले
0: जी।
1: अब इससे साधारण कोई वस्तु हो सकती है, और इस कलिकाल में भगवान कीर्तन से ही प्राप्त हो जाते हैं। हाँ
0: जी,
1: नारायण जो है भगवान का नाम ही आधार है,
0: बिल्कुल
1: नाम आधारा, भगवान का नाम से ही जो है वह सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ कीर्तन की जो बात आई तो कीर्तन एक बहुत बड़ी चीज है, कीर्तन में ही भगवान मिलते हैं, तो कीर्तन के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो यह एक साधन एक सीढ़ी हो गई। अब बात आपकी है, तो इसमें ये बात है कि भगवान कृष्ण जो हैं हमें बहुत इनसे सीखने को मिलता है। भगवान कृष्ण जो है 16 कलाओं से अवतरित हुए और मध्यरात्रि में आए, इनके आने से संसार में जो है सब कुछ जो है प्रकाशित हुआ, और हमें कृष्ण जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
0: आपने कहा कृष्ण जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समय बहुत कम है। आज का जो युवा है, आजकल जेन जी कहें अल्फा कहें जो भी आप मानते हैं, युवा पीढ़ी जो हमें सुन रही है, उसके लिए आप आज की जन्माष्टमी के रूप में क्या विशेष विचार देना चाहेंगे कि किस प्रकार हमें अपने समाज में अपनी संस्कृति से के माध्यम से परंपराओं के माध्यम से किस प्रकार हम अपनी जड़ों से जुड़ पाएं।
1: जी, मैं भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए फिर गणेश जी को प्रणाम करता हूँ
0: जी।
1: तो भगवान गणेश गणेश जी को ही प्रणाम करता
0: हूँ। हाँ, होता है।
1: तो गणेश जी को हम लोग प्रणाम करते हुए हम आज के युवाओं को यह संदेश देना चाहेंगे,
0: कुछ दिन बाद गणेश चतुर्थी आने वाली है।
1: तो वह गणेश जी को देखें कि गणेश के स्वरूप जो है उनका जीवन, उनका जीवन अनूठा स्वरूप दर्शन और जीवन जीने की जो कला है वह गणेश जी से हमें सीखनी चाहिए। क्या गणेश जी का जो है बड़ा सिर गजमुख, तो बड़ा सिर जो है वह हमें बताता है कि हमारी जो है सोच जो है वह कैसी होनी चाहिए, हमारी जो है सोच जो है वो दूरदर्शिता वाली होनी चाहिए, दूरदृष्टि वाली होनी चाहिए। जैसे अब गणेश जी का है, उनका भले ही जो है सिर बड़ा है लेकिन उनकी जो सोचने की जो क्षमता है, जो दृष्टि है, जो दूरदर्शिता है वह गणेश जी में है, इसलिए वह पूज्य हैं
0: जी।
1: फिर बात आती है उनको उनके कान की, गणेश जी के कान की। तो आज के युवाओं को गणेश जी से के कान से जो है ये सीखना चाहिए, गणेश जी का कान बड़ा है तो
0: ध्यान से श्रवण करते हैं।
1: गणेश जी जो है कुछ भी बड़े ध्यान से सुनते हैं, और जो ध्यान से सुनेगा वही कुछ कह पाएगा।
0: जो पहले सुनना आवश्यक है
1: जी, पहले सुनना पड़ता है, जब आप सुनेंगे तभी आप कुछ कह पाएंगे। तो गणेश जी जो है बड़े ही ध्यान से सुनते हैं, तो वह सुनने की जो कला है वह गणेश जी में बहुत अच्छी है, जो आज के युवाओं को इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और धैर्यता, धैर्यता जो है धैर्यता होना चाहिए। और गणेश जी कम बोलते हैं, तो जो ज़्यादा सुनता है और कम बोलता है, तो आज के युवाओं को यह ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि वह गणेश जी ने कैसे

0: परिक्रमा करके माता पिता का सम्मान बढ़ाया और संसार में जो है प्रथम पूजनीय हो गए। तीन परिक्रमा में तो यहाँ पे ये भी संदेश जाता है,
1: बढ़िया होता है कहते हैं हाँ, तुम कुछ नहीं कर पाओ जी, तो जो गरजते हैं वे बरसते नहीं।
0: तो आज के युवाओं को ये ध्यान और गणेश जी को ये ध्यान में रखते हुए कि आप माता पिता का सम्मान करें, आदर करें और उनके कहे हुए बातों पे चलें। तो आज के युवाओं को यह भी ध्यान रखना होगा और माता पिता का कभी अनादर न करें। ये आज के युवाओं के लिए जो है संदेश है, गणेश जी से सीखना चाहिए। फिर गणेश जी की छोटी आँखें हैं, तो छोटी आँखों का होने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान गणेश जो हैं छोटी आँखें हैं लेकिन एकाग्रता है, एकाग्रता है। तो आज के छात्रों को क्या चाहिए? एकाग्र होना चाहिए। एकाग्र जो भी कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई ही करें और अन्य उनकी दिशा न जाए, तो जिस कार्य में हाँ भटके नहीं, जिस कार्य को कर रहे हैं एकाग्रता होनी चाहिए। पढ़ाई है तो पढ़ाई ही करें, फोकस जिसको जो है एकाग्रता फोकस और लक्ष्य के प्रति सजगता जो है यह सिखाती है। गणेश जी की दो छोटी आंखें हैं लेकिन वो अपने लक्ष्य को कभी छोड़ते नहीं है, उसी पे ही ध्यान रहता है। तो आज के छात्रों को ये विशेष ध्यान देना होगा कि अपने लक्ष्य से कभी आप हटे नहीं। अगर आपको अध्ययन करना है अध्ययन करिए, आप दूसरे मार्ग पर न जाए, और अध्ययन के दौरान अगर आप दूसरे मार्ग पे चले जाते हैं तो फिर आपका अध्ययन जो है अपूर्ण हो जाता है। यही गणेश जी बताते हैं कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति जो है सजग रहना होगा, आप अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ें। फिर जो है गणेश जी का जो है बड़ा पेट, उनकी पेट बड़ी है तो इसलिए जो है अब यहाँ गणेश जी की बात हम लोग कर रहे हैं, तो उनकी पेट बड़ी है लेकिन मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आता है। जब सुख और दुख दोनों आता है लेकिन दोनों को बैलेंस कैसे करना है, दोनों को बराबर लेके कैसे चलना है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, किसी भी प्रकार का कंडीशन हो, मनुष्य को बैलेंस
1: करना चाहिए।
0: हाँ, बैलेंस बना करके अर्थात जो उसको स्वीकारने की पचाने की क्षमता जो है वह होनी चाहिए,
1: होनी चाहिए।
0: जो आज के छात्रों में होनी चाहिए, जो आज के छात्रों में नहीं होती है, कम मिलती है। तो आज के छात्रों को गणेश जी सीखना चाहिए कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, किसी प्रकार का कंडीशन हो, वह माता पिता को जो है कष्ट न दे।
1: कोई चीज अधिक है तो भी ठीक है,
0: हाँ।
1: कोई चीज की कमी है तो भी स्वीकारें,
0: स्वीकारें जी, जी, जी, जी।
1: कमियों को स्वीकारते
0: जी,
1: हुए
0: जी,
1: अपने कार्य को मतलब
0: जी जी वही
1: समर्पित रहे
0: जी,
1: कार्य की।
0: सुख और दुख दोनों ही कंडीशन में दोनों ही समान रूप से लेके चलें और उन दोनों समयों में माता पिता के लिए जो है वह कष्ट न दें। ये गणेश जी का संदेश जाता है। छोटा वाहन भी बात आते, गणेश जी का छोटा वाहन है। आज के समय में कोई छोट मतलब जब कोई बड़ा हो जाता है तो वो छोटा नहीं होना चाहता।
1: बिल्कुल,
0: मतलब जब कोई बड़ा हो जाता है तो वो छोटा नहीं होता। गणेश जी इतने प्रथम पूज्य होते हुए भी सब कुछ मिलने के बाद भी कोई अहंकार नहीं, कोई अंदर में जो है वो नहीं, एक छोटी से वाहन पे चलते हैं, मूषक पे चलते हैं,
1: मूषक पे चलते हैं।
0: तो मूषक के साथ चलने वाले हमारे गणेश जी महाराज जो है वासनाओं को इच्छाओं को नियंत्रण करके और विनम्रता के साथ जो है ये संदेश देते हैं कि जो हमारे आज के युवा हैं, जो हमारे छात्र हैं, वह अपने माता पिता का जरूर जो है रिस्पेक्ट करें।
1: बहुत सुंदर संदेश दिया आज के युवाओं के लिए आपने आचार्य जी। आप यहाँ पर आए, इतने सारे विचार हमारे साथ बांटे, श्रोताओं के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा होगा ऐसी हमारी आशा है। पूरी टीम को धन्यवाद देते हुए आपका विशेष धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने बहुमूल्य समय से कुछ समय हमारे लिए निकाला। बहुत बहुत आभार। एक अन्य कार्यक्रम में फिर जुड़ेंगे। शुभ संध्या।
2: गीत नृत्य और परंपरा।

0: 31 दिसंबर के बीच 61 साल के होने वाले लोगों को दिसंबर 2026 तक बेसिक रिटायरमेंट पेंशन मिलेगी। इसके लिए वे अपने इलाके के सोशल सिक्योरिटी दफ्तर में जरूरी दस्तावेजों के साथ पंजीकरण करा सकते हैं। याद रहे कि जनवरी 2027 से बेसिक रिटायरमेंट पेंशन का नाम बदलकर स्टेट एज पेंशन कर दिया जाएगा। मॉरिशस में जल्द ही नेशनल एविएशन काउंसिल बनाया जाएगा। सरकार हवाई सेवा की नीति में बदलाव कर देश को दुनिया के और अधिक बाजारों से जोड़ना चाहती है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और एयर मॉरिशस के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये जानकारी दी। परिषद नई उड़ानों पर सरकार को सलाह देगी, साथ ही देश के आर्थिक हितों और एयर मॉरिशस के भविष्य का भी ध्यान रखेगी। एतिहाद एयरवेज की मॉरिशस के लिए उड़ान शुरू करने पर भी जल्द बातचीत होगी। कुदरती आपदाओं को रोका जा सकता है, लेकिन खतरे को कम कर लोगों की सुरक्षा नहीं की जा सकती। मॉरिशस में नियुक्त ऐसी व्यवस्था पर काम कर रहा है जिससे आपात स्थिति में लोगों के मोबाइल फोन पर सीधे चेतावनी भेजी जाएगी। पर्यटक भी ये संदेश पा सकेंगे। सुनामी की चेतावनी भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रीय केंद्रों से मिलती है। मॉरिशस में भूकंप और सुनामी से निपटने के लिए भी योजनाएं तैयार हैं, जिनमें हालात के अनुसार कार्रवाई के 3 स्तर हैं। मॉरिशस की आबादी घटती जा रही है और जन्म तथा मौत की संख्या लगातार बराबर होती जा रही है। 1 जुलाई 2026 को देश की आबादी 12,40,316 थी। ये एक साल में 3,425 कम हुई है। साल के पहले 6 महीनों में 6,386 जन्म और 6,333 मौतें दर्ज हुई। जन्म में करीब 10% की कमी आई, जबकि मौतें 2% बढ़ी। इस साल नवजात बच्चों की मृत्यु दर भी बढ़ने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों में, नेपाल में बाढ़ के एक सप्ताह से ज्यादा समय बाद त्रिशुली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग से 2 लोगों को जिंदा निकाला गया है। दोनों घायल हैं और उन्हें काठमांडू के अस्पताल ले जाया गया। इसी सुरंग में कम से कम 39 लोग अभी फंसे हुए हैं, जबकि दूसरी सुरंगों में से 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जाते हैं। नेपाल तिब्बत सीमा पर आई इस बाढ़ में 1,300 से ज्यादा लोगों की जानी जा चुकी है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। राहुल रिवेट लेन ला लुइस कैट्रोबोन में 79 ईयर्स ओल्ड के देवदत्त गोकुल की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थिक कल शनिवार को 5 सितंबर को दिन के 1 बजे उन्हीं के मकान कैट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: You're listening to RM3 Radio.

आज की चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं हूँ रत्ना, आप पहुंची हूँ। आज का दिन है शुक्रवार, 4 सितंबर आज की तारीख, और बिल्कुल 1 घंटे का ये सफर है। सर्वप्रथम आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की पावन मंगल कामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम में आइए जुड़ते हैं। आपको ये भी याद दिला दे, इसका सीधा प्रसारण इस वक्त रेडियो मॉरिशस पर आप सुन पा रहे हैं, और साथ ही साथ MBC के तीसरे चैनल पर आप इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें सहयोग मिल रहा है। टेक्निक पर हमारे साथ बने हुए हैं फिजान, प्रोडक्शन असिस्टेंट है दीपशिका, और हमारे प्रोड्यूसर निज़ाम जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज बिल्कुल हम लीगल इश्यूज़ पर बात करते हैं। आज हमारे साथ हमारे मेहमान होंगे बैरिस्टर कपिल देव रघुनंदन जी, जो इस वक्त स्टूडियो में उपस्थित हो चुके हैं, और आज बात करब जा जुडिशिया पोताज जुडिशिया पर, यानी जो अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिविजन इन काइंड। अगर मान लीजिए किसी इंसान को पोताज यानी बंटवारे की समस्या उत्पन्न हो जाती है, पर वो नहीं जानता कहाँ जाना चाहिए, किस तरह से इसकी पहल करनी चाहिए, तो बिल्कुल कोर्ट इसकी सहायता किस तरह से देता है, किस तरह से इसके प्रोसीजर्स आगे बढ़ते हैं, और किस प्रकार से ये बंटवारे को बिल्कुल एक रफ्तार मिलती है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ

0: कपिलदेव जी जुड़े हुए हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते रघुनंदन जी, बहुत बहुत स्वागत बा।
1: शुक्रिया।
0: और आपके भी जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी के पावन मंगल कामना।
1: और आप भी और मेरे सब भाई बहन लोग जन्म के सुनत हो।
0: बिल्कुल। आज बात करब जा पौता जुजिशिया पर। हाँ जी। और जेकर अंगले में बोलल जाला डिविजन इन काइंड या पौताज इन काइंड, एक मतबल का है और कैसे एक प्रोसीजर रहेला?
1: खूब एगो क्वेश्चन शुरुआत में ही बस कि जो हमने की भाई सुनत हुई जाने हमने आज पौताज के बात करते हैं सर। मैं एगो पौताज जैसे हम उनका नाम ही जुजिशिया, जुजिशिया मतलब जो कानून से जुड़ल बा, तो हमने देखब सर आज कैसे एगो केस कब एगो पौताज आवेला। भाई बहन हो या कुमार अपने परिवार में हो, एगो जमीन के उ लोग के हक बाऊ में एजीविस में हवन सन, मतलब कोतरा बनल नहीं बा, हर भाई बहन लोग के पार बा उस जमीन वहां में। तो हिया देखेला कि ऐसा एगो पौताज कब होवेला जो हो एगो कानून बगल से एगो पौताज जुजिशिया, यही हमने बोलला सा फ्रांसे में पौताज और नाचुया, जैसे हम हमेशा बोले हमने कि पुस्तक लिखल फ्रांसे में कुमार जी, हमने कि ले ले हैं सर कोड नापोलियों के, हमने के जो है बा ला फ्रांस के है ले सर। एक दिन आप सबने खाकोते कर सब भर कानून कैसे ऐत हो जोर बा मोइस मस में। तो यहाँ देखिए सर पौताज और नाचिया डिविजन इन काइंड है, ये एगो फोसे होएला लाकुर के आगे मस्त कोर्ट के आगे। अब तब हुआ जे एगो कुमार जे भाई बहन लोग या अपन जे के बा उ भगवा उ है मठिया में, अब मन बा ओके कोतरा बनाई के एक बार तो जनबे करेला हमेशा कह बोलते आल हैं कि कभी भाई बहन रही या परिवार रही जो उनके एगो हक बा एगो जमीन में, तो उस जमीनवा में कब ओकर पार बा, तो का करे एगो बोलेला हमके मन बा पौताज करे के अभी ओकर कोथा बनाई के है चाहता, ताकि ओकर लड़का एक दिन ओके मिले ओकर पार में। एक बार बा ओके बोली पैसा नहीं बा हमके अभी लेता नहीं बा कुमार जी, अभी तो लोग देख सका करत हो सर, तो यही खातिन बा हमके एगो सोल्यूशन पौताज जुजिशिया, पौताज जैसे हमने बोली सर डिविजन इन काइंड, जहाँ एगो नहीं मानता हो दूगो नहीं मानता, एगो बोलता नहीं हम अपन कोतरा बनाब, तो जाए अब है लाकुर के द्वार ठक ठकाई कि मजे देख हमके मन बा उ लोग के नहीं मन बा, मैं नहीं सकता उन लोग के पकड़ के ले जाए नुतेरवा यहाँ, तो यहाँ बोली हमके मन बा पौताज करे के एगो पौताज जैसे हमने बोले सर जुजिशिया। एगो एगो है प्रोसीजर जो आवेला लाकुर के आगे, तो हुआ जाके जोन जोन के पार बाऊ जमीनवा में हिया देखब लाकुर औसन एगो का है करी जीजे करी जेके जेके ओकर लोच बा जेकर जेकर पार मिले ओकर भाग बा मिले के तारे देखब सब पौतेर कैसे करे एग्जर्सिस हुआ लाकुर के आगे, तो हिया उ लोग के अपन अपन के मिलेला।
0: हिया पर सब इंसान के चाहिला जाए के हौजा पर या कोनो के जेकरा प्रॉब्लम होवा था उही जाए सकी, या मान ल जा एगो माता पिता अपन पौता जेकर देले हवन ओकरा त प्रॉब्लम नहीं बा, लेकिन जो नहीं खोजत अवन पौताश करे के उनकरा एक एक एगो व्यक्ति जाके पहल करे सकी लाकू में।
1: अरे एगो तो मजे एगो सवाल है पूछल मर से ओकर प्रोसीजर का है। हाँ। अरे फोन कर ला ये मजे कैसे है जानेला मजे, कब एगो भाई रही या दूसरा बहन या कवि रही एगो के मन बा पौताश करे के दूसरवा के मन पौताश नहीं कर बा, हाँ तो जोन ओके मन बा पौताजवा करे के ओ कुमार जैस नहीं चाहता कि एजीवीज में रही बोली हम अपन कोतरा ही करब, हाँ का करता ओके मन ही नहीं बा न आई को जाता ओकर से मुँह से बतियेलक बहनिया या भैया कि देख चल हमने अपन पता बोले देख हम नहीं हम क्या हमें जैसे नहीं है, तो ऐसा कवा में हाँ खूब बोला पहला चीज चाहेला ओकर फोसेजिए, अब देखते हैं सब ओकर फोसेजिए देखी उ जो नदमिया ओके मन बकर पौतजवा करे के, तो जो ओकरे मन हुई पौतजवा करे के तो वही न शुरू करी है जैसे देमसवा करे के, तो पहला चीज ओके जाए के चला देखे के एगो आवोए के।
0: अच्छा।
1: आवोए के कुमा जा जब हुआ गल आवोए के देखे तो आवोए का करी ओकर सब कुमा जा है जोन जोन बा है दुखी मा, जैसे कि माँ देखे ना आलू कर बाप माँ के माटी हुई, तो बोलिए लाफी दाबी दे सिक्सेशन वहाँ कहाँ बा, पर लाफी दाबी दे सिक्सेशन हुए ला जब माँ बाप गुजर जला तो ऊ में बतावेला के ओकर जिगीचे है, तो ई माता जी या है भाई जी ओके मन बा जाए के, तो कैसे गल हुआ एगो है आवोए हिया आवोए बोली अच्छा सब पापिए द हम के, तब ऊ पपीवा में कब ओके मिली तो देखी कौन कौन भाई बा कौन कौन बहन बा सब जगीचे के नाम बा ऊ लाफिदाबी दे सिक्सेशन में, हर आदमी कब मर जाला तो एगो लाफिदाबी दे सिक्सेशन करेला मतलब ओकर जगीचे के है, तो लेके जाए हुआ लग देने से सोचता नहीं दियन से न कुछ एकोनो रही मैं ऊ पपेवा ऐ पोत जब ओके मिलल है ओकर है अफिडाविट दे सक्सेशन ऊ में नो तेरुआ जान जाए इ के बा ऊ आदमिया कौन कौन है आदमिया के बा को मजे पुष्पित करे के जेगी चेवा के
0: तो रघुनंदन जी है आ रहते करत है जैसे तू बोलत हवा जोन माता पिता गुजर गल हवन ओकर चाहिला एगो सक्सेशन सर्टिफिकेट में मान ला जा पहला के आदमी पुराना आदमी जोन रहल जब गुजर गल रहल त उतना तो कोई नहीं जानत रहलन की सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिला त फेरो से दिमाग सु करे सकी ओकर जो डेथ सर्टिफिकेट है ओकरा लेके एगो एगो सक्सेशन ऑफ सर्टिफिकेट करे के जरूरी हो जाला
1: हाँ जाने ला पहला चीज ये यही ना इताबलिय करी की है ओकर मजे लड़का तो वो आदमिया के सेफ है जो कभी कर ले नहीं रिलेशन या कुछ कभी ओके मन बा अब लाफिदा भी दे सक्सेशन करेंगे एक बार तो 10 बरिस हो गल बा 15 बरिस हो गल बा अब दिमाग करत हो अनसन मजे है अपन जमीन उनके जीवजे करके कोठरा बनाए के हाँ तो शुरुआत में ही चाहे लो कि न तो देखो भी बना दिए एगो लाफिदाविद मैं हिया वो लिखवा के दलबे नहीं दलबा को नाम जैसे तू बोल रहा आले सब के जाए पापिये खोजे माँ बापुआ के पपिया हो ना माँ बापुआ के चाहे ला कर लाख दे से चाहे ला बस वो तो मर गलबा तो मर गलबा उकर माँ बाप के निकाल दे लाख दे से आर उकर लाख देने सांस आर लाख मोयाज शादी कल तो इसे अब जाके कुमार जी अपन दिमाग करी वो अपन लाफिदा भी दे सक्सेशन करी आज के पहला वो एगो ब्लॉक है एगो घर के वो घरवा बनाई के गाड़ी चाहे ला पहला वही तो वो में पूछी ना के है अब देखा कितना प्रॉब्लम होवेला कब तार दे होवेला तो हियाँ ओके तो हो गल बपुआ के माँ वहाँ के ऊपर लाफिदा भी दे सक्सेशन के ऊपर पपीवा मिले के मैं हियाँ भाई बहनियाँ लोग के वो लोग तो कैसे काल जेब मांगे कुमार जय है देव पपी वाक कुमार जय है थोड़ा लाख देने सांस या लाख मोयाज हम जाते हैं यही लाफी दाफी दे सक्सेशन करे ओके वक नहीं बा ओके लेता नहीं बा अब का करता ओकरो देवता प्रॉब्लम हुआ देवता मैं आपको वीते हुई तो सबको तो अपन दे ना लाख देने सांस हुआ मैं हियाँ कब नहीं देलक अब बहनिया भैया के चाहे ला दिमास करे के ऊ नहीं देवता हाँ भाई बहन लोग के ऊ लाख देने सांस आ रही लाख मोयाज मिल सकेला बस की मजे ऊ कर जो
0: उनके करे सकी दिमास
1: सकी दिमास वा करी आली तो दिमास वा करी तब सब पपेवा मिल जाए कभी खा हुएला एगो बाप के कभी को लाफी दाफी दे सक्सेशन कभी बनावेला सकेला ऊ में देख बा एगो भैया के मोह नहीं बा भूलाल नहीं बा वो जाने ला हमेशा ओकर कुमार जी चार गो भाई रहल सिपा बहन रहल ओ लोगे के काली जाने ला हिया बपुआ कब जीते रहल एगो कुमेकास रहल एगो दूसर स्त्री से वो दूसर स्त्रिया से ओके गो लड़का पैदा हो गल वो तो डिक्लारे कर ले रखल ऊ हाँ। मैं हियाँ अपने नहीं बेटा बेटी लोग नहीं जाने ला ना बस एक माँ कभी को मेघाज हो रहा दूसर मैडम से वो गरहल सिल्म दिखलारे कर रहे रहल तो कोई जिगीचे है मैं यहाँ देख लाफी दाफी दे सिक्सेशन नहीं बा मैम के गो पताज हो जाए वो जे आई छुकड़वा या छुकड़िया
0: की बोल रही
1: हाँ नहीं कोतरा हुए सब तूर दई जो बन गल बा
0: अच्छा।
1: बस की बोले कैसे हमें तैगो जिगीचे हैं कैसे हमार भाग नहीं बा चार बीघा रहल चार में तो लोगे ले लस हमके तो कुछ नहीं मिलल तो हियाँ देखबा वो केस झुके के जाला अरे पोसिए जो आई लस हियाँ ओके कब दे सीधे हो गल ए गोवा के आई के आगे तो ऊ जाए गो आप के देखे अब वुवा का करी सब पापिए मांगे ओकर से आले सिबोजो एगो बोली के मिल गल बा सब पपीवा सब पपीवा कब ओके मिल जाला तो ऊ का करी जाके एगो लुजे करी एगो केस है के आगे लाई मौसे कोर्ट के मौसे को एगो है एगो प्लांट नियर एगो पोसे पे जिसे हमने बोले हमने बोला से पिटिशन एगो पिटिशन डाली लाकूर के आगे कि बोली देखा हम मांग करत हई है एगो है पताज करे के तो हौ होला के अब कैसे वो के मन नहीं बाई के या नहीं आवता तो हियाँ दिखब वो के कब लुजे कर ले बा उपेचिशुआ लाकुर के आगे मस्त देखेला ओ किसुआ तो मस्त का करी ओके कुमा जे देख बन नीचे ऊपर प्लेटवा में एगो दात डाली एगो दात डाली सिबोजो उ लोग के आई के चाहेला अब ई दतुआ के उही पपीवा लेके प्लेटवा ऊ जाए इसिए जो लाकुर के कुमा जे कैसे है पापी सेरवी करेला सब आदमी के तो जाए ऊ सेरवी करी ऊ जेविचेवा के जोन कभी ऐबे नहीं करले वनसन या कुछ नहीं करे को जनसन तो सेरवी करलक पपियेवा तो कोरेक बा तो जाके खुदलक के हो लोग के लाधरे सु सब बान पसी भाई में देले रखल अब जोन आदमिया पहलाल तो कैसे सेरवी हो गल ऊ पपियेवा तो हियाँ देखबा ऊ के एगो दा

0: लिखल बा उमे सेवा के जो पपेवा जो के सही सिर्वी गल करे और हुआ कब उके जाला तो बोले ला तू ही हवा ऐतेल बोली हाँ तो बोले सिंह कर वैसे वो कर तो हई पपेवा कि ऐतेल दिन तुरा आई के चहना लाकूर तो उते उ दिन हुआ अब जाई के चहना उके लाकूर
1: मानला रघुनंदन जी हई जहाँ पर मानला दू गो भाई हवन या एगो भाई एगो बहिन हवन जे नहीं करे खोजत हवन ओकरा जबरन जबरन जाए के परी कुमा जला कुरवा जब ओकरा पापिये मिल गल बा और मानला उ नहीं गल त कौन कौन प्रोसीजर रहेला
0: एगो आदमी के कुमा जब भाग बा उ जमीनवा में अब ओके प्रोसीजर बा जाए के अब नहीं गल मस्त पतजुआ करी भी देखब से कैसे पतजुआ करी हाँ पड़वा एक बल निकाल दे अब जब ओके मन होई तब जाके देखी लाकुर के दे के कितना बा पिए
1: परी लाकुर जाके दिमास करे के
0: नहीं करी तो सैंप ओके कौन तरह वे नहीं मिली बस के काहे जब लाकुर अभी देखब सब पांच मिनट में एगो आदमी गल बा नहीं कभी कुमा ओके ओके ऐसे वैसे नहीं बा तो लाकुर हिया तो नहीं सके बोले हाँ ख्वाजे करके बोले नहीं तो तोर खातिर नहीं आवत हुए तो सब जोन बा हमने ब्लोके कर देब सब
1: ऐसे नहीं कर सके
0: हाँ तो चाहे ला तब ओके बोला के ओकर प रख दे एक बगल है के अरे एगो खूब बोला हमके एगो याद दूसरा हो गल एगो माचे एगो आदमी दूसर देश में बा अब एगो दूसर देश में बा अब हुआ तो नहीं बा हो तो पपेवा हिया सर्वी करे के कुमा जे हई नहीं सकी ना कुमा जे नहीं अरे से बुझो करो लद गई सुने जाना था हो जे सेवा बा कहां तो हिया मिनिस्टर पब्लिक में हिया चीते में कुमा जे एगो कुमा जे हई जनावे लनसन हुआ से कुमा जे चीते काई गुवेनमा के ओकर कुमा बगल आवे के आके लाकू में याकर आवे भी रही आके खड़ा होई ओके रिप्रेजेंटे करी अब ओकर कौन था हुआ अब ओकर आल बा नहीं सीए वो सब करे कि हो हई मिनिस्टर वा है के करेला जे जस्टिस तो हिया देख ओकर कौन था बन बनावल सब बा उ छोड़ देवे ला कुमा जे मिनिस्टर है जस्टिस में एक दिन उ जब ओके मन होई या हिया आई या नहीं आई तो देखब ओके जाए के हुआ कौन तरवा मिली ओकर तो ओके नहीं चाहना जाए के कुमा जे फिर से दिमास करे के पहताज करे पहताज हुआ हो गल बा जब हुआ पेये करी अब पेये करी से बोझो ई पेये कर ले बा 2 रुपया तो उस साइड पेये करे के ओके चाहिए 4 रुपया काहे सब ओकर फगे सब ओकर एनरजिस्ट्रीमेंट करे के कौन का पहताज हो जाला तो चाहना एनरजिस्ट्री करे के ना तब गो लोग के नाम में रहेला तब हुआ से उसकी आके अपन कोथरा मांगे हुआ तो देख लिया मेम की एगो बा नहीं एक्सेप्टे हुल बा नहीं आल बा ओकर कोथरा ओकर प एक बगल निकाल देवे लनसन आर हौ जोन जोन के बाद दिमस हुई अब देखे ला सहिया हई का करलक आब वुआ एगो के हई डाल के गो पेशीशो डाल के लाकुर में मांगता कि हमर जे हई हमर क्लियो लोग जे प्लेयो लोग उ लोग मन नहीं बा उ लोग के एजीवीज में रखे के मतलब उ लोग के मन बा अपन अपन पहताज करके अपन अपन कोतरा हई के देखलक अब हई के इसे के इसे जाके हुआ सिर्वी करलक अब जब हुआ सिर्वी करलक तो जे देखलक पपीवा तो जाना था ऐतेल दिन ऐतेल ओके आई के चाहना ना अरे सी बोसो ओके चाहत ऐतेल दात के आई के तो आल आए लकुरुआ में तो पहला चीज हुआ ओके जीज पूछी वही मौसा कोट है तो जीजे बोली लस ओके है मौसा कोट हुआ में तो ओके अब का करी ओके पूछी जे जे जे प्रेजेंट बा उ लोग से पूछी अच्छा एगो चीज है जनबे कर ला सा एगो पापी तो लोग की तब मिलल हो आज के कुमा जा सब जीवी छे उ लोग एजी विजियो में नहीं रहे को जत वंशन उ लोग के मन बा पताज करे के का करब अब पूछी अभी यहाँ लाकुर में है वो बैठल बा मौसे हुआ बैठल बा मौसे के कैपेसिटी जीज हो वो बकत हुआ तब हुआ बैठल बा वो पूछा था का करब स अब एक बार अब हुआ तो कुछ बोली ना अरे हिया से शुरू करी ला सर एगो सिपा दो गो तीन गो बा जोन प्रेजेंट बा बोले सा हमने के ऑब्जेक्शन नहीं बा मतलब उ लोग के मन बा पताज बस हाउ नहीं देख ली सर जो नहीं आई को जाता हिया अइलन सन जो के मन बा पताज करे के अच्छा लाल तो हिया कैसे आई तो के पहला चीज ओके है बोली हाँ कोरेक बा हमने हई एक्सेप्टे है सर पताज करे के तो बोले पताज करे के एक्सेप्टे वस ना तो बोले हाँ तो बोले सब कोई बोले हाँ तो का बोली हई मस्त हुआ वही जीज हुआ कह के बोली सर मस्त कर नाम बोला मैं जीज है तो बोली पहला चीज चाहे ला जे डाको हो सर नोमे करी गो पातेर के अब अ पातेरवा वो जाए सबके कुमा जैसे बोझो यहाँ एगो आमियाब में हो गल बाए यहाँ आमियाब में देखते ही सब हुआ था पतस हुआ तो हुआ जाए देखी के कहाँ बा नहीं तो नोमाल हवे रहल न आफिद आफिद सिक्से शुआ और हिया तो अब वो कब लोजे कर ले रहल वो है केसवा पिछी शुआ तो हुआ तो रहल ना

0: ओकर कुमा जे नाम कहाँ हुआ के बगल बा आर माँ बपुआ के कोतरा बा बस यहाँ तो दिलक नजीक छे हुआ ओकर की कुमा
1: है कितना कितना बा कुमा जे कितना हवन से लाते या कितना बा ओकर पे जाके पोताश करी
0: आली तब यहाँ का करी अं पोते हुआ रेजिजे करी एगो पोसे दे पोताश के कहाँ कहाँ मिलता लॉट्स मिलता और ये हमने के जाने और के बराबर मिले के चाहे वाले चाहे ला कुमा जे सब के लिख दे और जोन के कुमा जे वाले रुआ ज्यादा मिलता तो ऊ बोली ओकर है में ओकर है मेमोरेंडम हुआ जोन बनेलवा पपीवा ओ के बोली है आदमिया के जोन के ज्यादा मिलता हौ जोन के कम मिलता चाहेला एगो शुल्क दे के शुल्क एगो पैसा हा।
1: पैसा हा।
0: आलू सी बोले ओके वाले मिलता एक मिलियन के ओके मिलता 500 के तो देखिए कैसे करके कुमा जब पोता जुआ करके ताकि हाँ पारे इक्वल जमे रही दोनों के यहाँ मिली तो कैसे ओकर मेमोरेंडम कब बना दे लेवा ओकर है पापी ओकर फोसे तो का करे चाहे एगो प्लान चाहेला ओकर मेमोरेंडम में एगो चाहे लगो प्लान प्लान में बतावेला के कहाँ कहाँ मिलता सिबोजों एगो भैया के मिलता आगे पाछे सिवा कैसे दूसरा के चाहेला बनाई के ओकर सीमा कितना जगह कितना पिएबा ओके कुमा जे अभी तो आजकल कुमा जे जगह छे नहीं कोई भी होई अभी मुश्किल है पहले तक जमाना रहल पूतल माटी ढेर रहल का कर सन सन तीन पिए चार पिए के देवत रहल ये अभी एगो जमाना में हो गल बात नहीं जिस खिलते हुए ला एगो आदमी के दू गोलो तो पासे हुई के तो चाहेला कुमा जे मिनिमम एगो आठ पिए के दे के कुमा जे ताकि दू गोलो तो सकी चार चार पिए से आले भी नहीं करेगी तो उस सीमा निकाली कहाँ घनरूद बा कैसे कहाँ बा कौन भाई के लोन में हो नहीं में वो दे नहीं में वो तो ऐसे मिल के ओकर ओकर नाम डाल के कितना ओकर सुपरफिशी बा ओकर कुमा जे कितना पिए मिला था जब ये अपते वक मज है कर दिलक तो आर वाले सब दे दिलक आर जोन के नहीं मिलल बा तो ओके कुमा जे अब जाए ओके कुमा जे लेके ओ पपीवा दे ओकर कुमा जे है के ओकर आबुवा के तो आबुवा जोन के कुमा जे है प्लेटवा सर्वी कर ले बाबू के तो ओ आबुवा अब लेके जाए तो हुआ अब बताई वो देखी कि है का आज आज सिबुजो लाकुर के आगे बा अब फाइले करी ओकर गापो अपोते रुआ कब आप गापो अपोते रुआ को मजा के दिला
1: है अपोते आवा आदमी के खोजे के चाहिला मतलब जब ओकरा लाकुर बगल से परमिशन मिल गल बा तब वो अपन से खोजी आवा आवे वा और जोन जाके देखी अपोते या लाकुर बगल से
0: किसी बोल रहा हां ये हम नहीं बोली आली अपोते के स्वाजरे कैसे होएला
1: हां
0: पहला एक बान आदमी हो अपने अपोते रुआ
1: अच्छा
0: एक बार जाने ला ये अपोते रुआ के कभी मिजरे कर लो इंसान कभी वो फावे ओके दे कम पैसा में भाई कुमार जी ले के ये जान पहचान भाई वो अपोते तो का करेला कबो के जेब देखे हमरे एक बार कबावेला देखे तो बोले ना सर हाँ वो अपोते चाहेला बोले नहीं भैया फिकिर नहीं करिए हमारे अपोते रुआ तो सब जे हिया नहीं अभी नहीं को जब से एगो अपोते तो वो बोली ना कौन अपोते रुआ अरे हिया कब जीजुआ के आगे आल सिपोजों अपोते रुआ जो जाए हुआ मिजरे करे अब का करी उस जीजुआ बोली तो पहला चीज इमे अपोते रुआ तो चाहेला तो पूछे वो लोग से कौन अपोते रुआ तो लोग के ठीक मुझे का कर बस
1: देताई दे के चाहिला
0: हां तो ऊ देताई दे सी पा कोन अपोंतेर में अब जे कु मुझे नई बा कोनो अपोंतेर बा कोई के स्वाजी रे सब नहीं कर ले वंशन त लकुरवे देवे लगो अपोंतेर
1: अच्छा
0: न उसे मो लो के पे ये करे के चाहला ओ नो में करेला दंत दूसर मुंह में ओ नो में करी अपोंतेर वा के तो अपोंतेर वा अन वेचु जुन ओ बोलल बा दिलल बा कु मुझे है मौसे वा ओ दे वा दिले बा तो ओ जाय कु मुझे मिसरे करे ताले ओ भूल जाई सा अब यहां तेरवा बा सब डाको रवनसन स्वाजगे कर ले लवनसन अपन तेर गापो सब प्रिपेयर कर देला सब चीज रेडी हो गल बा अब का तो हुआ अब सिजवा के आगे कब आइलनसन सब्जी बिछवा तो बोलन सन कोनी सांस लेला सन कि है के कहां मिला था कैसे मिला था डाको हो सन तो कैसे बोलियन सन हां जी डाको होल तो मस्त देख बहिया प्रूव करी बस यहाँ तब फिनी बस यो कर मजे एक्सेप्ट हो लवन सन मजे किसवा नहीं फिनी होल बा मिसल महिया तक से तो उही अपन तेरवा जैसे जैसे बोले बा तो यहाँ देखन सन एगो गापो कब दे दिल बा ओके कॉन्फियम करी समझ लो ना तो यहाँ जैसे बा उ है में है अपन तेरवा बनैल बा प्लवा आर कर गापोवा तो उ औसने चली औसने सबके मिली ला कुर में कुरेक बा एगो बोली के हुआ मेम की है होला गल बा अब हिया दवा दे जो अपोंतेर गल बा मिजरे करे सिबोजो वही हो या गो दूसर अपोंतेर उ नई कुमा जे जेगी छे वा दाखो बा बोले हम नहीं दाखो हई जैसे उ बोले बा बस के हम देखत नहीं के ज्यादा दे ले बा ओ के जहां हम के
1: कबो ऐसा भी होला कि आदमी के कुमा जब दुगो भाई में एगो के आगे मिल गल बा और

0: सर का बोला था कि ओकरा आगे चाहिला ओकरा पाछे बगल नहीं चाहिला था हई में भी झगड़ा होला हई में भी प्रॉब्लम खई होला था कैसे
1: सबसे बड़का प्रॉब्लम जैसे बोल रहा है आगे सभी कोई मांगेला आगे स्वाधीन सीमा हुआ तक एगो सॉल्यूशन खोजे के चाहे ना मिसल में ऐसा ना कानून कब ऐसे पताज करेला जो नदमिया के मिलेला आगे सीमुआ हिया में ओकर वाले ज्यादा बा ओकर वाले ज्यादा बा तब हिया कब ओकर वाले ज्यादा बा तो का करी ओके ओकर वाले हुआ के तुम चाहे हो के कॉम्पेंसेट करके ना हो के बस ओके तो पाछे मिलता तो कर वाले आलू सपोज के आठ पेस मिलल आगे होला के ओकर वाले दूसर बा हो पछुआ के नहीं सकी आठे पेस दे ना तो सके ओके दस पेस या ग्यारह पेस दे दई ज्यादा दई सीमा निकाल दे सब ओकर कन्वीनियंट कुमा जे मिलल बा ई कब प्रॉब्लम होवेला तो यहाँ देख लो दोनों गिर गल मैं कब बोला था ये जोन खोजा था आगे अभी हमको दूसरा एगो चीज एगो का याद हो गल का होला कभी जब उ लोग कुमा जे दोनों हई हई भाई बहन होवन सन एगो घर बा माँ बपुआ छोड़ के चल गल बा उ घरवा के पता से करत हई सर बस एक गो घर बा अब एगो घरवा बा सब कोई मांगा था वही घरवा वहाँ अपथरवा बोले तो के वहाँ मिल बोले नहीं हमर बाप छोड़ के गलबा उ घरवा हमके हम वही में रहत अली सिपा हम बनैली जीवा का कर लें हम मन बा वही बुतवा हमके मिले के तो हियाँ देख ला अपथेरवा अब एगो चीज में अपथेर वहाँ मिली तब अब हियाँ कब केसुआ गल लकुरुआ में तो हियाँ बोलक न अपथेरवा के तक आपू ले लस सब कोई डाको वन सर तो एगो आप बोली ना कि नहीं हम डाको नहीं हई बस हम मांगत हई हौ घरवा तो एगो दूसरा मांगत था वही तो दू गो चीज सकेला हुई अभी नहीं देखत हई सब पितार एगो एक नाम है लिसिताशो कैसे बहुत अंश है कैसे आवेला हल्ला करेलन सन कैसे देख लो फिल्म हई में मौतों में से तापे करेलन सन के मिली बेचारा पब्लिक में पब्लिक ऑक्शन बे वो नहीं देखत हई सब तो हियाँ का होल उ घरवा के मजद जे के मिले के तो मजे सवा बोली अच्छा ये सब कहाँ तरा काली लो उ सब के भी सीमा बा एगो चिराज ओ सो करी एगो चिराज ओ सो करे के कैसे है एक्सप्लेन कर दिला से पहला चीज एगो है ई सेवा जोन हुआ खड़ा हुआ ओकर लकुरुआ में बा जोन ऑफिसिये ऐसे नहीं ऑफिस सेवा है उ जोन हला करी तो बोले ये एगो पापिये दिला एगो पापिये में लिख दे लॉट नंबर वन हाउ में लिख नंबर टू अभी के हाथ में धरा दी कोनो नहीं जाने था कौन बानू कर हाथ में बोले खोल तो हाथ तो देखिए कौन बात है देखो ओका निमे वन तो बोले निमे वन तो के मिली अब घरवा रह निमे वन तो वो आदमिया के मिल जाए से गुआ के नहीं मिला
0: तो कबो ऐसा भी होल बा कि ऐसे चिराजो सो करे के बाद में भी भाईवा लोग में लड़ाई झगड़ा होला
1: चिराज ओसो एक नाम है ऑफिशियल कैसे वो लोथरी किन मिल गलो कर निमे रो
0: जो मिलल उही उही तो हर
1: वो नहीं सब को मजे
0: सौजे करे
1: आशी है तू लाकू में होल ओकर से कौन से कमजी लापेल नहीं सब करे बस उ तो मिल गल हुए इसे बात चिराजो सो ना कोई ना कोई के मिले के चाहेला तो हियाँ कैसे मिल गल ओके उ मटिया तो हियाँ मजा अब भूल जाए सच्ची गाजो सो हुआ हियाँ आलू के मिलल सब डाको हो लनसन कब हुआ हाल पढ़लक देखलक ओकर अपते ओकर प्लान सब सब पूछलक लोग से सब ठीक बा बोले हम नहीं डाको हई सर जब कोरे बा तब हियाँ तो अब मजा ओकर खोतरा सबके पिठार बने अनसन हियाँ आयला सर जहाँ ए गोवा नहीं मानता वो बोले नहीं हम देखते हैं कुमा जो उ मटिया हमके कम मिलल बा ओके ज्यादा मिलल बा तो बोली इत हम डाको नहीं है यहाँ एगो जगह मिलल बा एगो खड़िया में एगो तुरु में तो वो नहीं खुशी बा वो खुशी बात कैसे लाहू में जहाँ एगो बो प्लास में बा अब ऊ में तो वो मुश्किल हो जाला तब बोले कौन सी करबे में तो बोले हम नहीं डाको हई तो कैसे बोले ला नहीं डाको हो बा तो जिजुआ पूछे ला अच्छा नहीं डाको हो का करबे अब ओका लेबे आबो लेबे आके कोंतेस्ते करबे हाँ बोली हाँ एगो बोली के बस कि यहाँ तक अपने से तो नहीं सके लड़ाई करे ना
0: करे हाँ।
1: तो हुआ आए लकुरुआ में बोली कि हाँ हम एगो आबुका आबू देख तो सिसुआ बोली को एक बार हम रेंवॉये कर दे लाई किसुआ आज के लिए बस कि हियाँ अग्रीमेंट नहीं होल बा मजे पतजुआ करे के डाको नहीं है सा आ लामयाब नहीं बा तो तू देखिए ऐतिल दात के हम देवत हई अनिये तोरा आबू तोरा बोका अब कब ओकर आबू आबोका आए तो आबू आबोका हियाँ कुमा जे हई जिसकीते करी तो ऐसे दे दे बानो कि अब बुगवा कि देख हम नहीं कुछ हैं तेल तो वो कर आबोका वो सब जाने आके जीज के आगे एगो दिबा हुई एगो अग्यूमेंट हम जिससे बोले सर तो स्वीत ओकर एगो अग्यूमेंट दोनों बगल से के आबोका के जीजुआ सुनेला कब सुनेला तो एगो रूलिंग देवेला एगो जिजमोनियर यहाँ रूलिंग आर

0: जिजमा में बड़का जिफी हंसा हिया बोलत और ओकर होलिंग में कौन ची करे के चाहेला त हिया से बुझो जिजवा कब धंसे करलक कि ई जोन बोललक ओके नहीं बोल है ओकर से बुझो अग्युमा फेंक देलक है के अग्युमा मेंटेन करलक त हिया ओकर होलिंग में ओ बोली जिजवा कौन सी करे के चाहेला ता ओकरे अब फॉलो के चाहे
1: एक्सेप्ट करे के चाहे
0: एक्सेप्ट करे हां या जीस देवा किसी को जीस कौन दाने करता है गोद में हां बिसर मा लापेल बा या तभी देखत है सब प्रकार के मजे लापेलू सब नहीं देखत है सर
1: पर मान मान ले जाए वो व्यक्ति के वो एक्सेप्ट नहीं बा त जब जब जज रूलिंग दे देले बा त वो आगे पहल करे सकी आगे जाके कोनो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाके वो करे सकी
0: वो बोल ओके मन बा लापेल हमने के मजे है लाकुर के शुरू हो अभी एक मिनट यहां तो रिपोर्ट कर तो लापेल की सुविधा हाँ अब ओके मन नहीं बा नहीं सैटिस्फे बा जो जुजमा रूलिंग दिले बा हो मस्त है अब ओके मन बा लापेल करे के हाँ लापेल करी लाकू सुप्रीम में जहाँ हुआ दू गो जज बैठी जज वो तो जज ही हमें ओके मस्त है बोली ला सही मस्त है कि फंक्शन को जज ही नहीं रहा बस वो जाके दू गो अब सुनी अब दू गोवा जो फैसला दे वही फैसला हाँ मैं फिनी नहीं होला है अब देखे से गुबूत है कि यहाँ से आईला वो लपेलवा के विषय हुआ मैं हमने के को लाकू जो छोटा लाकू जैसे हमने अभी हमने बोलिया डिस्ट्रिक्ट
1: डिस्ट्रिक्ट
0: ऐसे तो नौ गो बा हमने के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बा अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ओके मन हो एगो आदमी के कुमा जा काल अरे एगो ले जा से एगो केस से बुझो एगो आदमी के कुमा जा एगो चोर के विषय में बोल के लौसेनी के विषय में ओके कोदाने करलक मजिस्ट्रा हाँ वो कोई सैटिस्फे नहीं बा उसे की कुमा जा लाकू सुप्रीम हुआ से जिरक जाए
1: अच्छा
0: लाकू सुप्रीम हुआ दूगो जज बा ओकर केसवा देखी देखे उमे सिपा जो मजिस्ट्रेवार लिखले बा जुजमा हुआ वो जुजमा हुआ ठीक बा कि नहीं बा एसकी मजिस्ट्रेवा आप प्रोसे कर लग उस जिसमें हुआ सब कानून लेके सब प्रोसीजर लेके सब एविडेंस लेके
1: इन्वेस्टिगेशन नियर चली हुआ
0: हाँ अब वो देख ले लग सब जिस साथ अब जे मेंटेन करियन सन दोनों जीज हुआ कब सुनियन सन तो देखा था क्यों मजे रे जो जीज हुआ मजिस्ट्रेवा लिख ले बा वो करता कुरेक बा कोनो ये नहीं कर ले बा तो यहाँ मेंटेन करी बोली नहीं कुरेक बा मेंटेन का मतलब कुरेक बा इस चीज में अब देखे जैसे बोझो नहीं कुमार जे जैसे चाहे ला कुमार जे ऊ केसवा
1: नहीं
0: कर ले बा तो यहाँ सकी कुमार जे ऊ जज मैच हुआ जो दे ले बा कुमार जे क्वाश कर कुमार जे तूर दे तो अब कुमार जे जीरो हो गया
1: जीरो से कुमार जे फेरो से ऊ जीरो से शुरू हो जाला
0: नहीं कभी ऊ चीज में हुआ नहीं एक कुछ सापे हो गल हुआ तो फिर नहीं अक्विटेड तो सावे जे नहीं ना तो ऐसे तो पोसे हुआ कभी नहीं फिर से नहीं आवे हाँ मैं बा हमने के किस बा जैसे तू बोल रहा कभी हुए ला कब दोनों जिजवा सुन ले बा तो देखा था मजिस्ट्रेट से बोझो है कि एंटेल जाफेर के कंसीडरेशन नहीं ले ले बा तो का करी हिया दोषी हुआ जिज दोषी करे नाम को जिज में सब कर बा भेजी भाग बाक है हम मजिस्ट्रेट से
1: हाँ अच्छा मतलब जहाँ से वो निकल रहा हौजा पर फेरों से भेजे
0: हाँ अच्छा अब बोले नया शुरू करी के सुआ तो ये देख रहा है वो दूसर ये लापेल में हुए ला अब हमने के देख ली सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसे में जिया को कर पोसे जिया अनमन बा हुआ और हमने के लाखों सिपाही भी बा हमने के लाखों सिपाही में जज बने ला एगो कब एगो बन गल बा लापेल कुमार जो जिजवा कर ले बा वो आदमिया नहीं सैटिस्फे कर ले बा तो आए वो दो गो जीज के आगे फिर से अनमन बराबर जैसे यहाँ मैं सवाल है अब दुगो हुआ जो दिलक जिसम अब आदमिया बोली हुआ तक नहीं सैटिस्फे बा खाली मजे में लगाजेत में पड़ी देखिए कितना लाखों सिपा में कितना आदमी मजे हुआ तक नहीं सैटिस्फे बा अब हुआ से कमिटी देख बा एगो बैठी लापेल मांग करता प्रिविक काउंसिल अनंग लेतेर ते यही जिसम वो भी वो कर दुआ है जे रीजन हुई था यहाँ तो देखब जिजवा कब देखलक वो भी देखेला कि नहीं दोनों जिजवा के जो देलक जिजमा या एगो दो गो देखलक होकर तो बोले देखो तो ग्राउंड नहीं बा तो यहाँ तो नहीं दे कुमार जी तो लीव टू अपील चाहे लगो कुमार जी परमिशन सब मिले के अरे वो भूल ले सकर परमिशन हुआ ओके मिल गल जब हुआ मिल गल ओके कुमार जी अब प्रिवी काउंसिल जाए
1: हमने
0: हाँ सबसे बड़ा हमने के लाकूर है प्रिवी काउंसिल तो प्रिवी काउंसिल अंगले तेर में है जहाँ लोग लोच बैठे लनसन तो वो लोग पाँच गो रही सिवा कई गो रही बैठी तो वो लोग अपन फैसला दे जोन वो बोली हुआ से अब नहीं बा
1: अब आगे नहीं बढ़े
0: आगे नहीं बा
1: तो जरूर आज हम बात कर रहे हैं पोताज जुडिशिया पर या डिविजन इन काइंड कैसे है प्रोसीजर आगे बढ़ेला ओकर पे और जे तोहर मन में

दोनों सवाल कानून के विषय में बात जरूर हमनी के संगे तू अपन अपन सवाल रखे सकबा हाई कार्यक्रम में 4028085 पर हमनी के टेलीफोन करे सकबा। और बिल्कुल आज हमनी के संगे बैरिस्टर कपिल देव रघुनंदन जी स्टूडियो में उपस्थित होल हवन। तो चला एगो गीत के ब्रेक ले जा, कार्यक्रम के आगे बढ़ाव जा थोड़ा घड़ी में।

0: कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस की लहरों पर, साथ ही साथ एमबीसी के तीसरे चैनल पर आप इसे देख पा रहे हैं। और अगर कुछ छूट जाए तो बिल्कुल दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच आप इस कार्यक्रम को दोबारा से सुन सकते हैं रेडियो मनोरंजन पर। मैं हूं रत्ना और बिल्कुल आज कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व और आज का दिन लीगल इशूज़ पर हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे साथ बैरिस्टर कपिल देव रघुनंदन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज हम बात कर रहे हैं पोताज जुडिशिया पर, यानी डिविजन इन काइंड, यानी बिल्कुल कानून के तौर से, यानी कह सकते हैं कि कोर्ट की तरफ से हमें किस तरह से सहूलियत प्राप्त होती है अगर बंटवारे की संभावनाएं खड़ी होती है। तो चलिए जानते हैं रघुनंदन जी से कि अगर औपौतिया हम ढूंढ लेते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप के द्वारा जो ज़मीन हमें प्राप्त होती है वो उसका जो हिस्सा है वो बहुत बड़ा नहीं है, तो इसका किस तरह से बंटवारा होता है और किस तरह से ये प्रोसीजर आगे बढ़ते हैं। रघुनंदन जी, अभी थोड़ा घड़ी पहले जैसे तू समझेलन हमने के, मान ना जा एगो माता पिता के जो जमीन रहल उतना बड़ा नहीं रहल और 5 गो लड़का बा, तो एगो बड़का जमीन तो पौताजे करे सकबा, पर एगो छोटा टुकड़ा जमीन रही तो 5 गो हिस्सा में वो कैसे पौताजे होला, कैसे ओकरा औपौते ओकर पौताज कैसे करे।
1: रत्न जी जैसे खूब बोल, पौताज अलामिया या पौताज जैसे सब दिखली से गैली सौ पौतेर गल मिजरे करे, ये एगो पौताज जहाँ जमीनवा बड़ा बा, ये खूब मजा है बोल, तब ले बड़ा रही सबके मिली तो ओ अपते रुआ सके जी विषय करे। मैं हियाँ बा कभी एगो केस का गल माँ पौते रुआ मिजरे करे या मटिया देखे मिजरे करे के अगाड़ी, तो देखा था उस जमीनवा छोटा बा, नहीं सकल जाए कुमा जे
0: ओके हिस्सा
1: उतना आदमी के जिगीचे बा, ओके सब जिगीचे के दे के से बुझो मटिया जैसे मत छोटा बा, तो हियाँ फिर नहीं ओ सेलम ओकर हापोवा में ओके मासोने करे के चाहेला कि देख इ गैली हम मिजरे करे, मैं नहीं सकल लाई मिजरे करे, बस इ जमीन वहाँ छोटा बा और जिगचे ज्यादा बा, तब ओ पपियोवा जो नोकर हापोवा कर ले रखल पहला शुरू कब देख ले रही सा ओके कब लकुरुआ हियाँ जाए तो जिजुआ के एफो में करे और हुआ कर बान गपोवा, तो हुआ बोली कि हम घर अली मिजरे करे के सबके पार मिले के, तो हियाँ देखत हई इ मठिया कम बा नहीं सकल जाए जीव से छोटा बा नहीं सकल जाए जीव से करे, तो उकर गापो में उके चाहेला मजे हई मशोने करे के, तो हिं तक मजे अब जाने उकर पोसे जे का अब यही में बाप से, जब मटिया छोटा बा जेगीचे ज्यादा बा तो हमने देखत हई सर इ पतसुआ ए पोसिब बा। अब औसन कामे एगो मजिस्ट्रा जोन सुनेला एगो केस जोन उकर आगे आवेला एगो डिविजन इनकाइन एगो पौताज और नाचिया ओ नहीं सकी बोले वो सिपाही पौताज हुआ सा जीवजिबा सकल लाई पौताजे करे या नहीं या लाको उकर बा जीजुआ खाली को है एक मजे लेवेला है उकर कंटेंट हुआ के जोन ओ अपते रुआ बोले ला उमे, मैं जीजुए नहीं सकी बोले हाँ अपते रुआ के बतवा नहीं सुना भम है का हम तो लोग के बहुत ऐसे पौताजे करे के ये कानून में नहीं एग्जिस्ट, अपने नहीं सकी बोले कि कौन सी अपने कुंजी को से पौताज हुआ डिविजन इन काइन हुआ वो ही नहीं सकी करे, यहाँ जोन पपियोवा में मिला अलबा अपते रुआ के पपियोवा में अलबा आले एगो कुमा जे ओकर पुवो नहीं बा के दे के मटिया इतना अपतेरुआ हुआ जाला तो बोलिया के कहा मिला, मैं अपतेरुआ कभी जाला तो ओकरो एगो बड़का प्रॉब्लम हुए ला, बस एगो जिगीचे बोले जाने ला किसी तरुला बोले।

0: वो आगे मांगता हाँ बोले हम नहीं एक्सेप्ट हियाँ अपन अपन अपन कुमा जे हई मांग करेलन सन तो हियाँ पतेरुआ कुमा जब पूछेला अपने में एगो डाको हो जस देख सक कुमा जे है कहाँ के मुझे पसी हमके तो काम करे के चाहेला आ पतजुआ तो हो के चाहेला एगो कुमार आमिया देख सभी के तो नहीं सके मिले आगे ना
1: हाँ।
0: अरे कोई ना कोई के चाहेला होने मिले के आपको हुई थे कभी यहाँ हो गल तो वो का करी ओके लिखी हुआ कि कहाँ मत तो एगो जिस फिर जैसे हमने बोली ना कब रहल ऐसा एगो चीज में एगो छियाजो शो करेलन सन जब देखेलन सन अ पतेरुआ गल अब हियाँ से ओकर गापो बोलक कि नहीं सकल लाई पताजे करे तब लकुरुआ के हुआ जाई एफो में करे जिजुआ देखियो ओकर गापो हुआ कब दिखता बोली लोग के ई जमीन हुआ नहीं सकल जाई जब देखेला कि ओ भी जिस सिचुएशन कि ई जिबियावा नहीं सकल लाई पताजे करे नोम दे जिगिचे ज्यादा बा जमीन कम बा तब बोली एक गो चीज अब जिजुआ बोली ऐसन का में हाँ डिविजन इन काइन जोन रहल आ रल सके स्वाद डाले के
1: हाँ।
0: जोन मंगले रखल है तो लोग के आवे ओकर किस में बोलेला
1: हाँ।
0: जी डिविजन इन काइन पता जाना चाहिए मांगत है सर जे नहीं सकल लाई हो पता जाना चाहिए हमने मांग करत है सर लिसिटेशन में एक नाम है पब्लिक ऑक्शन अब लिसिटेशन आए के लाकुर में अब एक दूसर दिन अब तक हम वायु हो जाए
1: हाँ हाँ।
0: बस कि वो नहीं सकल लाई पताजे करे
1: हाँ। तो
0: अब एगो लिसिटेशन करब सर आली कब लिसिटेशन करे हो यहाँ एगो वंत शेयर जैसे हमने बोली रहा सर एगो कुमार जब बेचल जाए पब्लिक के आगे तो पब्लिक के आगे वो कैसे बेचाला ये ओकर पोसे जे हुआ है मजीज है मस्त फिक्से कर दे एतेल दिन एतेल कुमा जे ई कुमा जे के एगो ऑक्शन सेल होई हई में मिल जाला कभी लगाजित में भी होला कि कुमा जे ई एगो जमीन एतेल एतेल हई मौसे कोट में एतेल की हई दिन कुमा जे बिचाई अब कोनो आदमी होई तक आई के को मन होई
1: हाँ।
0: किने के तो अब हुआ आई तो का करी एगो बड़का लसम हो लसम में जिजुआ हुआ बैठी ओकर सब कुमा जे ऑफिशियल भी बैठल बा बाप पब्लिक तो हुआ एक बान भरल बा काहे हुई जमीन जो का 4 रुपया के भी देखो 1 रुपया में जाता तो ही से आदमी जाला हाँ तू भी सब वक्त मजे किने हुआ से हई मिलियनेर बन जाइब
1: हाँ।
0: अब का होला पहले के आदमी एक बान रहल अभी तक भ
1: हाँ।
0: ये होला एगो चीज एगो है अब देखलता नहीं पता सोई जगह छे वाकी तक मजे कर पैसा के है बा बाटी के तब जाय हुआ अब का करी मस्त हुआ आज के से बोझो ओकर वतुआ करी वतवा से पब्लिक ऑक्शन में तो जैसे तरुआ बोली ना एगो मौत हो उमे तापे करी में ही या नहीं बा हमने के लाखुर में नहीं भाई सब मौत हो सब कुछ नहीं बा खाली एगो मिजा पही डाली ओ कुमा जे एगो ओकर हुआ के ऑफिसियो जो हुआ बोली तो उमे लिख दे बा कि उ दिन शुरू करी एतेल पैसा से सुबह से जमीन हुआ 4 रुपया के वो बा तो उस सकी बोली 1 रुपया से हमने शुरुआत कर बोली हल्ला करी कोर्ट ऑफिस से हुआ बोली एनओपीएन एनओपी दे एनओपी तो ऐसे अब कोनो ओ आदमिया जो
1: पैसा
0: जैसे ओ देते जाए तो कभी देखब ओ कुमा जे लाभवंतुआ जाता जब लाभवंतुआ अब हुआ कही है कुमा जे हुआ था अब हुआ से देखब बहुत सा आदमी का करेला यही वक्त जैसे बोली कि मिलियनेर बन जाइब बस का करेला एक बार आदमी पहले रहा हाथ तक बा देख बा खूब क्वेश्चन करवा दिल्ली बा जोली जोली पैसा तो पूछ में बा
1: हाँ।
0: मैं जाय हुआ अब ऊ पूछे करी अब एगो आदमी आ कैसे बोला कैसे बोझो 2 रुपया तो वो देखो था कहा कर ले रहा ऊ लोग अपन काम करेला अगर ये एक दिन दो दिन जब पपीवा निकल गया लालिस जैसे बोला था ऑप्शन हुआ के जाला देखे हु घरवा नहीं जाए देखिए मैं तो परमिशन नहीं दे नौके ढूके के बस का करी
1: मटिया
0: हाँ बस जाके देखी कहाँ बा उमे घर हुई तो कौन काली थी कि घर के हुआ हुई तो देखा था उखरो इसी में तो कर काम है जैसे ए बालू है कोनो तो माले वन सन को छोटे सेवैया के लेके चल जाए जो एकरे काम है ये बालू करे के वो जाके वहाँ देख ली बोली दिखते ही कितना बा है हम ओकर है
1: ओकर वालिया जान जाए तो जनियन सब की कितना में जाता और अगर जे जितना जितना कोई बोला था अगर उतना से तनी जस्ती देवे सकी तो मन मान ला ओकर भाग खुल गल
0: हाँ जे 4 रुपया के वो हाँ। उतर 4 रुपया में नहीं किनी ना
1: हाँ, हाँ।
0: तो नीचे ही के ओकर पैसवा में देखता जो ने गोदमी अब ओकर यहाँ बा बेचारा 2 रुपया

0: तो उता कहाँ खोजी बस ओके छाना भी बोला कैसे पैसवा भी के डाले के छाना हुआ तो हियाँ देख ओके नहीं सकी कुमार जे हई हई
1: तो मान ला ऑक्शन हो गल बिका गल अब जोन पैसवा मिली तो ओकर में कैसे फिर लापताश हो
0: सैफ नहीं नहीं जुड़ी चीज है जब हुआ डिसीडे हो गल बिचा गल घर हुआ हई ऑक्शन में आदमी किन ले ले होई तो ऊ जाके आर ओकर डिपोजिट करू देला कुमार सब पैसवा नहीं हुआ एगो पापिये सीए करी कि हाँ वही कि नहीं तो हुआ दाई ओके एगो लेता मिले ला कुमार जे एगो दे देने के मंस में जाके ओके चाहेला पैसवा कुमार जे वहाँ वैसे करेगी पैसा मिल गल अब कैसे मिल गल हुआ अब पताज हुई
1: जितना कमीशन रही जितना जो चीज पड़ी पे करे के
0: सब गन के वो तक मजे आर गिरबे कर जी पक मजो कर वाले यार तो यहाँ देख लो एगो घर मजे या गो जमीन कितना बो मौसम एक बार आदमी खोजे ला बाप जेकर यहाँ पैसा बा तो देख बा उसन उसन जाके जमीन खरीदे ला तो ओके पैसा यहाँ मिले ला।
1: तो चला आज के कार्यक्रम के हैजा पर समाप्त करे के समय हो गल बा बिल्कुल आज हम बात कर लीजा पोताज जुडिशिया पर यानी डिविजन इन काइंड जब एगो पोताज नहीं होवे सकेला या कबो ऐसा हो जाला कि दू गो भाई बहन या पांच गो भाई बहन में दू गो जन नहीं मानता तीन गो मानता था है भी लाकूर में जाके कैसन रूप लेवेला जैसे अभी रघुनंदन जी हमनी के समझेलन बहुत निमन से बहुत बहुत धन्यवाद रघुनंदन जी हर हर बेरा जब जब भी तू आवेला हमनी के बहुत निमन से है जोन कानून के जितना कार्यवाही रहेला कितना निमन से हमनी के समझावेला और बिल्कुल जितना कोई खुशी हवन कुनो ऐसन लीगल बिल्कुल करे के पौताज करे के तो रघुनंदन जी हमनी के हमेशा सहयोग देवेलन सा तो चला आज के कार्यक्रम में हैजा पर समाप्त करत हैं और फेरों से एगो और नवा कार्यक्रम के साथ वेदिता उपस्थित रहियन अगला शुक्रवार के तो जरूर साथ दिया जा और एकर संगे हमनी के जितना टेक्निकल टीम हवन फैजान जी टेक्निक पर उरुसा दीपशिका जी हाँ आज हमनी के संगे दीपशिका हवन दीपशिका के बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ निजाम जी हमार प्रोड्यूसर और जितना दर्शक लोग जितना श्रोता लोगन हमनी के साथ दिलन बहुत बहुत धन्यवाद एकर संगे जन्माष्टमी के शुभकामना दे के आज के कार्यक्रम के हाईजा पर समाप्त करत हैं नमस्कार शुभ दिन सब कोई के।

0: Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: निश्रा सभी को हमारा नमस्कार। इस साल सितंबर से 31 दिसंबर के बीच 61 साल के होने वाले लोगों को बेसिक रिटायरमेंट पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सोशल इंटीग्रेशन मंत्रालय के अनुसार उन्हें अपने घर के नज़दीकी सोशल सिक्योरिटी दफ्तर में रजिस्ट्रेशन कराना है। इन लोगों को इस साल दिसंबर तक बेसिक रिटायरमेंट पेंशन मिलेगी। जनवरी 2027 से इन्हें स्टेट एज पेंशन में शामिल किया जाएगा, लेकिन उनकी पेंशन की रकम वही रहेगी। इस प्रक्रिया में उन्हें मिलने वाली दूसरी सुविधाएं भी शामिल हैं, जैसे लमसम की रकम वापस मिलना। कानून में लिखी बातों और लोगों की असल जिंदगी के बीच की दूरी, इसी विषय पर मॉरिशस बॉ एसोसिएशन का वार्षिक सम्मेलन आज बालाकलावा में लगा। राष्ट्रपति धर्म गोकुल भी इसमें मौजूद थे। मुख्य अतिथि और भारत के पूर्व चीफ जस्टिस डॉक्टर धनंजय चंद्रचूड़ ने कहा कि आम लोगों के लिए न्याय तक पहुंच आसान बनाना जरूरी है। उन्होंने

न्याय व्यवस्था को समाज की असली जरूरतों के अनुसार ढालने पर भी जोर दिया। इस दौरान जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने में प्रो बोनो सेवाओं की अहम भूमिका पर भी चर्चा की गई। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन ने संविधान में सुधार को लेकर आम लोगों से राय लेने की प्रक्रिया शुरू की है। लोग

0: नई पीढ़ी के अधिकारों, सुशासन, सरकारी पदों पर नियुक्तियों और चुनाव प्रक्रिया पर अपने सुझाव दे सकते हैं। कमीशन ने डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस की संवैधानिक स्थिति, न्याय व्यवस्था और अदालतों के कामकाज पर भी लोगों की राय मांगी। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाने के प्रस्ताव पर भी सुझाव दिए जा सकते हैं। सभी सुझाव लिखित रूप से 28 अक्टूबर तक भेजने होंगे। इन्हें डाक से भेजा जा सकता है या पोर्ट लुइस के सिकम बिल्डिंग 2 में कमीशन के कार्यालय में जमा किया जा सकता है। सुझाव crcmupublic@gmail.com पर ईमेल भी किए जा सकते हैं। कमीशन ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। और विदेशी खबरों में, चक्रवाती तूफान चीन के फ्यूजान प्रांत के तट से टकराया है। खतरे को देखते हुए 83,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कई स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि रेल और दूसरी यातायात सेवाएं भी अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: RM3 Radio.
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है
2: आपकी चिट्ठी मिली आपकी चिट्ठी मिली। शाम के 4:15 हो चुके हैं, ये रेडियो मनोरंजन का प्रसारण है। मैं हुरतना पहुंची हूँ आपका साथ देने के लिए आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम को लेकर, जो चलेगा शाम के 5 बजे तक। जहां कहीं से भी साथ दे रहे हैं, दिल से साथ निभाने के लिए बिल्कुल थैंक यू सो मच। और बिल्कुल आज के इस चिट्ठियों के सिलसिले को हम लेकर आए हैं आपके नाम, जहाँ पर आपकी चिट्ठियाँ, केवल चिट्ठियाँ नहीं पर कई बार जुबानी कही गई कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ अनकही कहानियाँ जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते थे, और आज वही बात आज हम तक आपने पहुंचाई है। थैंक यू सो मच। कई बार टेलीफोन के माध्यम से, कई बार मैसेजेस के माध्यम से, या फिर बिल्कुल बकायदा चिट्ठियों के माध्यम से इस कार्यक्रम में आप भाग ले सकते हैं। डेफिनेटली इस कार्यक्रम में हम आपके दिल के जज्बात को बयां करते हैं। कुछ बातें हैं जो हम कहना चाहते हैं पर अल्फाज नहीं मिलते, शब्द नहीं मिलते, बस आपके जज्बात को हम वो आवाज दे रहे हैं, और आपके दिल की बात को आज के इस मंच पर हम शेयर कर रहे हैं। और आज की ये जो चिट्ठी, ये जो बात है, वो जुबानी कही गई है, और आपकी कही गई कहानी हमने शब्दों में पिरोकर आज के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। वैसे आपने कहा था कि वैसे तो नाम नहीं लिया जाता इस कार्यक्रम में, पर आप अगर नाम जोड़ना ही चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि ये लेटर कुकू ने लिखा है। और कुकू ने कहा कि भाई बस यही आप नाम बोलिएगा, जिसे समझना होगा वो समझ जाएगा। तो चलिए कुकू, आपकी कहानी हम लेकर आए हैं, और आप बस कहना चाहती थी कि किसी रिश्ते में अगर दरार आ जाए तो उसे फिर से भर के ठीक करना सेम नहीं होता। आज मैं अपने दिल की बात शेयर करने की हिम्मत जुटा पाई हूँ। 1 साल पुरानी बात है ये। मुझे एक कोई मिला था जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता था, करता है वैसे आज भी। वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, और सच पूछो तो मैं उसे देखकर बहुत ही मोटिवेटेड फील करती थी, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील करती थी। और उससे दोस्ती हुई और सब कुछ बस ठीक ही चल रहा था। हमारी दोस्ती धीरे धीरे करते हुए

बहुत अच्छी दोस्ती में बदल गई और बहुत ही ज़्यादा गहरी होती चली गई। और कहीं ना कहीं मुझे इसको लेकर बहुत अच्छा फील होता था, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसके साथ बस लंच पर जाना या फिर एक टी ब्रेक पर जाना, उसके साथ समय बिताना, उसको मैसेजेस शेयर करना, उसके साथ समय पता नहीं कहाँ चला जाता था। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस फील करने लगी थी कुछ ही समय में, पर क्या पता शायद वो सीरियस नहीं था या फिर वो कन्फ्यूज्ड था, कुछ समझ नहीं पाई मैं। क्योंकि कई बार उसने मुझसे ये कहा था कि उसके लिए उसका करियर सबसे ऊपर है, कोई लड़की ये नहीं चाहेगी कि वो जिससे प्यार करे उसके लिए उसके अलावा कोई भी चीज ज्यादा जरूरी हो। पर यहां तो सिनारियो कुछ अलग ही था, उसने तो यहाँ तक कहा था कि करियर और मेरे बीच अगर उसे कुछ चुनना पड़े तो वो हमेशा करियर को चुनेगा। ये बात मेरे दिल को कुछ खलने लगी और इसी बात को लेकर सच में मैं बहुत उदास हो गई थी। और उस दिन हमारी कुछ नोकझोंक भी हुई, लड़ाई भी हुई, पर वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था कि उसको लेकर मेरे दिल में उसके लिए क्या जगह है। उसने कई बार मुझे ये इशारा दिया कि उसके लिए उसका करियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर इस बात से कहीं ना कहीं मैं उससे दूर होने लगी, बात कम होने लगी और धीरे धीरे करते हुए मैं भी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गई और दूरियां बढ़ने लगी। पर बात ये नहीं है, बात कुछ और है कि अभी कुछ दिनों पहले वो लड़का मुझे फिर मिला। उसे देखकर पता नहीं मेरी आंखें क्यों भर आई, मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया। इस फीलिंग को मैं समझ नहीं पा रही थी। इतने दिनों मुझे उसकी याद भी नहीं आई, मैं उसके लिए कोई भी उसकी किसी बात को मैं याद नहीं कर रही थी। मैंने अपने आप को इस कदर पिरो लिया था अपने कामों में, इस कदर उलझा लिया मैंने अपने कामों में कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती थी उसके बारे में सोचने की, उसकी चीज़ों को देखने की, उससे किसी भी तरह की बातें करने की, या मैं उसे मिस तक नहीं कर रही थी। पर अचानक से जब वो मेरे सामने आया तो मैं इस फीलिंग को रोक नहीं पाई। इतने दिन से मुझे उसकी कोई याद नहीं आ रही थी, पर मैंने अपने आप को उस मौके पर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई। मैं क्यों उसके बारे में इस कदर सोच रही हूँ? क्या आज के ज़माने में सच्चा प्यार जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है? आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड, आई स्टिल डोंट नो। वैसे कुकू बिल्कुल सच्चा प्यार जैसा एग्जिस्ट करता तो होगा, क्योंकि आपने जैसा उसके लिए फील किया, क्योंकि इतने समय, इतने लंबे गैप के बाद अगर आप अभी उसके लिए वो वाली फीलिंग्स, आपको ऐसा लगता है कि सच में आप उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और कहीं ना कहीं उसे देखकर वो फीलिंग्स फिर उमड़ कर आई हैं, तो डेफिनेटली सच्चा प्यार एग्जिस्ट तो करता होगा। पर यहाँ पर मैं ज़रूर आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर उस लड़के को आपके लिए सेम फीलिंग्स नहीं है तो माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल इस रिश्ते को जाने दो। क्योंकि अगर वो इंसान आपके लिए वैसा फील नहीं करता तो डेफिनेटली आगे चलकर आप जिस प्यार की उम्मीद उनसे लगाए बैठे हैं, हो सकता है कि वो आपको ऐसा प्यार ना दे सके। और जहाँ पर उम्मीदें बंधती हैं, जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और अगर एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और फिर उस दर्द को झेलना, ये इस दर्द से भी और ज़्यादा दर्दनाक होगा। बट एनी वेज कुकू, आज के इस प्रोग्राम

प्रोग्राम में आपने जुबानी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की, इसके लिए हम कहेंगे थैंक यू सो मच, बिकॉज यू नीड अ हार्ट टू डू दैट. और कहीं ना कहीं किसी भी जज्बात को किसी के सामने बयां करना आसान नहीं होता. और मैं समझ रही हूँ कि अगर आप इस प्रोग्राम को इस वक्त सुन रही हैं तो अभी भी शायद आपकी आंखें नम होंगी और बिल्कुल ये फीलिंग्स बहुत स्पेशल होती है. और सच कहूँ तो उसके लिए आंसू बहाना बंद कर दें जो आपके आंसुओं की कदर नहीं कर रहा.

आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम। और यहाँ पर बिल्कुल हमारे साथ बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए हैं। आशा जानू कॉटेज से जुड़ी हुई हैं, शोभा जी बकवा से जुड़ी हुई हैं, और उदय जी हमारा साथ दे रहे हैं गिवजपुर से। प्रोग्राम को बेहद प्यार से सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच आप सभी को। जय श्री कृष्ण। आज बिल्कुल कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व, और ईश्वर के पास यही हम कामना करें कि जितने भी लोग दुख से गुजर रहे हैं उनको हिम्मत दे, धैर्य दे। और चलिए इसी के साथ बिल्कुल 4:32 हो चुके हैं, और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज किसी ने भेजा है, और ये मैसेज हालांकि है अंग्रेज़ी में, पर हम ज़रूर इसका अनुवाद करके आपको, बिल्कुल ये एक फॉरवर्डेड मैसेज है। आप लिखते हैं कि समवन सेड क्लोज द विंडो दैट हर्ट्स यू नो मैटर हाउ ब्यूटिफुल द व्यू इज एंड आई फेल्ट दैट। जो खिड़की आपको दर्द दे उसे बंद कर दे, चाहे कितने भी अच्छे नज़ारे हों, बिल्कुल आप कि दिल का सुकून ज्यादा मायने रखता है। जो कुछ अच्छा दिखता है

जरूरी नहीं कि आपके लिए भी अच्छा हो। आपके मन की शांति ज्यादा जरूरी है। जो आपको दर्द दे उसे दूर कर दीजिए। जिंदगी जीने के लिए यही सबसे उत्तम उपाय है। और हो सकता है कुकू, अगर आप हमें सुन रहे हो तो शायद ये मैसेज आपके लिए था। थैंक यू सो मच जिसने भी ये मैसेज भेजा है हमें। बिल्कुल, जिंदगी जीने के लिए बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं, पर साथ ही साथ मायने रखती हैं हमारे दिल की खुशी, हमारे मन का सुकून और चैन। आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम, बिल्कुल 4028070 पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, एंड 5250620 पर आपके मैसेजेस व्हाट्सएप के द्वारा या फिर आम मैसेज के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं।

चिट्ठी मिली कार्यक्रम को जारी रखते हैं और बिल्कुल यहाँ पर एक प्यारा सा शेर किसी ने कुकू के लिए भेजा है. अगर कुकू आप सुन रहे हैं तो दिस वन गोज आउट फॉर यू. यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया है कि अगर तुम्हें वो ना मिले जिसे तुम चाहते

0: अगर वो तुम्हें वो ना मिले जिसे तुम चाहते हो तो समझ लो किसी और ने तुम्हें मांग रखा है. Such a lovely one. And with this, बिल्कुल आपकी चिट्ठी मिली, कार्यक्रम जारी है. On the waves of Radio Manoranjan इस वक्त 4:38 और हमेशा की तरह हमारी एक बहुत ही प्यारी सी श्रोता हमारे साथ जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है. आइए उनसे बात करते हैं. हेलो.
1: हाँ नमस्ते मेघनायनी जी.
0: नमस्ते. नमस्ते शामा जी, आप कैसे हैं?
1: मैं ठीक हूँ.
0: हाँ जी,
1: आप कैसी है?
0: बिल्कुल बढ़िया. और आपको जय श्री कृष्ण. और आज के इस कार्यक्रम में आपको जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी की पावन मंगल कामना.
1: बहुत धन्यवाद. आपको भी अभिनंदन.
0: हाँ जी,
1: कृष्ण जन्माष्टमी सभी के चाहने वाले हैं कृष्ण जी ना.
0: बिल्कुल बिल्कुल. हाँ जी, आपको जोड़ना चाहती है. हाँ जी हाँ.
1: तो कैसे कहते हैं, हर शुक्रवार को आपकी चिट्ठी मिली का इंतजार रहता है हमें.
0: बहुत बहुत धन्यवाद. हाँ जी
1: हाँ. तो रिश्ते पर आप बात करें ना, ये कैसा रिश्ता है जिसमें अपनापन नहीं है ना.
0: बिल्कुल.
1: मैं जैसे जानती हूँ जिस प्रकार टूटा हुआ शीशा जुड़ नहीं सकता है ना, बस उसी प्रकार टूटा, कैसे कहते हैं, उसी प्रकार जब दिल टूट जाता है तो नहीं जुड़ सकता है, और जब जुड़ भी जाएगा तो उसमें रस्सी की तरह जैसे गांठ बांधते हैं ना, एक गांठ सी पड़ जाती है.
0: सही बिल्कुल.
1: एक गांठ हमेशा के लिए आपको सोचने के लिए वो गांठ आ जाती है बीच में. जैसे हम उम्मीद और आशा के दिए जलाए बैठे रहते हैं, पर आगे चलकर क्या यह रिश्ता कायम रहेगा? क्योंकि रिश्ते में छोटे बड़े गोरे काले जात पात आदि होते हैं. किसी को पता नहीं चलता कि रिश्ते में कैसा दर्द है. रिश्ता निभाना आसान नहीं है. ऊंच नीच की दीवार, अमीर गरीब की दो चाहने वालों के बीच में दरार आ जाता है. आपको पता है ना, हर रिश्ते में प्यार नहीं होता है, दरार दिखाने के लिए है. जैसे कि प्यार दिखाने की चीज नहीं होती है बल्कि महसूस करने की चीज होती है. भाई बहन का प्यार, पति पत्नी का प्यार, पशु पक्षी से एक प्रकार का रिश्ता बन जाता है ना. पर अगर रिश्ता टूट जाता है तो दर्द बहुत होता है, और उसकी कोई न इलाज है न दवा दारू है. मेरा यही कहना है.
0: बहुत बहुत प्यार से आपने ये शब्दों को पुरोया है, और मैं आपको बहुत बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी. श्यामा जी, आप बहुत अनुभवी हैं और हर प्रोग्राम में आप बहुत ही दिलचस्प अनुभव के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करती हैं, साझा करती हैं, जो मैं समझती हूँ ये सच में कहीं ना कहीं आपने जीवन के जितने भी इस पहलू से निकलकर आप एक अनुभव पर पहुंची हैं. कहते हैं ना कि अभी जो हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो बड़ी बढ़ रही है आगे और बढ़ती चली जा रही है, कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी अनुभव की बातें हो सकता है उनके लिए भी एक मार्गदर्शन हो. और बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा जी.
1: वे लोग लापरवाही के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपको पता है.
0: नहीं, कई बार ऐसा होता है कि आज की जो नई युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना कि एकदम केयरफ्री है, बहुत दिल से खुलकर बातें करती हैं, दिल से खुलकर जीना चाहती है. पर कई बार कहते हैं ना कि इतना ज़्यादा भी अगर आप केयरफ्री हो जाओगे तो हो सकता है कि आगे जाकर आपको कहीं चोट ना लग जाए. और हमारे जितने बड़े बुजुर्ग हैं हमेशा उनको एक सही मार्गदर्शन देते हैं. पर कहते हैं ना कि कई बार खुद की गलतियों से ही इंसान सीख कर आगे बढ़ता है.
1: वो कहते हैं ना, ठोकर खाकर संभलने वाले जीत है तेरी हार नहीं.
0: बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ,
1: अगर ठोकर लगने पर सुधर जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो जिंदगी भर का दर्द लेकर
0: सर दर्द. और इसका इसका जो एहसास होता है वो माता पिता को ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है. बिल्कुल. चलिए, थैंक यू सो मच शामा जी, आपने कुछ शब्दों को जोड़ा. बहुत बहुत धन्यवाद आपको.
1: हाँ जी
0: जी हाँ, बिल्कुल. आज के इस कार्यक्रम को कुछ ऐसी ही लाजवाब बातों के साथ, लाजवाब खतों के साथ, और आपके प्यार भरे मैसेजेस जो आप हम तक पहुंचा रहे हैं, थैंक यू अगेन. और यहाँ सुदेवी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है. मौका से कहती है, प्रोग्राम सुनते सुनते ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ प्रोग्राम ही सुने, खाना ना बनाए. हाय हाय, ऐसा मत कीजिएगा वरना मुझे डांट पड़ेगी कि आपके प्रोग्राम के कारण हमें आज खाना भी नसीब नहीं हुआ. बट एनी वेज, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, रास्ते में हैं, तो ज़रूर गानों को सुनते हुए, प्रोग्राम को सुनते हुए, नज़र को रास्ते पर टिकाए हुए और हाथों को स्टीयरिंग, बिल्कुल स्टीयरिंग व्हील से आप अपने मंजिल की ओर सेफ एंड साउंड पहुँचें. वैसे इट्स ऑलरेडी बस 4:43 यानी 4:43

रहे हैं और कार्यक्रम जारी है शाम के 5 बजे तक. सो हैव अ ब्यूटिफुल टाइम विद सम नाइस म्यूजिक. भैया आज आपको लगेगा दिल फैंक ऐसे गाने क्यों चला रहे हो, बट क्या करे यार, कुकू की स्टोरी ने तो दिल पे सीधा वार किया है. कुकू यार आपको रुलाने का हमारा कोई इरादा नहीं है, बट जस्ट मेक श्योर आपके लिए अभी भी बहुत बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग रिजर्व्ड हैं और आप उनके साथ खुश रहें जो आपको देखकर खुश होते हैं.

रोशनी यहाँ हमारे साथ काटोबोन से जुड़ी हुई है. हाय रोशनी, इट्स अ प्लेजर. बस ऐसे ही सुनते रहें एंड हाय हेलो करते रहें. आपकी चिट्ठी मिली प्रोग्राम रेडियो मनोरंजन पर एवरी फ्राइडे शाम के 4 बजे से 5 बजे के बीच. और किसी ने क्या खूब अर्ज किया है कि इश्क की पहली हवा सुहानी होती है, उसके बाद बर्बाद सारी जवानी होती है. हर एक इंसान शौक से शायरी नहीं लिखता, उसके पीछे भी कोई बहुत ही बड़ी कहानी होती है. थैंक यू अगेन फॉर दिस लवली मैसेज. और आपके मैसेजेस, आपकी चिट्ठियां, आपकी फोन कॉल्स और आपकी कही गई कहानियों से ही ये सेगमेंट लाजवाब बनता है. भाई दिल की लगी ऐसी ही होती है, मन की लगन अगर किसी से लग जाए तो उसे भुलाना बहुत मुश्किल होता है. अगर उससे रिश्ता ना भी जुड़ा पर जिंदगी के आप किसी भी मोड़ पर आप चले जाएं, जिनसे पहला नाता जुड़ा वो हमेशा बहुत ही स्पेशल रहता है.

तो दोस्तों इसी के साथ जाने का समय हो चला है। वैसे आपको याद दिलाते चलेगी, अभी थोड़ी ही देर में यानी 5 बजे से 6 बजे के बीच आप सुन पाएंगे कलाकार की बात, जहां पर हमारे स्थानीय कलाकारों के साथ कार्यक्रम किया जाता है और बेशक प्रस्तुतकर्ता होंगे रोशन हरनाम, जो अपनी चुलबुली बातों के साथ, मज़ेदार खेल के साथ इस कार्यक्रम को बहुत ही दिलचस्पी से सजाते हैं। तो ज़रूर आप उनका प्यार से साथ दीजिएगा। और जाते जाते रोशनी जी, आपका प्यारा सा मैसेज हम ज़रूर जोड़ना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम में, कि हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता है, हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता है, या तो बाहर निकलो इससे या तो बर्बाद हो जाओ इसमें। पर आज की जो जनरेशन है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बर्बाद होने में नहीं मानती, बस निकल जाती है, कट लेती है। चलिए वैसे हमारा भी कट लेने का समय हो चुका है और फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार को ऐसे ही हंसते मुस्कुराते कार्यक्रम के साथ, आपकी चिट्ठी मिली में, जहां पर आपके प्यार भरे खतों को हम ज़रूर शामिल करेंगे। तो ज़रूर आपके मैसेजेस भेजते रहिएगा हम तक। और छोड़े जाते हैं पापॉन की आवाज़ में रखा हुआ ये दिल फेंक गाना, दम लगा के हाइशा से लिया हुआ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए एंजॉय योर वीकेंड एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल। गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।

0: 94.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3
1: 5:01 हो गए बा और अभी अभी आप लोग सुनना चाह प्रोग्राम आपकी चिट्ठी मिली अपन सखी रत्ना जी द्वारा बहुत ही सुंदर प्रकार से वो ही

0: बहुत ही इंतजार करेला जा आपकी चिट्ठी मिली प्रोग्राम खातिर और ई प्रोग्राम के बाद चला हाय प्रोग्राम प्रस्तुत करे के बारी चला बा
1: कलाकार के बाद
0: प्यारे प्यारे बहन भाई लोगन साथी लोगन संगतिया लोग कैसे हुआ जा हम तो जानिला बहुत ही उत्सुक हुआ कलाकार के बाद प्रोग्राम सुने खातिर और तो हर खातिर आज ते कलाकार एकदम तैयार होके चलाल बा एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन कलाकार आल हुआ जा चलेगो बहुत ही विभिन्न तरीके से होलो के हमने तोहर के तेरे स्वागत करब जा तो चलेगो श्लोक से शुरू करब जा काहे खातिर आज है कृष्ण जन्माष्टमी और ई अवसर पर है श्लोक सुना ई मधुर आवाज में

0: जी हाँ साथी लोगन, सुनला मधुर आवाज में एगो श्लोक कृष्ण जी पर आधारित। वसुदेव सुतम देवम, वसुदेव पुत्र जो रलन उत योगी राज श्री कृष्ण जी रलन, और ई मधुर आवाज सुनला और ओकर बैकग्राउंड म्यूजिक में अनुमान लगेला कि एगो बहुत ही सुरीली सी एगो तार तोरा सुना दे, और उहर गिटार के जो ध्वनि है वो तो सुन ल। तो चल हमनी स्वागत करी ला जा एक बार फिर दोनों जवान के। एगो है हमनी के भाई केतन महाराज जी। केतन जी आपका स्वागत बा। केतन जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: यह तू है जा आल हुआ दीजा आल हुआ, और तोहर एक बार हमनी फिर से शानदार स्वागत करत हैं जा। और आज है कृष्ण जन्माष्टमी, और एकर से बढ़िया तरीके से हमनी ने सकती सहाय प्रोग्राम क्या आरम्भ करे
1: ना? जरूर।
0: और हमनी के यहाँ जो दूसरा नौजवान बा वह भाई अवनीश जी। अवनीश जी नमस्ते।
2: जी नमस्ते आप सभी को।
0: कैसे हुआ जी अवनीश जी?
2: जी मैं एकदम बढ़िया हूँ।
0: एकदम बढ़िया है आप, बहुत ही अच्छा था। गिटार बहुत अच्छी तरीके से खेले ला तू था।
2: जी बहुत धन्यवाद।
0: और केतन जी के साथ बहुत ही प्रोग्राम का ले हुआ। हाँ बहुत अच्छा। हमने के साथ अभी गो तीसरा नौजवान कुछ देर में जुड़ियन, तो चल हमने केतन जी से शुरुआत करब से श्री गणेश करब से प्रोग्राम के। और श्री गणेश करते हुए केतन जी फिर से हमने के श्रोतागण के बताओ कि तुहर पूरा नाम का है और कहाँ रहेला।
1: सबसे पहले हम सब श्रोता लोगन के श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के ढेर सारी शुभकामना देवत हैं। हमर नाम केतन महाराज है। हम मधुस्थलिया गांव में रहिला, और हम एगो संगीत प्रेमी हैं, खास करके भोजपुरी के क्षेत्र में। और हमर लक्ष्य जुनबा भोजपुरी के बढ़ावा दे के, यही हमर सबसे बड़ा लक्ष्य बा।
0: बहुत सुंदर परिचय दिला केतन जी। अभी तू कोर्स भी करत हुआ एमजीआई में, और भोजपुरी के लेके बहुत ही उत्तम कार्य करत हुआ। ई जो भाषा है के आगे बढ़ाए खोजत हुआ, और खासकर नौजवान लोग के बटोरत हुआ। इर्द गिर्द अपन देखत हैं बहुत से नौजवान बा, वो लोग एक क्षेत्र में तो उड़ानत हुआ।

0: बात भाई केतन जी तो हर एगो बहुत ही सुंदर सा जो गाना है वो हला चर्चा कर ले ललो जा
1: हाँ हाँ
0: तो हर अनुमति से वो गाना हमने सुनब सा
1: जरूर, जरूर
0: अगर अनुमति दे बता
1: नहीं, नहीं।
0: तो हमनी के श्रोतागण के बता दे लजा कि आज हमनी के संगे अवनीश रामदाहिन जी होन और साथ साथ में केतन महाराज जी और अमन जी भी बाद में अभी जुड़ियन हमनी संगे और तो लोगों के हमनी मौका देब जा कलाकार लोग से बात करे के और हमनी के प्रश्न के जवाब दे के और नंबर वन नोट कर ल 4028070 का सौ देगा तो मैं सुसन जिस और लगे हाथ तोहरा और अपन समस्त परिवार के हमनी की ओर से बोली लजा कृष्ण जन्माष्टमी अभिनंदन और ई गाना सुन भाई केतन जी के आवाज़ में
2: RM3 Radio.

0: प्रोटागन अभी अभी सुन ला जा केतन की आवाज़ में स्टाइल माइकल जैक्सन जो निकर गाना के शीर्षक बहुत ही धमाकेदार रूप में ई तोहर सामने आ ली गाना अगर तोहर मन करी ही गाना फिर से सुने के तो भोजपुरी तरका के दौरान एकर मांग अवश्य करिया जा है कि हमने के नौजवान लोग के हमने के छाना प्रोत्साहित करे के कि और ऐसन भोजपुरी में गाना निकाले के भाषा के प्रचार प्रसार करे के केतन जी हमने के बतावो कि है जो स्टाइल माइकल जैक्सन है एकर जो बोल है एकर जो विचार है एकर जो आइडियाज है कैसे तो हर मन में उत्पन्न होल
1: है गीतवा हम सकब बोले कि है गीतवा खाली ओकर जो पहला लालिन है हम सुनले लरी अपन गुरु जी जोन स्वर्गीय बसंत सुपोल जी हवन उनकर से मैं उनकर संगीत तबला बजावत हली और ई गीत के जोन सहयोग दिले बा जोन हमरा सहायता करले बा बनाए के एकर में जोन म्यूजिक डाले के एकर सब चीज आई का हमर दोस्त लोग तोहर सामने बा ए लोगे हमरा प्रोत्साहित करलन हम फिर ओकर जोन अंतरा बा ऊ लिखली ओकर पर बनैली गीतवा के निमन से और दोस्त लोग सहायता करलक तब अब तोहर सामने बा
0: बहुत अच्छा अगर ऐसन गुरु तोहर सामने चलाए जैसे स्वर्गीय बसंत सुपोल जी रलन
1: बोला चला ना जेकर गुरु बलवान रहेला तो चेला पहलवान रहेला
0: क्या बात बा बहुत ही बढ़िया ई ई बात पर हम तो तोहरा कुछ बोलब दे ताली है ना ताली चेहरा मारे की तब हाँ जी बिल्कुल और गुरु के चाहना हमेशा आदर सम्मान करे के और गुरु के जरिए ही तू अपन ज्ञान पैब और जीवन में आगे बढ़ब आजकल के जमाना में देखब स कि गुरु के इतना ज्यादा मान नहीं देवे लंजा विद्यार्थी लोग यही खातिर समाज में बहुत ही कठिनाई उत्पन्न होवेला परंतु एक नौजवान होने के उपरांत भी तू ऐसा विचार रखेला मन में ये सराहनीय बात है बा केतन जी और अवनीश जी जो होवन गिटार खूबे अच्छी तरह से बजावे रंजा तो अवनीश जी हमने के बताओ कि तू कहाँ रहेला
2: जी मेरा नाम अवनीश रामदाइन है मैं रोशनुआ गांव का एक निवासी हूँ मैं 21 साल का हूँ
0: 21 साल के नौजवान हुआ जा और 21 साल में तू एगो इंस्ट्रूमेंटालिस्ट हुआ और ऊपर से एगो गिटारिस्ट भी हुआ और ई कहाँ से सीखले हुआ ये गिटार बजाते हुए
2: जी मेरे घर में एक पियानो था पहले
0: अच्छा
2: तो मैं बजाना नहीं जानता था और एक गिटार भी था तो मैंने यूट्यूब पर देखा सीखना शुरू किया तब मेरे पिताजी के एक दोस्त हैं जो उनका नाम जानव बांतवा है तो मेरे पिताजी ने उससे बात किया तब मैं उसके घर पर जाकर सीखता था
0: आपके पिताजी जहाँ तक मैं जानता हूँ जहाँ तक हम जानी ला अवनीश तोहर पिताजी जो होवन वो एगो बड़ा ही महान संगीतकार होवन बताओ हमने के बारे तो ओकर बारे में तनी हमने के सुना हुआ
2: जी वो एक बहुत
1: जाने माने कलाकार है मॉरिशस के
0: और नाम है ओकर अविनाश रामदाहिन
2: जी
0: तब बताओ तनी कुछ करेलन केतन जी तोहरा जानेला हाँ,
1: अविनाश जी के अविनाश सकब सब बोले मॉरिशस भर में के ओकरा नहीं जानेला कौन ऐसा बैंड बा कौन ऐसा प्रतियोगिता बा जहाँ पर ऊ नहीं खेल ले बा जब इंडियन आइडल लोग आवेला मॉरिशस में अपन परफॉर्मेंस करे तो एकर बाप चुनल जाला हो जा परी वो लोग के अकॉम्पेनिमेंट करेगी वो लोग संगे खेले की
0: बहुत अच्छा
1: और एक सर्व उत्तम बात जोन जोन ढेर कोई नहीं जानेला भाई अवनीश जी और उनकर पिताजी भाई अविनाश जी जब राम मंदिर के उद्घाटन हो रहल
0: अयोध्या में
1: तब ये लोग सरकार देने से गर अलंसा हो जा परी अपन प्रस्तुति करी और हो जा परी मतलब कि ये लोग के मौका मिल रहा जहाँ पर जो राम मंदिर के जो मूर्ति के आगे हौजा अपन
0: प्रतिमा के आगे
1: प्रतिमा के आगे हौजा पर ही अपन प्रस्तुति करेगी
0: ऐसा
1: सौभाग्य के बाद
0: बहुत सौभाग्य के बाद भाई तो सचमुच और वो एक बहुत ही जैसे बोले जा वर्ल्ड रिनाउंड इवेंट रहा पूरे जग में सभी लोग ये घड़ी के इंतजार करे रंजा और कब अयोध्या मंदिर के उद्घाटन हुए और हमने के बहुत ही गर्व के बाद बाकी अविनाश जी वहां पर गेलन और अपन कला के प्रदर्शन भी करलन तो चला खेतन जी हुआ हमने के साथ और अवनीश जी भी हुआ हमने के साथ और एगो प्रश्न थोड़ा से पूछे के बारी चला बा तो चला आज कृष्ण जन्माष्टमी है और श्रोतागण 4028070 पर हमने के जल्दी जल्दी बताओ आज सुन ल हमने के परिचय दे से आगे आप केतन जी की के आवाज़ में एक बहुत ही सुंदर मंत्र सुन ल जेकर बोल जेकर जो दुगो शब्द है वो है वसुदेव सुतम सकब हमने के मंत्र पूरा पूरा उच्चारण करे बहुत ही आसान सा प्रश्न बगैर केतन जी के गौर से सुन ल हमनी के बताव एक बार फिर हमनी के दोहराव ई जो मंत्र है जो श्लोक है जहाँ पर श्री कृष्ण जी के आवाहन होल बा और उच्चारण कर ई मंत्र के ओम वसुदेव सुतम ये आप कंटिन्यू कर 4028070 4027 पर बेशक अपन जवाब द अविनाश अवनीश जी हमने के बतावा कि 21 साल के हुआ और संगीत खेले के अलावा जिंदगी में और क्या करेला
2: जी एक्चुअली मेरी काम म्यूजिक है मैं शो में बजाता हूँ शादी में बर्थडे पार्टी में बजाता हूँ और कंसर्ट में भी बजाता हूँ जैसे कैसे बोलते हैं मेरी जिंदगी संगीत ही से शुरू हुई जब मैं छोटा था मेरा पिताजी पियानो गिटार बेस गिटार बजाता था और मेरे दादाजी तब उस समय पर था वो भी गिटार बजाता था तो मेरे बचपन संगीत से ही कथा है
0: बिल्कुल तो हर जीवन जो न संगीत से जुड़ल है और ऐसा नौजवान बहुत कम देखे के मिलेला मॉरिशस में कि बचपन से ही तू संगीत के ओर झुकाव बातो हर तो अवनीश गुण ऐसा नौजवान है केतन जी गो ऐसा नौजवान है कि वो लोग संगीत से बहुत दिन से जुड़ल हुआ जा और वो लोग खातिर ये संगीत जीवन है और अगर सब नौजवान सुनत हुआ जा तो याद रखिए कि यहाँ पर कलाकार के बात के दौरान आप तीन तीन को नौजवान के सुनबा और एगो तीसरा नौजवान हमने संगे जुड़ गल बा और उकर नाम है अमन और अमन से हमने बात करब जा और उकर मधुर आवाज़ में गाना भी सुनब सा तो अवनीश बहुत बहुत बधाई हो तुहरा और ईश्वर करे तू संगीत के क्षेत्र में और आगे बढ़ बढ़ जा और हमने के हम कलाकार के बात के जो पहला प्रश्न है वो फिर से सुन ला जा कि केतन जी के मधुर आवाज़ में एगो मंत्र सुन ला ओम वसुदेव सुतम ई मंत्र के उच्चारण कर पूरे रूप में कंप्लीट मंत्र आप लोगों के हमने के चैनल सुनाए के तब तक हमने अमन जी से बात करब जा अमन जी कैसे हुआ जा
3: मैं ठीक हूँ
0: बोला कैसे हुआ

0: मैं ठीक हूँ
1: हाँ जी आप ठीक हैं और अमन जी हम तुहरा जानी ला का है कि एगो प्रतियोगिता में भाग ले रहे लल जा और साल के अंत में तू फाइनल में आ रहा लल और एमबीसी में दिख रहा और हम एक दो प्रोग्राम तुहरा संगे कर ले हैं और जानी ला कि बहुत ही बढ़िया तरीके से तू भोज बॉलीवुड गाना गावेला कहाँ रहेला अमन जी प्रेंदी पापा गांव में अमन जी होन और जिंदगी में क्या करेला
0: पापा के साथ काम करता हूँ
1: पापा जी के साथ तपन पिताश्री के साथ हाथ बटावेला और संगीत से बहुत दिन से जुड़ल हुआ हाँ. तो अमन अवनीश और केतन एके हमनी बोली ला जा द टेरिफिक ट्रियो ऐसे बोली ला जा जो इन तीन महारथी है जो वो लोग के बहुत ही ब्राइट फ्यूचर बा जैसे बोली ला जा कर जो भविष्य बहुत ही उज्जवल लगत हमनी के संगीत के क्षेत्र में खासकर भोजपुरी के क्षेत्र में वो लोग आगे बढ़े खुद खुशत वन जा तो लोग के हमनी के चाहना हमेशा उत्साह बढ़ाए के केतन जी
2: हाँ बोला
1: बोला हमनी के बतावा कि अमन जी के साथ और अवनीश जी के साथ तोहर संबंध कैसे जुड़ल और वो लोग संगे कितना प्रोग्राम भी होल बा बताओ हमनी के
2: सबसे पहले हम भाई अवनीश के जाना चली ओकरा नहीं ओकर पिताजी के जाना चली
1: हाँ
2: तब जब हम ओकर पिताजी हमरा देखे तो ये छोटा रहल हमू ढेर बड़ा नहीं है मैं आवत हर संगे तो एकर से जब बातचीत हो तब दोस्ती कर ली सा
1: हाँ।
2: अब संग संग में जा जहाँ जा तली सा संगे अपन परफॉर्मेंस देवत तो एक दिन हम भाई जी का कर लग एकर लगे भाई जी भाई अमन संगे ये लोग दोनों दोस्त रहन सा तो हम बोली है छोकरवा के है अच्छा से गावेला कर बहुत पोतौशल बा तो सौभाग्य के बाद बा एक दिन भाई जी अपन लगे एगो पोगाम उगा निजे कर ले रहल तो हमरा भाई अवनीश बोलला कि आओ तनी सुन हौजा पर आके संग में जामिंग करब सा तब तब से आज तक ले हमनी साथ में जोन जोन भी कार्य बा जेकरा प्रोग्राम मिलेला हमनी संग में जाके
1: संगे जा रहा जा
2: संगे जा रही सा और रिहर्सल इत्यादि रेपिटिशन है सब संगे
1: तो कर रहा तीनों में जो दोस्ती है वो गहरा होते गल
2: हाँ हाँ
1: होते गल और हाँ, जोन जोन प्रोग्राम रहेला साथ में करके करेला जा
2: हाँ,
1: अवनीश जी गिटार खेलेलन अमन जी गावेलन
2: गावेलन और हम तबला तबला,
1: तबला भी बजावेला हाँ काहे कि तबला में तू कोर्स करत हुआ
2: हाँ,
1: डिप्लोमा
2: हाँ,
1: इस क्षेत्र में भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि
2: हम तो गायक नहीं रही में
1: लेकिन
2: तबला बजावत रही लेकिन
1: लेकिन जो स्टाइल माइकल जैक्सन जो गाना निकल वो बहुत ही बढ़िया तरीके से
2: पसंद आल तो इस कारण से तब ये लोग हमारा बोलन सा गीतवा बनाए के एक रिकॉर्ड करे के
1: ये लोगों के बहुत बड़ा योगदान बा बहुत बड़ा योगदान बा इससे ही सहयोग अपन दोस्त के बढ़ते रहिए जा और अवनीश जी तुहर पिताजी के नाम जो है अविनाश रामदाइन जी ओकर भी गाना बहुत चलेला
3: ओकर एक गाना था एक हिंदी गाना था मानिक के तो जब गाना रिलीज हुआ तो ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ तब उसने बोला क्यों उस गाने को भोजपुरी में नहीं बनाते हैं तब मैं गिटार लेके मैं उस गाने में गिटार बजाया था तो मैं और मेरे पिताजी ने उस गाना साथ मिलकर उस गाना को बनाया भोजपुरी वर्षन
1: बहुत अच्छा बहुत अच्छा सग भमनी के थोड़ा सुना दे भोजपुरी वर्षन वाला जल्दी से
3: जी
1: हाँ ओके हम ही सुना दे ला तब
2: हाँ।
1: हम सोचे अवनीश जी अपन मधुर आवाज में सुना दे लेकिन बोलन कि अभी तैयारी थोड़ा चाहे ला
2: हाँ, हाँ,
1: हाँ। तो चल हमनी के है गाना सुना पहले तब हमनी तीनों नौजवान से बात करब जा और याद रखिए तू लोग अपन मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मनोरंजन से जुड़ल हुआ जा जहाँ पर आज के हमनी के तीन गो कलाकार है केतन अवनीश और अमन
4: You're listening to RM3 Radio Man.

0: RM3 Radio.
1: कलाकार के बाद
2: कलाकार के बाद केतन अमन और अवनीश जी के साथ चला ये बहुत ही धमाकेदार गाना सुन ल अविनाश रामधाइन जी के आवाज में और हमनी के श्रोता यहां पर उपस्थित हो गल होवन एगो प्रश्न रहल कि कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर केतन जी एगो मंत्र का उच्चारण करे ललन त उ मंत्र के दोहराई कौन चला ओकर हमनी बहुत ही शानदार रूप से स्वागत करत हैं जा हेलो
3: हेलो रोशन भैया बहुत बहुत नमस्कार स्वागत मेरी घर में आपको
2: नमस्कार बिना दीदी जी
3: जो कलाकार आए हैं उन तीनों के भी हार्दिक स्वागत है
4: धन्यवाद
2: हाँ तीनों जो नौजवान हुए दीदी जी और संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़त हुए

0: उन लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और ईश्वर करे वे लोग इसी तरह से प्रगति उन्नति करते रहे अपने क्षेत्र में, और भोजपुरी क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है, नव युवक होते हुए वे तो आदर के पात्र है।
1: बहुत धन्यवाद दीदी जी,
0: सम्मान कर रही हूँ।
1: तो हर जो वाणी में बहुत ही मिठास बा और ये नौजवान लोग खुश हो गए जैसे आशीर्वाद पाके।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं लगे हाँ जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं,
2: आपको भी
0: कामनाएं प्रस्तुत करती हूँ। सभी के जीवन में भगवान कृष्ण का पदार्पण हो, मतलब वे आए और सभी के दुखों को हरण करें, सबको सच्चा ज्ञान दें, हमें भी गीता का थोड़ा ज्ञान दें, और क्योंकि अर्जुन के माध्यम से हम तो सुनते ही हैं, पढ़ते ही हैं, लेकिन वे भी आए हमारे जीवन, वे हमारे सारथी बने, हमारे जीवन
1: बहुत अच्छा
0: भी रथ को चलाएं
1: जी,
0: ताकि हम सही दिशा पर सही दिशा में जा सके।
1: बहुत धन्यवाद बीना दीदी जी, धमनी के मंत्र के उच्चारण कर जो केतन जी बोले।
0: भैया जी मैं
1: अच्छा,
0: बोलती हूँ। वसुदेव सुतम देवम

0: केतन जी अच्छा बा नहीं अच्छा बा
1: बहुत बढ़िया अति उत्तम
0: अति उत्तम केतन जी
2: बोल रहे हैं बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि आज मेरे ठाकुर जी का जन्मदिन है और इस अवसर पर आप लोग ऐसा कार्यक्रम रखा है उन्हीं के उपलक्ष्य में और मुझे भी एक छोटा सा अवसर मिल गया कुछ अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए सुनाने के लिए इसके लिए भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद
0: धन्यवाद बिना
2: धन्यवाद है और बच्चों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद जो काम कर रहे हैं
0: धन्यवाद आपको
2: बहुत धन्यवाद भैया बहुत धन्यवाद नमस्कार
0: तो ई रहलन तेगूर से बिना जी और तोहरा बहुत ही आशीर्वाद देलन जा तीनों नौजवान के तोहरा कैसे लगल ऐसन ऐसन शब्द तोहर प्रति सुनला जा
1: बहुत बहुत आनंदमय एकदम
0: हाँ शब्द बात तोहरा बयान
1: करेगी
0: तो चल हमनी के मध्य में अमन जी आगल होवन अमन जी हमनी के बोला कि जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे जा वो प्रतियोगिता में कंपटीशन में जो भाग लेला वो में कौन गाना गा के तू फाइनल में चलेला
3: कहना है
0: परोसन वाला गाना अरे वाह हमने सुनने लगी तो जो इन परोसन वाला गाना तो हर संगे अभी सुनब सा परंतु ओकर से पूर्व सकब हम नी खतीर केतन जी की तरह गो कृष्ण भजन गाए या कोई गाना गए बा अच्छा बहुत बढ़िया तो चल तो गिटार तैयार बा अवनीश जी चलो गिटार पहले बजाओ बहुत बढ़िया

बहुत ही बहुत ही बहुत ही बढ़िया अमन जी, अमन जी के मधुर आवाज में अभी सुन ला हरि नंद मुकुंड हरि नारायण हरि ओम और कृष्ण जी के बहुत नाम ई में तोहरा सुने के मिलल। और अवनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद अकॉम्पेनिमेंट के लिए अमन जी के साथ है जो गिटार रहल का केवल गिटार के ध्वनि से है गाना सुन ला हमके त जैसे बोली ला जा रोंगटे खड़े हो गए ऐसे गूस बम्प्स जैसे इंग्लिश में बोली ला जा ऐसे हो गए हमके तब पूछा ओ लोग तो हर सामने ही तीन नौजवान अयन और संगीत के प्रदर्शन करियन त कैसे बुझाए तू

0: जानबा हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम यहाँ एगो औजे के रूप में हैं लेकिन हमारे सामने तीन तीन गो महान कलाकार बा रही है प्रोग्राम कलाकार के बात जहाँ पर हमनी के कलाकार के मान और कलाकार के शान बढ़ाए खातिर हमनी खूबे यहाँ पर तत्पर हैं सर काहे कि अगर कलाकार के मान नहीं देब तो जो भोजपुरी भाषा है एकर उठान कैसे होए कैसे आगे बढ़ी का बोले लकेतन जी
1: हाँ बराबर
0: तो जैसे अभी अमन जी गैलन एकर बारे में कुछ हो बा बोले के बात हरा
1: भाई अमन के ओकर मधुर आवाज ही काफी बा
0: ऐसा हाँ ढेर चीज ने छाना बोले के
1: हाँ वही
0: तो चला हमनी पड़ोसन के गाना थोड़ी देर में सुनब सा अमन जी के साथ तो हमनी के भाई अवनीश जी से हमनी मांग करब जा कि एगो ऐसन धुन निकालब गिटार पर हमनी के श्रोता लोग सुने को जन जेकर में कोई आवाज नहीं है खाली गिटार निकाल
2: इंस्ट्रूमेंटल
0: इंस्ट्रूमेंटल एगो छोटा सुन

0: बहुत ही बढ़िया। और ई खातिर ताली के गूंज तो सुने बेकर हम तोहरा। और देखा हमनी के पास गायक कलाकार बा, हमनी के पास गिटार प्लेयर भी बा, हमनी के पास भोजपुरी जगत में चमकता सितारा भी बा। और का चाहने हमने के आज के जो प्रोग्राम है एकदम हट के है, काहे कि आज एगो नहीं दूगो नहीं बल्कि तीन गो कलाकार बा। तो जब कलाकार के बात करते हैं सा और जब भोजपुरी के बात करी ल सके तंजी तो होजा पर एगो शब्द हमेशा सुनने के मिलेला। एगो हाँ। शब्द है गमत और दूसरा जो धमाकेदार धुएंदार शब्द है वो है जलसा।
1: हाँ
0: जलसा के मतलब का है केतन जी?
1: देखा भोजपुरी जब मॉरिशस में भोजपुरी के बात करब सा भोजपुरी गीत के बात तो सब कोई अपन आप के मतलब तैयार कर देवे सा नाचेगी। भोजपुरी वो ऐसा एगो एगो प्रकार के संगीत है जहाँ पर तू अपन जो तनाव बा दिन भर के तनाव बा वो सब भूल जाइबा एकदम मग्न जोश में। तो जलसा के मतलब ई है मतलब कि एकदम जोश हर्षित रूप से हर्षित मन झूमे नाचे के
0: निश्चिंत होके।
1: हाँ निश्चिंत होके सब जो तनाव बा परिवार के दोस्त के हेने होने दिन भर के थकान के सबके भुला के एकदम जोश
0: एकदम जोश मगन।
1: हाँ अभी अभी हमनी के देश में जुन जुन हमनी के जुन साथी कलाकार बा अभी को बड़ा प्रोग्राम के आयोजन करत हन सा त ओ लोग भी धन्यवाद के पात्र हवन सा काहे कि हमनी के कबू नहीं हो रहल मॉरिशस देश में एक लाइव कंसर्ट जुन होवे जात बा ऑसेनाल में जहाँ पर हमनी के
0: 26 सितंबर के।
1: हाँ 26 सितंबर के जहाँ पर हमनी देखब सकी हमनी के देश के बहुत मतलब कि जोन बड़ा कलाकार जाने माने का जोन इतिहास लिख लेवा मॉरिशस देश के जोन संगीत भोजपुरी संगीत के क्षेत्र में वो लोग आके अपन कॉन्सर्ट करत हन सा त ई हम बहुत खुशी हैं ऐ जोन आयोजन करत हन सा बहुत ही एकदम धन्यवाद के पात्र मतलब कि जिनिस लोग के जो नौजवान बा हाउ हाउ जोन क्षेत्र बा ओकरा हिचत वन सा त है बहुत बड़ा कार्य कर
0: बहुत बड़ा कार्य है। त केतन जी बहुत अच्छा तू ई के चर्चा कर ल। हाँ। और थोड़ा सप्ताह होला पहले कि को एक एक करके जो कलाकार मैं परफॉर्म करी अंजा।
1: हाँ
0: आर अलंजा जैसे कुनार रिलाल होवन, किशोर किमिया जी होवन, नीरज गुप्त मधु जी होवन, रंभाराम तोहल जी।

0: और साथ ही साथ रोशन सदा सिंह भी हुन
1: कृषि मानिक
0: और कृषि मानिक भी हुन हाँ, बिल्कुल हाँ। और उ में तू तोहर सहयोग बा
1: हमारा सहयोग बा देखा हमरा बोलन स कि आके हौजा परी कम गस आउतीस
0: अच्छा
1: और एमसी भी करी के
0: बहुत बढ़िया
1: त हम सकब बोले हम एकदम भाग्यशाली हैं जहाँ पर देखा एक छोटा उम्र में हमरा ये सब
0: तरह के मौका
1: मिला था और हम एकरा खाली एगो मतलब के एगो कार्य के रूप में नहीं देखा था हम देखा था कि एक एगो हमर जो इतिहास बा ओकर पर लिख मजा हम एगो एगो हम का सकब बोले एक दिन बूढ़ा हो जब बड़ा हो जब वृद्ध हो जब तब हम बोला हे देखा
0: हाँ बहुत ही बढ़िया हाँ, कार्य में उमे तो हर
1: सहयोग रहल त ई सचमुच सचमुच हां
0: बहुत हाँ, सौभाग्य के बात
1: बा सौभाग्य
0: और लगे हां त ई प्रोग्राम में अवनीश भी तू भी हुआ ई प्रोग्राम में
1: ई अवनीश जी हवन ई म्यूजिशियन करता
0: अच्छा संगीत में इतना छोटा उम्र में ऐसन बड़ा कार्य में तू योगदान देवत हुआ ई त बहुत ही सराहनीय बात बा और अमन जी तू प्रोग्राम में हुआ भोजपुरी में कोई बात नहीं लेकिन फिर भी हम चाहब कि भोजपुरी के क्षेत्र में
1: अमन भी रही हो
0: जा रही हो जा लेकिन ऑडियंस के रूप हाँ। में हाँ। तो लोग के हौसला बढ़ाए खातिर तो अमन जी हम तोहर अभी जिक्र कर ली तो चलो वो गाना गावा जो तोहर मन में बॉलीवुड जो बा तोहर मन में अगर वो गाना हमने के गाय खोजब तो अच्छी बात बात चाहे वो पड़ोसन वाला गाना हो या कोई और गाना जो तोहर दिल के एकदम एकदम निकट हो चलो तो अब अवनीश भाई अपन गिटार के साथ तैयार हो गल होवन सज हो गल होवन और हमनी के भाई अमन जी गयन और एकर उपरांत एगो बहुत ही आसान सा प्रश्न रही हमनी के श्रोतागण के चलो गाव चलो पहले तू

0: बहुत ही बढ़िया प्यार प्यार ही प्यार सचमुच ऐसा गाना सुन के तो हर दिल में तो प्यार उमरते जाए कहे नहीं बहुत ही सुंदर आवाज़ बा तो हर अमन जी और ऐसा जैसे अवनीश जी नौजवान हुआ वैसे ही तू नौजवान हुआ और केतन जी तो लोग के साथ बा तो ऐसा सुंदर गाना सुने के अगर तुहरा मन करता तो ज़रूर रेडियो मनोरंजन से जुड़ल रहिया ये तुहर मनपसंद रेडियो चैनल है और 5:45 हो गल बा चल एगो अंतिम प्रश्न पूछ ले रहा जा हमने जल्दी जल्दी काहे कि 5:50 पर हमने समाप्त करब जा तो जो अभी अमन जी गएलन फिल्म पड़ोसन वाला गाना ई में कौन एक्टर और कौन एक्ट्रेस रहल है गाना में के गावत रहल ई त किशोरडा करे रहलन उ छुप छुप के गावत रहलन लेकिन कौन अभिनेता खातिर गावत रहलन और अभिनेत्री खिड़की के ऊपार देखत रहलन हमने के अभिनेता और अभिनेत्री के नाम बताओ 4028070 पर चला केतन जी तुहर संगे हमने शुरुआत करब जा और अंत में हमने के मॉरिशस वासी लोग के का बोले खोजत हुआ चलो बोले से आगे हमने ले ले ला जा दो तीन गो श्रोतालों के जल्दी जल्दी चलो हमने पहला श्रोता के सुनी ला जा हेलो
1: नमस्ते रोशन भाई
0: नमस्ते बहन
1: सभी नौजवान भाई लोग नमस्ते
2: नमस्ते
0: कौन नाम है तुम्हारा

0: हम कल्याणी हैं त्रियोले से।
1: कल्याणी जी त्रियोले से। अच्छा कल्याणी जी कल्याण कर बोला
0: हाँ, कल्याण करत है सुनील दत्त और सहरा बानू।
1: सुनील दत्त और सहरा बानू। अच्छा थोड़ा जवाब नोट करत है सर केतन जी से और अमन जी से पूछब सर। ओके धन्यवाद। दूसरा लाइन पर के हो। हेलो
2: हेलो भैया प्रणाम।
1: प्रणाम के बात करत हुआ
2: फुलवंती।
1: फुलवंती जी बाकवा से बात करत हुआ जा। अच्छा फुलवंती जी तुम्हारा स्वागत बा। हमने के बतावा कि जो
3: प्रणाम
1: सुनील दत्त और सहरा बानू ज्योति क्वीन जैसे बोली रह जा। ओके चलो देख सब थोड़ा जवाब नोट करते हैं सब बहन एगो अंतिम श्रोता के ले जा। ओके
2: बाद में बात करत
1: तुम्हारे। ओके धन्यवाद
2: धन्यवाद।
1: चलो लाइन कट गल तो हमने के बताओ अमन जी ये जवाब जो है सही है कि नहीं।
4: हाँ सही है।
1: सही है तो फुलवंती जी और कल्याणी जी के बहुत बहुत बधाई हो। सुनील दत्त और सहरा बानू। सुनील दत्त ने गायक खोजे रन किशोर कुमार लुक लुक के घर के गात रन है फिमुआ देखिया जा गाय की तो लोग नौजवान हो ये फिमुआ सकेला नहीं दिख रहे हो ये बजा तो। अच्छा हमने के बात केतन जी से बा भी बोला। हाँ। केतन जी
5: हाँ देखा हमर संदेश मॉरिशस लोगन के सब सबसे प्रथिन सब हमनी के जो नौजवान बा ओ लोग खतिन है हम बोलब नौजवान के अपन भाषा अपन जो संगीत बा अपन वाद्य के अपन जो जो जैसे बोले अपन जड़ी के ओकरा बढ़ावा दे के काहे कि जे रहल त ओकरा प्रिजर्वे कर ले रहल आज जे आप सब हमनी के हाथ में बा हमनी के शहना का आगे लेके चलेगी जे हमनी नहीं लेके चलब सा तो एक दिन जरूर मिट जाए तो ये बहुत दुर्भाग्य के बात रही। जैसे कि आज देखत हुआ हमारे साथ दुगो नौजवान बा और दोनों के जो परिवार बा वो भी बहुत ही सहायता देवेलन जैसे कि भाई अवनीश के जो परिवार बा ओकर परदादा से लेकर दादा पिताजी संगीत से जुड़ा रहल भाई अवनीश के अमन के भी पिताजी संगीत में रहल उनकर चाचा जी सब परिवार मतलब कि और हमरो हमर दादा हमर पिताजी हमर जो भाई जी खुशन सब संगीत में हवन सा संगीत में जैसे कि बोला एकदम ओकर में कबो जब संगीत में रहा तो जोन दुख आई उसे लड़े के हमनी के शक्ति मिली हमनी दुख में भी मुस्कुराब सा और दुख के भी हमने संगीत के माध्यम से प्रस्तुत करब सर तो यह संगीत।
1: बहुत धन्यवाद केतन जी बहुत ही बढ़िया बात कर ला तुहर विचार एकदम एकदम शुभ और उत्तम है। और चलो 5:50 हो जा और हमने अवनीश अमन और केतन जी के बोलब जा बहुत बहुत धन्यवाद तू यहाँ पर आए के कष्ट कर ला और ऐसे ही और एगो प्रोग्राम नौजवान लोग संगे हमने रखब जा। गिटार बजाए खातिर अवनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद। अमन जी तुहर मधुर आवाज़ के लिए भी बहुत धन्यवाद। केतन जी तुहर विचार और गाना के लिए भी एकदम धन्यवाद। तो चला श्रोतागण तुहर से अनुमति ले के समय आ गल बा 5:50 हो गल बा और किरण जानकी जी से अभी सुनबा हमारी धरोहर प्रोग्राम और तुहर हमने बोली ला जा नमस्ते शुभ रात्रि और कृष्ण जन्माष्टमी
6: अभिनंदन धन्यवाद। सेंटर 95.6
7: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर
8: नमस्ते। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस हर बरिस के 5 सितंबर के मनावल जाला। 2012 से संयुक्त राष्ट्र संघ हर 5 सितंबर के ई दिन मदर टेरेसा के स्मृति में मनावे के घोषणा कर ले रहा। कोलकाता में मदर टेरेसा के निधन के वर्षगांठ के पालन करे खातिर ई अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनावल जाला। 5 सितंबर के मदर टेरेसा के पुण्यतिथि मनावे खातिर चुनल गल बा। मदर टेरेसा जे हमेशा धर्मार्थ कार्य करत रहलन, मानवतावाद के सेवा में लगल रहलन। मदर टेरेसा के 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित करा गया है। गरीबी और संकट जो उनकी शांति खातिर खतरा है ओके दूर करे के संघर्ष करे खातिर। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के मुख्य उद्देश्य स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्ति लोग के धर्मार्थ, परोपकारी और स्वयंसेवी संगठन खातिर दुनिया में चैरिटी के संबंधित गतिविधि खातिर जागरूकता बढ़ावे के एगो बहुत सुनहरा अवसर है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर बरिस 5 सितंबर के विश्व स्तर पर ये अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनावे के पीछे लक्ष्य है कि ये दिन स्वयं सेवक और दुनिया के हितैषी कार्यक्रम के माध्यम से दूसरों के मदद करे खातिर सबके प्रोत्साहित करल जाए। वो चाहे सरकारी, गैर सरकारी संगठन रही या कोई के जुटावे के लक्ष्य से कोई भी गुट रही, सबके एकजुट करल जला और प्रोत्साहित करल जला। साथ ही ई दिन मानवीय संकट और देश लोग के भीतरे मानवीय पीड़ा के कमती करी में दान द्वारा निभावे हो रहे होला भूमिका पर ध्यान देवे के भी एगो अवसर है। बोलल जला कि दान से बड़ा और कोनो धर्म नहीं है। दान से इंसान और अन्य प्राणी के खुशी मिलेला और जब आप दूसरों के खुशी देबा तो आपके भी खुशी मिलेगा। ई दान के महत्व के बतावे के उद्देश्य से हर बरिस ई इंटरनेशनल चैरिटी दिवस मनावल जाला। वैसे तो भारत में युगों युगों से दान के परंपरा बा, लेकिन ई अवसर कोनो खास दिन नहीं मनावल जाला, बल्कि जितना सकब चाहे ई दिन ई मनावे के और ई जो दान के परंपरा बा ओके व्यवहार में लावे के। और 2012 के बरिस में पहला हला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा इंटरनेशनल चैरिटी डे के आधिकारिक तौर पर घोषणा कर ले रहल, जेकर समर्थन सब देश कर ले रहल और मदर टेरेसा के याद में विशेष तौर पर ई दिन मनावल जाला। कार्यक्रम के ध्यान से सुनना, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।

0: RL3 Radio. Radio. Radio.
1: रोड रेज अब एक अलग अपराध होगा। दोषी पाए जाने वाले पर 1,00,000 रुपए तक जुर्माना और 12 महीने तक कैद की सजा हो सकती है। शुक्रवार सुबह मेट्रो एक्सप्रेस में तकनीकी खराबी से 35 से 37,000 यात्री प्रभावित हुए।

0: साल के होने वाले लोगों को बेसिक रिटायरमेंट पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जनवरी 2027 से उन्हें स्टेट एज पेंशन में शामिल किया जाएगा। इस साल 12,681 छात्र स्कूल सर्टिफिकेट और 5,904 छात्र हाई स्कूल सर्टिफिकेट की परीक्षाएं देंगे। परीक्षा कक्ष में अब साधारण घड़ियां भी प्रतिबंधित रहेंगी। नेपाल में बाढ़ के एक सप्ताह से ज्यादा समय बाद त्रिशूली परियोजना की सुरंग से दो लोगों को जीवित निकाला गया। इसी सुरंग में कम से कम 39 लोग अब भी फंसे हैं, जबकि बाढ़ में 1,300 से ज्यादा लोगों की जानी जा चुकी है। स्वागत है एक बार फिर आपका 6 बजे के समाचारों में। अब समाचार विस्तार से। गाड़ी गलौच, धमकी, मारपीट या जानबूझकर रास्ता रोकना, सड़क पर गुस्से और आक्रामक व्यवहार यानी रोड रेज को अब एक अलग अपराध माना जाएगा। जी हां, इस सप्ताह मंजूर सड़क यातायात कानून के संशोधनों में इसके लिए 1,00,000 रुपए तक जुर्माना और 12 महीने की जेल का प्रावधान है। लेकिन रोड रेज की पहचान कैसे होगी, ये अगले बुलेटिनों में हम आपको जानकारियां प्रदान करती रहेंगी। शुक्रवार सुबह मेट्रो एक्सप्रेस में आई खराबी से हजारों यात्रियों को परेशानी होगी। क्यूपिप और पोटरी के बीच लाइन 1 पर सेवा बंद रहने से 35 से 37 हजार यात्री प्रभावित हुए। मेट्रो को बिजली देने वाले सिस्टम में तकनीकी खराबी आई थी। सेवा सुबह 9:21 से धीरे धीरे शुरू हुई। कई स्टेशनों पर यात्रियों ने कहा कि उन्हें समय पर जानकारी नहीं मिली, जिससे असमंजस की स्थिति बन गई। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, वो पावन तिथि जब भक्त बाल गोपाल के प्राकट्य का उत्सव मनाते हैं। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम, करुणा, धर्म और कर्तव्य का अद्भुत संगम है। उनकी भक्ति केवल आराधना नहीं, बल्कि अहंकार त्याग कर प्रेम और समर्पण के साथ जीवन जीने की साधना है। जन्माष्टमी के अवसर पर जानते हैं श्री कृष्ण भक्ति का आध्यात्मिक अर्थ और जीवन में उसका महत्व। याचना मिश्रा।
1: राधा कृष्ण की सजी ये मूर्ति मन मोह लेने वाली है। बोनाकर के श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में रोज भक्त दर्शन करने और आरती में भाग लेने आते हैं। यहाँ दर्शन करने के लिए दिन में 6 बार द्वार खोले जाते हैं।

0: इन लोगों को यहाँ खींच लाती है। कुछ भक्तों के लिए यहाँ आना उनके मन की शांति का रास्ता है। किसी के लिए कृष्ण आराध्य हैं, तो किसी के लिए प्रेम और करुणा का प्रतीक।
1: Tous les jours, moi, viens ici. N'importe qui problème, moi, il y a dans la vie, ou viens là que Krishna apporte Krishna. Les mêmes qui pour qu'à faire tout dans la vie. Et même au travail toujours, moi, viens ici, moi, viens faire mon darshan. Si moi pas venir un jour, deux jours, mais ça fatigue moins. Ça les fatigue moins. Moi, besoin viens ici que Krishna se charan ici.
2: Krishna que kripa c'est sal ta ho jata hai. वो देखते हैं, हमारा कोई चिंता नहीं है। संसार में जितना कोई है सबको भगवान के शरण लेना चाहिए, कृष्णा के शरण लेना चाहिए। जगह जगह में मंदिर है, चाहिए जहाँ जहाँ जबकि पास में है चाहिए वहाँ पर भगवान के शरण लीजिए। ऐसे बहुत बढ़िया है।
0: जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ इतनी भीड़ लगी रहती है कि चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो भक्ति ही क्या जो आसान रास्ते पर चलकर मिल जाए। कृष्ण भक्तों के लिए जन्माष्टमी वो दिन है जिसका वे साल भर प्रतीक्षा करते हैं।
3: भगवान कृष्ण के धाम में वो एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं होता है, वर्ष में एक दिन का नहीं, रोज का सेलिब्रेशन है, रोज का उत्सव है। कार्यक्रम शुरू होता है सुबह को मंगल आरती से 4:30 बजे। केवल आरती नहीं, भगवान का भोग लगता है। सभी कितने भक्त लोग रोज के रोज लगभग सभी सेवा में लगे रहते हैं, अपने अपने सेवा जो जो करना है सभी लोग लगे रहते हैं। भगवान का जब जन्मदिन आते हैं तो सभी और उत्साह मंगल के साथ सभी लोग प्रतीक्षा करते हैं।

0: कब वो दिन आएगा भगवान हमारे ठाकुर जी आएंगे और उनका अपना प्रेम अपना श्रद्धा अपना प्रकट करेंगे उनको।
1: कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति और समर्पण की भावना पूरे साल दिखाई देती है और जन्माष्टमी के करीब आते ही इसका उत्साह और बढ़ जाता है। बाल गोपाल के जन्म का उत्साह।
2: भारत सहित पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण के आठवें अवतार श्री कृष्ण का जन्मोत्सव असीम श्रद्धा हर्षोल्लास और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। मथुरा वृंदावन से लेकर हर घर और मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है। श्रद्धालु दिन भर उपवास रखकर भजन कीर्तन कर रहे हैं और आधी रात को कान्हा के जन्म के महामुहूर्त पर महाआरती और छप्पन भोग की तैयारियों में जुटे हैं।

0: श्री कृष्ण प्रेम, दया, सत्य और धर्म के प्रतीक हैं। उनका जन्म मथुरा में माँ देवकी और पिता वसुदेव के घर हुआ था। उनकी मुस्कान में प्रेम था, उनकी बांसुरी में मधुरता थी और उनके शब्दों में जीवन का ज्ञान। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का महत्व समझाया और कहा कि मानव को अपना कर्तव्य बिना फल की चिंता किए करते रहना चाहिए। कृष्ण जी प्रेम करना, दूसरों की मदद करना, अन्याय के विरुद्ध खड़े होना और हर परिस्थिति में अपना विश्वास बनाए रखना सिखाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, इसीलिए इसे कृष्ण पक्ष अष्टमी भी कही जाती है। उनका जन्म आधी रात को हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी की रात को विशेष पूजा की जाती है और उत्सव मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का आठवां अवतार माना जाता है। उनका जन्म धरती पर बढ़ते हुए अधर्म को समाप्त करने तथा धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। कृष्ण जी के जन्म के वक्त मथुरा पर राजा कंस का अत्याचार था। कंस ने भगवान कृष्ण के माता पिता देवकी और वसुदेव को बंदी बना रखा था। कृष्ण जी के जन्म के बाद वसुदेव जी उन्हें यमुना पार करके गोकुल ले गए, जहां उनका पालन पोषण नंद बाबा और यशोदा मैया ने किया। कृष्ण भगवान का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता। उनकी बाल लीलाओं की कहानियां आज भी बहुत प्रेम से सुनाई जाती हैं। कृष्ण जी अपने मित्रों के साथ खेलते थे, माखन चुराते थे और गोपियों के साथ मधुर लीला करते थे। उनकी बांसुरी की मधुर धुन और राधा जी के साथ उनका प्रेम भक्ति का सुंदर प्रतीक माना जाता है। भारत के अलग अलग राज्यों में जन्माष्टमी अलग तरीकों से मनाई जाती है। इस दिन लोग सुबह से व्रत रखते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। घर और मंदिरों को फूलों, रोशनी और सुंदर सजावटी सामानों से सजाया जाता है।
1: इस्कॉन लाइटों के बारे में बहुत ही ज्यादा फेमस है और हम जन्माष्टमी में लाइटों से कोई कम्प्रोमाइज नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के लिए हम जितना ज्यादा हो सकता है, जितना ज्यादा सारे हमारे काफी सारे डिवोटीज हैं, मेंबर हैं, करने वाले, काम करने वाले, हम जी जान से मेहनत करते हैं और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल लेके जाते हैं।
0: रात के वक्त कृष्ण जी के जन्म का इंतजार किया जाता है। इस्कॉन भारत में अलग रौनक है, खासतौर पर मथुरा, वृंदावन और गोकुल में। कृष्ण जी की मूर्ति को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, झोले में बिठाया जाता है और उनका अभिषेक किया जाता है।
2: भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पूरे उत्साह उमंग के साथ इस्कॉन इस जन्माष्टमी मनाने जा रहा है और वृंदावन से बहुत ही सुंदर श्रृंगार का आभूषण लाया जा रहा है और वस्त्र भी वहीं से बन के आ रहा है और जिसका थीम है मयूर। पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन द्वारा बड़े धूमधाम के साथ ये जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा।
0: कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति, सत्य, धर्म और अच्छाई की जीत का संदेश है। ये दिन ये सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, सच्चाई और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
3: कानून में लिखी बातों और लोगों की असल जिंदगी के बीच की दूरी, इसी विषय पर मॉरिशस बार एसोसिएशन का वार्षिक सम्मेलन बलाक्लावा में लगा। राष्ट्रपति धर्म गोकुल भी इसमें मौजूद रहे मुख्य अतिथि और भारत के पूर्व चीफ जस्टिस डॉक्टर धनंजय चंद्रचूड़ ने कहा कि आम लोगों के लिए न्याय तक पहुंच आसान बनाना बेहद जरूरी है। उन्होंने न्याय व्यवस्था को समाज की असली जरूरतों के अनुसार ढालने पर भी जोर दिया। इस दौरान जरूरतमंद लोगों को मुफ्त

0: कानूनी सहायता देने में प्रोबोनो सेवाओं की अहम भूमिका पर भी चर्चाएं की गई। विदेशी श्रमिकों के रहने के स्थानों को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। 30 जून 2026 के कानून में डोमिट्री की एक नई श्रेणी जोड़ी गई है। अब ये आवास केवल एक नियोक्ता के श्रमिकों तक सीमित नहीं रहेंगे, इनमें अलग अलग नियोक्ताओं के श्रमिक रह सकेंगे। इस बदलाव के लिए श्रम मंत्रालय से अनुमति लेने से पहले इमारत और भूमि उपयोग की मंजूरी लेना जरूरी है। पिसाक में सफल नहीं हो पाने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई का एक दूसरा रास्ता खुला है। फाउंडेशन प्रोग्राम में उन्हें किताबी ज्ञान के साथ काम से जुड़े और तकनीकी हुनर सिखाए जाते हैं। पहले बैच में 70% से ज्यादा बच्चे सफल हुए और इस समय करीब 6000 बच्चे ये प्रोग्राम कर रहे हैं। गांधियन बेसिक स्कूल में 23 बच्चे खेती, लकड़ी का काम और खाना बनाना सीख रहे हैं। इस साल सितंबर से 31 दिसंबर के बीच 61 साल के होने वाले लोगों को बेसिक रिटायरमेंट पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। सोशल इंटीग्रेशन मंत्रालय के अनुसार उन्हें अपने घर के नज़दीकी सोशल सिक्योरिटी दफ्तर में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इन लोगों को इस साल दिसंबर तक बेसिक रिटायरमेंट पेंशन मिलेगी। जनवरी 2027 से उन्हें स्टेट एज पेंशन में शामिल किया जाएगा, लेकिन उनकी पेंशन की रकम वही रहेगी। इस प्रक्रिया में उन्हें मिलने वाली दूसरी सुविधाएं भी शामिल हैं, जैसे कि लमसम की रकम वापस मिलना। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन ने संविधान में सुधार को लेकर आम लोगों से राय लेने की प्रक्रिया शुरू की है। लोग मौलिक अधिकारों, नई पीढ़ी के अधिकारों, सुशासन, सरकारी पदों पर नियुक्तियों और चुनाव प्रक्रिया पर अपने सुझाव दे सकते हैं। कमीशन ने डीपीपी की संवैधानिक स्थिति, न्याय व्यवस्था और अदालतों के कामकाज पर भी लोगों की राय मांगी है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाने के प्रस्ताव पर भी सुझाव दिए जा सकते हैं। सभी सुझाव लिखित रूप में 28 अक्टूबर को तक भेजने होंगे। उन्हें डाक से भेजा जा सकता है या पोर्टवी के सिकम बिल्डिंग 2 में कमीशन के कार्यालय में जमा किया जा सकता है। कमीशन ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अपील की है। हम आपको बता रहे थे सुर्खियों में कि इस साल 12,681 छात्र स्कूल सर्टिफिकेट और 5,904 छात्र हाई स्कूल सर्टिफिकेट की परीक्षाएं देंगे। परीक्षाएं सितंबर के बीच शुरू होंगी। इससे पहले मॉरिशस एग्जामिनेशंस सिंडिकेट ने नकल और नियम तोड़ने पर मिलने वाली सजा की याद दिलाई है। वर्ष 2025 में नकल के 58 मामले सामने आए थे। इस साल से परीक्षा कक्ष में साधारण घड़ी पहनने पर भी रोक रहेगी। सुनिए,
1: 2025 में एससी के स्तर पर नकल के 39 मामले जबकि एचएससी में 19 मामले दर्ज किए गए थे। जब ऐसा कोई मामला सामने आता है तो एमईएस इसकी रिपोर्ट कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन को भेजता है, जो इसके बाद तय करता है कि क्या कार्रवाई या सजा दी जानी चाहिए। एमईएस के प्रिंसिपल एग्जामिनेशन ऑफिसर अशोक कुमार गुंजाव कहते हैं,
2: Qu'est-ce que c'est ça, malpractice? Malpractice, c'est ou à contre regulations Cambridge.
1: Malpractice, यानी कैम्ब्रिज के नियमों का उल्लंघन करना, जैसे मोबाइल फोन का प्रयोग या परीक्षा कक्ष में नोट्स लाना। कुछ लोग हाथों में लिखते हैं, इन्विजिलेटर को पता चल जाता है। मालप्रैक्टिस के लिए सख्त सजा होती है, जैसे विषय में रिजल्ट न मिलना, यानी जीरो रिजल्ट या फिर जीरो मार्क्स। इस साल मध्य सितंबर में परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। एक नया नियम भी लागू किया गया है। अब उम्मीदवारों को परीक्षा कक्ष में किसी भी तरह की घड़ी पहनने की अनुमति नहीं होगी, जिसमें सामान्य घड़ी भी शामिल है। कैम्ब्रिज ने सुरक्षा के कदम लागू किए हैं। पहले स्मार्ट वॉच का प्रयोग नहीं किया जा सकता था, लेकिन इस साल से स्टैंडर्ड वॉच पर भी पाबंदी लगाई गई है। कैम्ब्रिज की सलाह पर एक रोलिंग क्लॉक लगाया जाएगा। इस अतिरिक्त कदम का उद्देश्य एग्जामिनेशन रूम में सुरक्षा मजबूत करना और सभी उम्मीदवारों के बीच निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।
0: पिसाक में सफल नहीं हो पाने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई का एक दूसरा रास्ता खुला है। फाउंडेशन प्रोग्राम में उन्हें किताबी ज्ञान के साथ काम से जुड़े और तकनीक हुनर सिखाए जाते हैं। पहले बैच में 70% से ज़्यादा बच्चे सफल हुए और इस समय करीब 6,000 बच्चे ये प्रोग्राम कर रहे हैं। गांधियन बेसिक स्कूल में 23 बच्चे खेती, लकड़ी का काम और खाना बनाना सीख रहे हैं।

0: यहाँ पर सीखना केवल पुस्तकों और कक्षाओं तक ही सीमित नहीं, बच्चे खुद से कुछ करते हैं और अलग अलग गतिविधियों के बारे में जान पाते हैं, जिसकी बदौलत वे अपनी योग्यता तजुर्बे को निखार सके और अपने ऊपर विश्वास भी मजबूत कर सके।
1: À cause ici, nous faisons beaucoup d'activités, pas comme avant les autres collèges.
2: Tu connais qui t'a envie de faire plus tard?
1: Oui, moi j'ai envie de participer.
0: ऐसी चीजें सीखने का मौका मिल रहा है जिससे कि परंपरागत स्कूल का विजन ही बदल गया। इन नौजवानों के लिए उद्देश्य यही, एक ऐसा माहौल पाना जहां पर वे कुछ सीख सके या फिर अलग तरीके से सीख सके अपने कौशल और अपनी रुचि के अनुसार। गांधन बेसिक स्कूल के ऑफिसर जॉर्ज देव बिहारी ने कहा, यहाँ पर जो भी स्किल्स विकसित कर रहे हैं इससे भावी पीढ़ी को मदद मिलेगी ताकि नौकरी मंडी में कुशल कामगार मिले। वे प्रारंभिक जानकारियों से अवगत तो हैं, कुछ और सीखते हैं, फिर बाद में पढ़ाई के बाद MITT में इसे ज्यादा विकसित कर सकते हैं। गांधीयन बेसिक स्कूल में इस साल फाउंडेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 23 छात्र हैं। वे उन औसतन कोई 2000 छात्रों में शामिल जो हर साल पेशा के बाद किसी विषय पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित कर पढ़ाई करते हैं। लेकिन एक सामान्य शैक्षिक सफर के विपरीत प्रोग्राम में खासकर टेक्निक्स एवं प्रैक्टिकल्स पर आधारित है। फाउंडेशन प्रोग्राम के नेशनल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर विजय सुखारी ने कहा, ये 3 वर्षों का कार्यक्रम है। 3 वर्षों के बाद वे MITT ट्रेनिंग सेंटर जा सकेंगे। फाउंडेशन प्रोग्राम वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम का मिश्रण है। इन बच्चों को नेशनल फाउंडेशन सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन NFCE प्राप्त होगा।
3: फाउंडेशन सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन NFCE
4: l'enfant l'y valoriser
0: et प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शकीरा सुमतली ने कहा, बच्चे का खुद पर भरोसा बढ़ जाएगा। खास बात यह है कि वोकेशनल सिस्टम की ओर बढ़ते हैं और साथ में ये परियोजना मॉरिशस में इस वोकेशनल सिस्टम को स्वीकृति दिलाने में सुविधा प्रदान करती है। आज देश भर में 123 कॉलेज फाउंडेशन प्रोग्राम से संबंधित है, एक ऐसा कार्यक्रम जो इन नौजवानों को एक अन्य विकल्प प्रस्तावित कर रहा है। उनकी विगत की परेशानियों पर ध्यान केंद्रित नहीं, बल्कि भविष्य में क्या करने की क्षमता है उनमें, उस पर ध्यान केंद्रित।
5: और विदेश की खबरों में, नेपाल में बाढ़ के एक सप्ताह से ज़्यादा समय बाद त्रिशूली 3A हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग से 2 लोगों को जिंदा निकाला गया है। दोनों घायल हैं और उन्हें काठमांडू के अस्पताल ले जाया गया है। इसी सुरंग में कम से कम 39 लोग अभी फंसे हैं, जबकि दूसरी सुरंगों में से 100 से ज़्यादा लोग लापता है। नेपाल तिब्बत सीमा पर आई इस बाढ़ में 1300 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई।

हिमालय की छाव में प्रकृति की गोद में नेपाल का ये दर्दनाक हादसा कुदरत का ही किया कराया है, जो पहले किसी दूसरे देश ने देखा ना जाना है। सब कुछ बह गया, समुद्र की सतह से 5000 मीटर ऊंची बर्फीला चट्टान नष्ट हुआ, अचानक सैलाब उतर आया और बम जैसा लगा। दूर से नदी छोटी लग रही थी, लेकिन देखते देखते अचानक वो उमर आई और सब कुछ अपनी चपेट में ले गई। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, बचाव और खोज कार्रवाइयां की जा रही हैं। जमीनी और हवाई मिशन को सक्रिय कर दिया गया है। प्रभावितों को खाद्य चीजें और दवाएं दी जा रही हैं। काठमांडू से अतिरिक्त 40 हेलीकॉप्टरों को सहायता के लिए भेजा गया। नेपाल की सेना पूरी कार्रवाई का संचालन कर रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट की सिफारिशों के मद्देनजर एक जलजले से बर्फीला चट्टान गिर गया होगा, लेकिन अमेरिका की जियोलॉजिकल सेवाओं ने कहा कि वादियों में चट्टानों के गिरने से ये घटना पेश आई। माहिरों के मुताबिक त्रिशूरी नदी में सिर्फ आधे घंटे में पानी का सतह 9 मीटर से बढ़ा। जियोलॉजिस्ट डॉक्टर साइमन कॉक्स बताते हैं, आपदा की तह तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। असल में क्या हुआ होगा और कैसे, एक बात स्पष्ट है कि 5200 मीटर वाला बर्फीला चट्टान वादी में 1200 मीटर की गहराई में गिरा। एक बड़ा मलबा बनकर वो पानी में गिर गया और बांध तक पहुंचा, जो उसके टूटने की वजह बन गया। नेपाल में सैकड़ों पर्यटक मृतकों और गुमशुदा लोगों में शामिल। भारत

0: ने चेतावनी जारी कर ली है क्योंकि बिहार यूपी सरहद के पास वाले इलाकों में खतरे हैं। सन 2011 से नेपाल की ये बाढ़ सबसे जानलेवा रही है, बावजूद ये कि लगातार गंभीर कुदरती आफात पेश आती रही हैं। नेपाल की इस आफत के चलते कई देश मदद का हाथ आगे कर रहे हैं। यूरोपीय संघ भी सहायता पहुंचा रहा है। रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट संगठनों ने एक बयान में कहा कि वो $1.24 million का दान दे रहे हैं।
1: चक्रवाती तूफान चीन के फ्यूजन प्रांत के तट से टकराया है। खतरे को देखते हुए 83,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। कई स्कूल बंद कर दिए गए जबकि रेल और दूसरी यातायात सेवाएं भी अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। और अब चलिए जानते हैं कि स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर अस्थिर बादलों का असर जारी रहेगा। आज रात को और कल सुबह के दौरान देश के पूर्व उत्तर और सेंट्रल प्लेटों पर रह रहकर बरसात होगी। दिन के दौरान देश भर में मौसम सुहाना रहेगा। केवल दोपहर बाद को पश्चिम और सेंट्रल प्लेटों के एक हिस्से में बरसात हो सकती है। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण पश्चिमी 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान साहली इलाकों पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्यास्त 6:02 पर, सूर्योदय 6:15।

0: तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे शिव, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।
1: NBC Radio.TV.
0: रॉयल रोड पालमा कैट्रोबोन में 70 साल की 70 years old की मालाबाई लक्सिमो की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम हरी, उनकी अर्थी कल सुबह के साढ़े दस बजे उनके पति के मकान मारुत लक्सिमो के मकान कैट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगा। क्रिमेशन टू डियर हॉफ पोस्ट 10 AM। रॉयल रोड बोआ रूज पॉपले मुसेज में 68 साल की 68 ईयर्स ओल्ड की सरंधा सीतोहल की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम रसधारी, उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके पति राजदेव सितोहल के मकान पॉपले मुसेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनी स्त्रियोले की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। जयलाल लेन लिम्बियतो कैट्रोबोन में 93 साल की 93 ईयर्स ओल्ड की बुधियालाचन की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम जंधु, उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उन्हीं के मकान कैट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। महिलपुर नई दिल्ली में 44 साल के शैलेश शर्मा चतु की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें वीरू के नाम से ज़्यादा जानते थे और वे मॉरिशस में वरमिया रोसबेल के रहने वाले थे। उनकी अर्थी कल भारतीय समय अनुसार दिन के 11:30 बजे लोधी नई दिल्ली भारत में उठाई जाएगी। टैगोर रोड मोंगू में 54 साल के 54 ईयर्स ओल्ड के जितेंद्र किसुन दयाल की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें सुनन के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज बल्कि कल सुबह के 10:30 बजे उन्हीं के मकान टैगोर रोड मोंगू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोंगू की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। बनवेन रोड कौथी मिलिटे में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के करमानन सेवात्यान करमानन

0: देवाथ्यान की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थ कल सुबह के 9:30 बल्कि 9 बजे ठीक 9 बजे उन्हीं के मकान कौचिमिल्तिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सियाकोंस्टांस सैंपिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रीमेशन टुमारो एट 9 AM. कालीमाई रोड प्लान देगोश में प्लान देगोश में 58 साल के 58 ईयर्स ओल्ड के किशोर कुमार रामचंद की मृत्यु हो गई है. लोगों ने अजय शोफेयर कामियों के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी कल सुबह के 10 बजे उन्हीं के मकान प्लान देगोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रीमेशन टुमारो एट 10 AM. राहुल रिवेट लेन ला लुइस कैट्रोबोन में 79 ईयर्स ओल्ड के श्री देवदत्त गोकुल की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थी कल दिन के 1 बजे उन्हीं के मकान कैट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कैट्रोबोन बल्कि फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रीमेशन टुमारो एट 1 PM. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

नमस्कार, इस समय शाम के 6:30 बजे हैं। हमारा आपका साथ है रेडियो मनोरंजन पर। रेडियो मनोरंजन पर हम आपका स्वागत करते हैं। रेडियो मनोरंजन पर हम हैं, सुरेखा आपका साथ दे रहे हैं और साथ देते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है और लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए नई सोच कार्यक्रम हम आपके नाम करते हैं। जन्माष्टमी का महापर्व आप लोगों के लिए मंगलमय हो। कृष्ण जी आप सभी लोगों पर अपनी कृपा बरसाए रखें, अपनी कृपा का हाथ आपके सर पर रखें, यही हमारी प्रार्थना है कृष्ण भगवान से। मुरली मनोहर मुरारी से। नई सोच कार्यक्रम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। नई सोच रखना बहुत अच्छी बात होती है। कभी कभी कुछ यूं सोचना कि हमारे जीवन में बहुत कुछ व्यर्थ जा रहा है, ये हमारे जीवन को व्यर्थ बना ही देता है। बस आप अपने जीवन में अगर ऐसा महसूस करते हैं तो अपनी सोच को बदल डालिए, अपनी सोच को बहुत ही पॉजिटिव बना डालिए, पॉजिटिविटी की ओर ले चलिए अपनी सोच को और इस जहां में जिस तरह से आप प्रगति कर पाएं उसी राह पर सोचिए, उसी राह के बारे में सोचिए और बढ़ जाइए आगे। चलते चलिए और प्यार बांटते चलिए, अच्छी बातें बांटते चलिए, पॉजिटिविटी बांटते चलिए।

और चलिए जब ऊपर वाले का साथ हो अपने सर पे उनका हाथ हो तो हमें तो घबराने की ज़रूरत होती ही नहीं है। बस अपनी राह चुन लीजिए और अपनी राह पर चुनकर आप ज़रूर आगे बढ़ने की ठान लीजिए।

बहारें मिलती हैं हमें कभी खूब सी कभी थोड़ी सी, अगर आप अपनी बहारें बांटना शुरू कर दें तो जिस दिन आपको कम बहार मिलेगी या बहार नहीं मिलेगी उस दिन आपको औरों की तरफ से बांटा हुआ बहार, बांटी हुई बहार ज़रूर मिल जाएगी। इसलिए हम मिल बांट कर इन खुशियों को का आनंद लें, हम मिल बांट कर औरों को खुश कर दें और जीवन में बहुत सारा प्यार बहुत सारा आनंद पैदा कर

मुस्कुराहटें भी होती हैं बहुत खूबसूरत इन खूबसूरत मुस्कुराहटों को आप अपने तक ना रख लीजिएगा चलिए मिलकर ये मुस्कुराहट बांटते हैं मुस्कुराता हुआ हर चेहरा अगर आपको नज़र आएगा तो आपकी मुस्कुराहट बेशक 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी तो चलिए इस खुशी को इस मुस्कुराहट को हम अपने तक ना रखें औरों के साथ बांटकर इस जहां को मुस्कुराता हुआ बना डालें

जैसी करनी वैसी भरनी मूवी का ये गाना, आप कर्मयोगी मूवी का ये गाना जैसी करनी वैसी भरनी कहावत पर ज़रूर सुनिएगा। ये गाना हमारे कार्यक्रम नई सोच का अंतिम गाना है और इस गाने के बाद हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए दिलों की आवाज़।

0: दिलों की आवाज, की आवाज, की आवाज,
1: दिलों की आवाज कार्यक्रम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। हम हैं सुरेखा, आपका साथ दे रहे हैं और आपके दिल की आवाज़ सुनने को हैं बैठे तैयार हम। इनफैक्ट आज दिलों की आवाज़ कार्यक्रम में थोड़ी सी तब्दीली है, थोड़ा सा बदलाव है। आज दिलों की आवाज़ कार्यक्रम हम अभी से यानी कि 7 बजे से जो पेश करेंगे वो 8 बजे तक ही चलेगा, 9 बजे तक नहीं चलने वाला है ये प्रोग्राम। आज रात के 8 बजे से 12:30 बजे तक श्री श्री राधा गोलोकानंद मंदिर इस्कॉन फिनिक्स और श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर बोनाके से जन्माष्टमी के अवसर पर जन्माष्टमी उत्सव और पूजन का सीधा प्रसारण MBC 3 चैनल पर चलेगा और ये सीधा प्रसारण आप रेडियो मनोरंजन पर भी सुन पाएंगे, रेडियो मनोरंजन पर भी होगा। सो इस उत्सव का प्रसारण 8 बजे से शुरू होगा, इसलिए हमारा दिलों की आवाज़ कार्यक्रम 8 बजे तक ही चलेगा। तो हमारा आपका साथ अभी से 8 बजे तक है, तो बस चलिए आप अपनी पसंद के बारे में हमें बता दीजिए 5250-6200 पर मैसेजेस द्वारा और 4028070 पर कॉल्स द्वारा। तो चलिए ज़रा हम फिलहाल तो कृष्ण जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव है आज और श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव पर हर भक्त बहुत सारी खुशियाँ मना रहा है, पूजन उत्सव मना रहा है। और ऐसे में जहाँ पर कृष्ण जी की बात आती है वहाँ पर माखन चोरी की बात ना आए कैसे हो सकता है। चलिए ज़रा हम माखन चोरी की ये गाथा सुनते हैं, यशोदा मैया और कृष्ण जी के बीच की ये बात सुनते हैं, उनके बीच का ये वार्तालाप सुनते हैं।

क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए। कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे।

कृष्ण कन्हैया मदन मुरारी की का ये जो उत्सव चल रहा है, जन्माष्टमी का ये पर्व जो है, हम सभी हमारे सभी श्रोताओं के लिए मंगलमय रहे, ये हमारी प्रार्थना है कृष्ण जी से कि जिस तरह वे प्यार बांटते हैं हर तरफ, हमारे श्रोताओं के बीच में भी ढेर सारा प्यार ज़रूर बांटे और इस प्रेम इस भक्ति को वे स्वीकार करें जो हमारे श्रोतागण हमारे उनके भक्त उन्हें प्रदान कर रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हमारे दो श्रोताओं ने एक ही गाना मांगा है। इनफैक्ट सचिन जी ने पॉपलेमुस से इस गाने की फरमाइश की है कृष्ण जी को अपनी भक्ति अर्पण करते हुए, और इसी गाने की फरमाइश चांदनी पुरुषोत्तम जी ने की है ब्रितानिया से। उन्होंने ये गाना सभी कृष्ण भक्तों के लिए मांगा है और सभी को मंगल कामनाएँ दी है कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के लिए।

तो बस चलिए, कृष्ण जी का नाम लेता हुआ हर भक्त हमारे इस प्रोग्राम में भाग ले रहा है। इनफैक्ट आप इस प्रोग्राम में अपनी पसंद का गाना मांग सकते हैं। ये है दिलों की आवाज़ कार्यक्रम, और ऐसे में डिस्को डांसर मूवी का ये गाना हम पेश कर रहे हैं सूरज शर्मा सजादा जी की तरफ से, जो थ्रियोले के रहने वाले हैं, उनके बेटे निशाल के लिए, बीसीसर फैमिली

के लिए और हमारी पूरी टीम के लिए. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज शर्मा सजादा जी. विशेष तौर पर सूरज जी ये गाना नीतू शाह जी के नाम कर रहे हैं. और ऐसे में इस गाने में तो मांग है कृष्ण जी को इस संसार में आने की, धरती पर आने की. धरती पर तो आए श्री कृष्ण जी सबकी मांग पर, सबकी प्रार्थना पर. और धरती पर प्रेम का ये जो लेसन है, प्रेम की जो भाषा है, वो सिखाया जाते हैं हमारे श्री कृष्ण. मुरली मनोहर मुरारी.

तो यह है दिलों की आवाज़ कार्यक्रम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। जहां भी होंगे आप दिलों की आवाज़ में अपने दिल की आवाज़ ज़रूर मिला लीजिएगा। इस बार जो गाना हम पेश करेंगे वो होगा किंग अंकल मूवी से लिया गया और इस गाने की फरमाइश कनिष्का ने की है। कनिष्का जो रहती हैं पेचित रिविये, उन्होंने इस गाने की फरमाइश अपनी सखियों के लिए की है, विजेता राघव उनके दोस्त भी हैं इसमें, विजेता राघव पूनम और शांति के नाम उन्होंने ये गाना किया है। तो चलिए हम सुनते हैं, खुश रहने के लिए क्या क्या ज़रूरी है इस जहां में, खुशी क्या सिर्फ बाहर से मिलती है या खुशी हमारे अंदर छुपी हुई है। चलिए ज़रा सुनते हैं हम किंग अंकल मूवी का ये गाना नितिन मुकेश, विनोद राठौड़, साधना सरगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

और इस बार चलिए मच गया शोर जो सारी नगरी में है। इस गाने को सुनते हैं, खुददार मूवी से लिया गया, कान्हा जी के नाम से ही ये गाना है और इस गाने की फरमाइश सुरदेवी जी ने की है। वाकवा से सुरदेवी जी ने इस गाने की फरमाइश की है अपनी बहन ललिता कुशल जी के लिए और उनकी पूरी फैमिली के लिए थ्रियोले की, और साथ में उनकी दीदी सुनीता, दीदी शोभा, दीदी देवीना और माला हैं मालेगा से पूरे राम रतन परिवार के लिए और हमारे सभी श्रोताओं के लिए उन्होंने ये गाना मांगा है। सभी को मंगल कामनाएं भेजी है सुदेवी जी ने जन्माष्टमी की।

कृष्ण मुरलीधर की मुरली आप सबों के जीवन में मधुरता लाए, आपके आप सबों के जीवन को खूबसूरत लय प्रदान करे, ये हमारी प्रार्थना मुरली मनोहर त्रिपुरारी से। और ऐसे में हमारी आपकी ये जो मुलाकात हो रही है दिलों की आवाज़ कार्यक्रम, आपकी पसंद के गाने आप तक पहुंचा रहे हैं। और अभी फ्लिक ऑन फ्लैक से

अनीता जी ने मांगा है गाना, ये गाना सोनू निगम की आवाज़ में हम प्रस्तुत कर रहे हैं, नंदलाल के नाम करते हैं ये गाना। बड़ी देर भाई नंदलाला आपके इंतज़ार में, आपकी प्रतीक्षा में, और आज जन्माष्टमी आई है, जन्माष्टमी का उत्सव मनाने को हर भक्त अपनी तैयारी कर चुका है और मना रहा है ये पर्व। इसे पर्व सभी के लिए मंगलमय हो। अनीता जी की तरफ से फ्लिकॉफ्ला की अनीता जी ने हमारी पूरी टीम को, हमारे सभी श्रोताओं को और अपने सभी दोस्तों परिवारों को मंगल कामनाएं भेजी हैं जन्माष्टमी की।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज,
1: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज कार्यक्रम आज स्पेशली सिर्फ एक घंटे की होगी, यानी कि 8 बजे तक ही होगा ये प्रोग्राम। और ये इसलिए क्योंकि रात के 8 बजे से 12:30 बजे तक श्री श्री राधा गोलोकानंद मंदिर इस्कॉन फेनिक्स और श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर बोनाकेर से जन्माष्टमी के उत्सव और पूजन का सीधा प्रसारण होगा, जो टीवी के MBC 3 चैनल पर होगा। और यह सीधा प्रसारण रेडियो मनोरंजन पर भी चलेगा। आप

अवश्य सुनिएगा। चलिए इस बार हम पेश करते हैं वो गाना जिसकी फरमाइश प्रकाशवती जी ने की है और प्रकाशवती जी सुनना चाह रही है वृंदावन के कृष्ण कन्हैया के बारे में ये प्यारी प्यारी भक्तिमय बातें।

0: Continuous music. RM3. Continuous music.
1: बेशक RM3 पर आपका मनोरंजन कर रहे हैं हम दिलों की आवाज़ कार्यक्रम है ये और किशोर कुमार जी की आवाज़ का ये गाना हम पेश कर रहे हैं सुविता जी की तरफ से। सुविता जी जो रहती हैं प्लेन मान्यो, उन्होंने इस गाने की फरमाइश अपने भाई सचिन के लिए और बहन राधिका के लिए की है, माता पिता के लिए और दादी माँ के लिए की है।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: इस बार विवेक जी की पसंद का गाना हम पेश कर रहे हैं. मुकुल अग्रवाल की आवाज़ का ये गाना है नाराज़ मूवी का ये गीत. विवेक जी ने अपनी पत्नी शांति के नाम ये गाना किया है और अपनी बेटी आराध्या के नाम.

तो बस हमारा अंतिम गाना हम पेश करेंगे मधुश्री की आवाज़ में कान्हा के नाम, और कान्हा का ये गाना हम पेश करते हैं दागन जी के लिए, दागन श्वेता, रवीश, प्रिशा और लविशा के लिए, और साथ ही साथ उनकी तरफ से खुशनुआ के पूरे अपाडू परिवार के लिए। यही गीत हम सैफिया की संध्या जी के लिए पेश करते हैं और ब्रह्मस्थान की उषा जी के लिए प्रस्तुत करते हैं। तयोली की ललिता जी की तरफ से उनकी बहन ज्ञानी जी के नाम करते हैं ये गाना। ज्ञानी जी का जन्मदिन है और बहुत ही शुभ दिन पर उनका जन्मदिन पड़ा है इस साल। सो ज्ञानी जी को मंगल कामनाएं उनके पति मुनेश की तरफ से, बेटे कमलेश और बहू की तरफ से, बेटी दामाद की तरफ से। और यही गाना ललिता जी ने पूरे कुशल फैमिली के लिए मांगा है, बहन सुदेवी और देविना के लिए, छोटी जी, प्रभावती जी, हरीश जी और आत्माराम जी के लिए, और कुछ सुखलाल मौसी के लिए भी मांगा है। हम आपको याद दिला दें कि रात के 8 बजने वाले हैं, अभी 4 मिनट बाकी है 8 बजने में, और लगभग 8 बजे से 12:30 बजे तक श्री श्री राधा गोलोकानंद मंदिर इस्कॉन फिनिक्स और श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर बना कैसे जन्माष्टमी के उत्सव और पूजन का सीधा प्रसारण जो टीवी के एमबीसी स्वीट चैनल पर होगा, वही प्रसारण, वही सीधा प्रसारण रेडियो मनोरंजन पर भी चलेगा, आप अवश्य सुनिएगा।

0: रामा रामा रामा हरे हरे। आज तड़के सुबह से और रात्रि के इतने तड़के तक ही इसी मंत्र का जाप करते हुए आप सबको हम प्रस्तुत करते हैं मंगल कामनाएं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। जी हाँ, हमारा सीधा प्रसारण हो रहा है और इस समय हम श्री श्री राधा गोलोकानंदा इस्कॉन टेंपल फिनिक्स से हमें आप देख पा रहे हैं। जितने भी हमारे दर्शकगण टीवी के जरिए हमें देख रहे हैं, आप सबका हार्दिक अभिवादन। जी हाँ, इस वर्ष का जन्माष्टमी उत्सव इस्कॉन मॉरिशस के लिए विशेष गौरव और आनंद का अवसर है। इस वर्ष दो महत्वपूर्ण वर्षगांठों का भी स्मरण किया जा रहा है। इसी विषय में इस्कॉन मॉरिशस से माता रस अमृता हमारे साथ है, इनका हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, आप हमें बताएं कि इन दोनों ऐतिहासिक अवसरों का इस्कॉन मॉरिशस के लिए क्या महत्व रखता है और इनकी वजह से इस वर्ष के जो जन्मोत्सव समारोह है किस प्रकार और भी विशेष बनता जा रहा है। हरे कृष्णा।
1: Hare Krishna. So indeed, this year's celebration of Janmashtami is extra special for us because it commemorates two important milestones. The first one is the 60th anniversary of the incorporation of ISKCON worldwide by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. That was in 1966, and now 60 years afterwards, we have this international movement, worldwide movement around the world, where there are hundreds of temples. The Bhagavad Gita has been translated in so many different languages, making the message of the Bhagavad Gita accessible to one and all. What makes it even more special to us in Mauritius is that we are also celebrating the 50th anniversary of the visit of Srila Prabhupada to Mauritius. So now after 50 years, we have this vibrant community of devotees, temples in Mauritius, and then activities regularly happening like Harinam Sankirtan and book distribution and distribution of prasadam. So we feel very, very grateful to Srila Prabhupada. And on this day when we're celebrating Krishna Janmashtami, it's not only a remembrance of something that happened years ago, but it is a continuation of a celebration of the message of Krishna that has been brought to us by Srila Prabhupada. So on this day, it's also very important that we think about honoring this legacy that has been given to us and how to bring it into the future.
0: जी, आपने बताया कि इस्कॉन मॉरिशस के भविष्य की ओर बढ़ने की बात की है। जी हाँ, इसी संदर्भ में ये जो टेंपल ऑफ यूनिटी है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक परियोजना है, कृपया इस भव्य मंदिर की अवधारणा, इसके उद्देश्य के बारे में बताएं और इसके पीछे की सोच के बारे में बताएं। साथ ही ये मंदिर जो है इस्कॉन मॉरिशस के साथ साथ मॉरिशन समाज, जैसे कि आपने कहा, इसके लिए किस प्रकार से एकता जो आत्म और सद्भावना का प्रतीक बनते जा रहा है।
1: Those of you who have been around the Phoenix region recently, you would have seen the new temple that has been erected on Hare Krishna land here in Phoenix. Yes, it's going to be the new home for our deity, Sri Sri Radha Golokananda. But for us, it is so much more than just a new temple. The vision is that it's going to be a meeting place for people

हरे कृष्णा श्री श्री राधा गोलोक आनंद की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। सो व्हाट एन ऑस्पिशियस मोमेंट द चिल्ड्रन वर रिसाइटिंग दिस वर्सेस फ्रॉम द श्रीमद् भागवतम फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड एट द सेम टाइम देयर लॉर्डशिप श्री श्री राधा गोलोक आनंद अपीयर्ड। सो डियर डिवोटीज, डियर ऑडियंस, प्लीज जॉइन योर हैंड्स टुगेदर and clap a big hand of applause for the efforts of all these children of the Saturday Bhaktivedanta School. Hare Krishna. We hope that you enjoyed their drama and you leave those moments of Lord Krishna's pastimes, and we beg your blessings from the depth of your heart for these children to become pure devotees in the future. Hare Krishna!

0: सभी लोग बोलिए हरे कृष्णा
1: हरे कृष्णा।
0: कृपया करके दोनों हाथ खड़े कर लेंगे, जिनके पास दो हाथ हैं तीन हाथ वाले खड़े ना करें। कितने हाथ हैं आप लोगों के पास? दो हैं, तो दोनों हाथ ऊपर कर कर बोलेंगे हरे कृष्णा
1: हरे कृष्णा,
0: लाउडर हरे कृष्णा
1: हरे कृष्णा,
0: कृष्णा कृष्णा
1: कृष्णा कृष्णा,
0: हरे हरे
1: हरे हरे,
0: हरे राम
1: हरे राम
0: हरे राम
1: हरे राम
0: राम
1: राम राम
0: हरे हरे
1: हरे
0: हरे। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की, जन्माष्टमी महोत्सव की, नहीं बोलने वालों की हरे कृष्णा। तो कृपया करके दोनों हाथ से ताली बजाएंगे। क्या करेंगे दोनों हाथ से? हरि बोल हरि बोल हरि बोल। थोड़ा सा सुन लीजिएगा, थोड़ा सा सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा ताली कैसे बजते हैं। एक दो तीन, एक दो तीन, सभी लोग एक दो तीन, सभी लोग दोनों हाथ से लाउडर, क्वाइट गुड, सो नाइस ऑफ यू। सभी लोग ताली बजाएंगे, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन एक दो थ्री।
2: हरे कृष्ण
0: नमः।

0: आने की
1: जय।
0: कृपया करके दोनों हाथ खड़े करेंगे, जिनके पास दो हाथ हैं, तीन हाथ वाले खड़े ना करें, कृपया करके देख लीजिएगा। दोनों हाथ खड़े करके बोलेंगे हरे कृष्णा,
1: हरे कृष्णा,
0: जोर से हरे कृष्णा,
1: हरे कृष्णा,
0: कृष्णा कृष्णा,
1: कृष्णा कृष्णा,
0: हरे हरे
1: हरे

0: कृपा करके दोनों हाथ ऊपर, एकदम ऊपर, जिनके पास दो हाथ है एकदम ऊपर बोलिए, निताई गौर प्रेम नंदे,
1: निताई गौर प्रेम नंदे।
0: मैं बोलूंगा निताई गौर प्रेम नंदे, आप लोग क्या बोलेंगे? हरी हरी बोल। क्या बोलेंगे?
2: हरी हरी बोल।
0: आवाज नहीं आ रही है, क्या बोलेंगे?
3: हरी हरी बोल।
0: कुछ कुछ आवाज आ रही है, क्या बोलेंगे?
3: हरी हरी बोल।
0: दोनों हाथ ऊपर, निताई।

0: भगवान एंडे सोपली को प्लेजिए के लिए ना से बन देवो को जो अभी भगवान जो फैस श्रृंगार जो मेरे जोड़ी जोड़ी लैस अब एक जोड़ी बिजू अलो उसका जो विनय जो फैस दर्शन इसी जो ट्रोवे के कुमार ने देखो नो बन दे थी राइट अलो सासे दी vraiment वे भगवान बुकू बुकू प्लेजिए quand on habille ou décolle comme ça. J'expliquais, quand on prie Bhagwan, quand on fait ce puja, right, on gagne un ananda ou le cœur. Bhagwan, il besoin de vivre dans le cœur. Il besoin pour vivre dans le cœur, il faut dire qu'on a prême pour lui. Et prême, comment nous créer pour Bhagwan, c'est à travers, quand nous sentons ce nom, nous le cœur, il purifié. Et à travers ça, Bhagwan divini, il réside dans le cœur. Et quand il réside dans le cœur, nous vraiment nous changer, nous venons un bon humain. Okay. Alors ici, dans nos mouvements Phoenix, il y en a plusieurs activités qui nous font. Cette année-ci, nous célébrons 60 ans depuis le mouvement ISKCON qui a créé. Okay. Si la Prabhupada est allé en Amérique, et là-bas, il fait un corpo, l'International Society for Krishna Consciousness. Et cette année-là, nous faisons célébrer ça. En même temps, si la Prabhupada, depuis qu'il vient de Maurice, fait 50 ans. Ça aussi, nous célébrons depuis l'année dernière, nous pouvons encore célébrer. Et en même temps, nous avons dévot pour l'occasion de 60 ans.
1: तो प्यारे दर्शकों इस समय हमारा सीधा प्रसारण हो रहा है श्री श्री राधा गोलोकानंदा टेम्पल इस्कॉन फिनिक्स से, जहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जा रहा है। और जैसे कि आप सबको पता ही होता है कि ना सिर्फ इस्कॉन फिनिक्स बल्कि श्री कृष्ण बलराम टेम्पल इस्कॉन बोनाकोई से भी हमारा सीधा प्रसारण होने जा रहा है, जहाँ पर हमारी सहयोगी वेदिता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम रामा हरे हरे, हरे कृष्ण वेदिता।
2: हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। जी हाँ, आज हमारे लिए बहुत ही एक बड़ा दिन है। हम सभी मिलकर मना रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी। सबसे पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर, इस जन्माष्टमी पर हम आपको अपनी ढेरों शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जी हाँ, हमारे जितने भी दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं, हमारा कार्यक्रम इसका सीधा प्रसारण हो रहा है श्री कृष्ण बलराम मंदिर से, जो बोनाकोई में है। और अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभिषेक की तैयारी चल रही है और यहाँ पर पंडाल में अन्य कार्यक्रम हो रहे हैं। तो आप सबों का हम स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में, जो कि आप अभी लाइव देखेंगे, इसका सीधा प्रसारण देखेंगे। सीधे पंडाल से यहाँ पर चलते हैं पंडाल पे, जहाँ पर प्रभु अनंत कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा हम सुनेंगे प्रवचन।
3: ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो अश्यांतम न विदु सुरासुर गणा देवाय तस्मै नमः। सारे देवता लोग, शेष गणेश महेश सुरेश दिनेश, हूँ जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड यछेद य भेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, आगे क्या है जानती होगी, रघुनाथ की बहन जानती है, बहन हो ना रघुनाथ की, नहीं वैसे ही लगती है। मैं संजय रघुनाथ की बहन है, तो मैं बोल रहा था तो भी बोल रही थी, बहुत जानती है, विद्वान है भी। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तब पुनि पारन पावे। शेष गणेश महेश सुरेश दिनेश, हूँ जाई निरंतर गावे। भगवान आए हैं अनंत ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण, सारे देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। रमा शंभु ब्रह्मा अमर पति गणेशार्चित पदो, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमस्तस्तुवंति दिव्यै यस्तवई वेदै सांग पद क्रमो, साम वेद से यजुर्वेद ऋग्वेद, सुंदर सुंदर छंदों से श्लोकों से सारे देवता स्तुति कर रहे हैं गर्भ की। भगवान आए हैं, जहाँ भगवान आए तो वैकुंठ हो जाता है, देवकी वैकुंठ स्वरूपा हो गई, सर्वतीर्थमयी कृष्णमयी हो गई देवकी, इसलिए सारे देवता उसकी स्तुति कर रहे हैं गर्भ की। इसलिए मथुरा श्रेष्ठ

श्रेष्ठ है वैकुंठ से भी, कि भगवान जन्म लीला किए हैं, फिर गोकुल में बाल लीला किए, इसलिए भगवान का नाम, उनका स्वरूप, उनका कार्य सब कुछ दिव्य है। जन्म लिए तो साधारण जन्म नहीं लिए, चार भुजा में प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम, उनका मुखाम्बुज एकदम कमल जैसा। कमल तो बहुत तुच्छ वस्तु है, कमल से करोड़ों गुना ज़्यादा सुंदर उनके नेत्र भी कमल जैसा। भगवान के हर रंग की उपमा कमल से दी गई है, कमल मुख, कमल नयन, हस्त कमल, चरण कमल। कमल से तो करोड़ों गुना सुंदर हैं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कमल से उपमा दिया गया है। कमल तो मुरझा जाता है, सूख करके मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन भगवान का जो मुख कमल है, नेत्र कमल है, हस्त कमल है, उसकी शोभा रात दिन दूना रात चौगुनी बढ़ती है, बढ़ते रहता है। भगवान की शोभा निरंतर बढ़ती है, सौंदर्य सिंधु में हमेशा लहरें उठती हैं, हमेशा उसका सौंदर्य बढ़ता है। कोई कवियों ने कहा चंद्रमुख, भगवान का मुख चंद्रमा जैसा है, तो भी गलत है। चंद्रमा तो घटते रहता है, चंद्रमा घट जाता है, अमावस्या को अंधेरा हो जाता है, या दिन में चंद्रमा फीका हो जाता है। रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, लेकिन भगवान का जो चंद्रमुख है उसकी शोभा हमेशा बढ़ती है, कभी घटता नहीं है। चंद्रमा घटता है ना, घटते घटते घटते अमावस्या को बिल्कुल, या राहु केतु ग्रस्ते हैं, चंद्रमा पर भी ग्रहण लगता है, उसमें भी धब्बा है, लेकिन भगवान का जो मुख चंद्र है उसमें कोई भी धब्बा नहीं है, उसकी शोभा बढ़ते रहती है। रंग बाटे सांवरा मुकुट मोर माथ है, गले बन माल बा बसुरिया बीच हाथ है। रंग सांवला है, जैसे बादल है ना, ब्लैकिश क्लाउड या ब्लैकिश लोटस फ्लावर, नीलाम्बुज, नील अम्बुज के तरह उनका बॉडली कम्प्लेक्शन है। रंग बाटे सांवरा, और गले में कस्तुभ मणि है, कान में कुंडल है, किरीट कुंडलम, जो बैदुर मणि से डेकोरेटेड किया गया है, बैदुरी मणि जो गोलोक में वैकुंठ में पाया जाता है, बैदुरी मणि बहुत कीमती है और कहीं नहीं मिलता है, केवल वैकुंठ में। उनके कानों में कुंडल है, या और भी जो बाजूबंद है, कमर में करधनी है, पैर में नुपुर है, वो किरीट से बैदुर मणि से को कलई किया गया है, सुंदर है। ऐसे रूप को देखकर वसुदेव जी हर्षित हो गए, ऐसा सुंदर रूप, भगवान का रूप अद्भुत है। वसुदेव जी देखे जेल में, चार भुजा वाले, शंख चक्र गदा पद्म है, पीताम्बर है, येलो ड्रेस भगवान पहनते हैं, येलो गारमेंट्स, आ चार भुजा में चार आयुध है, शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है। असुरों के लिए गदा और चक्र लेते हैं, असुरों के लिए चक्र और गदा है, और भक्तों के लिए शंख और कमल है। शंख जो है मंगल का प्रतीक है, शंख बाजे बलाए भागे। असुरों को दमन करना है तो चक्र और गदा लेते। वसुदेव जी देखे, देवकी वसुदेव देखकर बड़े हर्षित हो गए। भगवान ने कहा कि आप भयभीत मत होइए, भगवान

उनको विश्वास दिलाए कि भय मत कीजिए, माने भगवान का अवतार हो गया है। देवकी वसुदेव चतुर्भुजी नारायण की उपासना करते थे, इसलिए उनके भय को दूर करने के लिए भगवान उसी रूप में प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में, उनको विश्वास हो जाए कि भगवान अवतार लिए हैं, अवतार लिए हैं नारायण, पृथ्वी के भार उतारन को। भगवान ने कहा कि पूर्व जन्म में आप लोगों ने तप किया था, कश्यप और पिशु सुतपा, पिशनी और सुतपा, पिशनी और सुतपा के रूप में आपने भारी तप किया था, मेरे जैसा पुत्र की कामना की थी। फिर कश्यप अदिति के रूप में आपने भारी तप किया था, कश्यप अदिति महातप किन्हा तिनका हमारे पूरा बर दिन्हा, मैंने पूर्व में बर दिया था, कश्यप अदिति भारी तप किए थे, तो भगवान उनका भी पुत्र बने उपेंद्र, बामन अवतार लिए। भाई इस बार मैं स्वयं आया हूँ, सडेश्वर परिपूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद भगवान स्वयं देवकी के सामने प्रकट हैं चार भुजाओं में। देवकी ने कहा कि बाल लीला कीजिए। कोई बालक जन्म लेता है तो चार भुजा में नहीं जन्म लेता है, द्विभुज रूप में आता, आप बाल लीला कीजिए तब न हम आपसे वात्सल्य का आस्वादन करेंगे। चार भुजा में कौन कहेगा कि ये आपका पुत्र है, आप बाल स्वरूप में हो जाएंगे। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, ये भगवान का बाल लीला है, जन्म लीला है, बहुत सुंदर है, सुख परम अनुप। देवकी के निवेदन पर भगवान बाल स्वरूप हो गए, द्विभुज श्याम सुंदर दो भुजा में हो गए, बाल स्वरूप में हो गए। भगवान ने वसुदेव कहा कि मुझे गोकुल पहुंचा दीजिए। भगवान जन्म लिए मथुरा में, गोकुल में पालन पोषण हुआ, जेल के सब दरवाजे खुल गए, जितने भी प्रहरी थे, जितने भी सैनिक थे, सब सो गए, वसुदेव के हाथ की बेड़ी, पैर की बेड़ी खुल गई, वातावरण बहुत शीतल, मन सुगंध हवा बह रही थी, वातावरण बहुत सुंदर था। वसुदेव लेकर चले गोद में कृष्ण को, गोकुल ले जाने। लोग गाना गाते हैं भोजपुरी में, वसुदेव लेके चल ले गोदी में ननमा, नंद के भवानमा, वसुदेव लेके चल ले गोदी में ललनमा, नंद के भवनमा। हमारे भोजपुरी में लोग आते हैं, वसुदेव लेके चल ले गोदी में ललनमा, नंद जी के भवनमा, रिम झिम बादल बरसे गर्जन ठहर ठहर के करते, वसुदेव लेके चल ले डगर में ललनमा, नंद जी के भवानमा। बादल रिम झिम बरस रहा था, गर्जन भी हो रहा था, और वसुदेव जी लेकर चले। वसुदेव जमुना तट पे आए, देखी मन में विस्मय भाए, जमुना उफन उफन के पकड़े ली चरणमा। जमुना जी भी भगवान की पटरानी है, भगवान को चुम्बन करना चाहती, उनके चरण को छूना चाहती थी। जमुना उफान बहुत बाढ़ आ गया था जमुना जी में, दोनों तट पर

पानी उफर रहा था, घुरमी थी, फेन इत्यादि था, भयंकर पानी बढ़ रहा था। वसुदेव जी कैसे जाएंगे, जैसे जमे तो और पानी बढ़ रहा है। तो भगवान ने अपना चरण रख दिया। बताइएगा टाइम 5 मिनट। भगवान ने अपना चरण जो है तो जमुना नीचे गई, जमुना जी फिर शांत हो गई, चरण छू करके शांत मार्ग दे दिया, जमुना ने मार्ग दे दिया। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जैसे भगवान राम को हिंद महासागर ने मार्ग दिया था लंका में जाने के लिए, भगवान श्री रामचंद्र जी लंका में जाना चाहते थे, हिंद महासागर ने मार्ग दिया। पहले मार्ग नहीं दे रहा था। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपत सिंधु किनारे, बिनय न मानत जड़त जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस बिन भय हो इन प्रीत। 3 दिन भगवान मर्यादा का पालन करते हुए विनय कर रहे थे कि रास्ता दे दो, प्लीज गिव मी वे, देन आई कैन गो टू लंका। लेकिन समुद्र नहीं सुन रहा था, भगवान प्रार्थना कर रहे थे कि हमको रास्ता दे दीजिए। तब भगवान थोड़ा गुस्सा किए, नकली गुस्सा किए, तो समुद्र उबलने लगा। बाद में उसने रास्ता दे दिया, समुद्र ने जैसे मार्ग दिया भगवान राम को, वैसे जमुना जी ने मार्ग दे दिया। वसुदेव जी गोकुल में गए तो सभी ग्वाले सो रहे थे, उधर मथुरा में भी सब सो रहे थे, इधर गोकुल में भी सब सो रहे थे। जशोदा को एक पुत्री हुई थी जोग माया, भगवान की बहन के रूप में। भगवान ने कहा था ना जोग माया को कि तुम हमारी बहन बनोगी, जशोदानंद पत्नी जशोदा की पुत्री बनोगी। सब सो रहे थे, वसुदेव जी जोग माया जो पुत्री बनी थी उसको लिए और अपने पुत्र को रख दिए। वापस आए, यथावत जेल के फाटक बंद हो गए, वैसे हाथ में बेड़ी हथकड़ी। कृष्ण इतने बड़े चमत्कार करते हैं। बाद में वो जोग माया जो पुत्री जशोदा की पुत्री हैं, कात्यायनी महामाये महाजोगिनी, उनका कई नामकरण भगवान पहले ही कर चुके हैं। जोग माया का नाम पहले ही दे चुके थे, वाराणसी में अन्नपूर्णा, ब्रज में कात्यायनी, मैहर में शारदा, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी, नारायणी, कुमदा, ईशानी, माया, चंडिका, अंबिका, भद्रकाली, दुर्गा, कपालिनी, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वाधा, कलकत्ता में महाकाली, मुंबई में मुंबा देवी, उड़ीसा में विजया, अहमदाबाद में भद्रकाली, अनेक नाम हैं दुर्गा जी के, अलग अलग जगहों में पूजी जाती हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया था और उनको अपना बहन भी बना दिया था। दुर्गा जी रोने लगी जोग माया, तो प्रहरियों ने कंस को सूचना दिया कि आपका 8वां गर्भ जो है जन्म ले लिया है, वो घड़ी आ गई जिसकी प्रतीक्षा है। प्रहरियों में होड़ लगी थी, मैं पहले सूचना दूंगा तो इनाम मिलेगा। जितने भी वॉचमैन थे सिक्योरिटी गार्ड से सब भागे कि कंस को हम पहले मैसेज देंगे तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा। कंपटीशन लगा भागने के लिए कि मैं पहले सूचना दे दूं कि हाँ हाँ जन्म ले लिया है, आपका बैरी जन्म ले चुका है। कंस आया, जेल में प्रवेश किया, देखा है तो पुत्री है, आकाशवाणी में पुत्र था कि 8वां पुत्र, तो पुत्री हो गई। सोचा चलो भगवान विष्णु बहुत मायावी हैं, रूप बदल लेते हैं। हिरण्याक्ष को मारना था तो बराह रूप ले लिए, हिरण्यकश्यपु को मारना था नरसिंह रूप ले लिए, बलि को छलना था तो वामन बन गए। भगवान भी बहुत रूप बदलते हैं, शायद लड़की रूप में आए होंगे कि शायद मैं नहीं मारूंगा, तो उस पुत्री को हाथ से लिया। देवकी की कीमत मार

स्त्री जाति की है, तुम्हारी पुत्र वधु बनेगी, पर को मत मारो। कि कंस क्रूर था, उस पुत्री को मारने के लिए चला तो छिटक गई, हाथ से छिटक गई, आकाश में दुर्गा के रूप में अष्टभुजी, जो आज भी बिंध बिंध वासिनी के रूप में पूजित हैं, उनका

0: दुर्गा जी हैं, अष्टभुजा में दुर्गा जी प्रकट हुई। चर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्य सुतान्वित। तो बड़ा विस्मय हो गया कि हमारी बहन देवकी ने दुर्गा को जन्म दिया है, दुर्गा की जननी है। एकदम देखा प्रकट आठ भुजाओं में दुर्गा जी को। दुर्गा जी ने कहा कि व्यर्थ बच्चों को मारते हो, तुम्हारा मारने वाला कहीं और प्रकट हो गया, पहली में बुझा दिया। दुर्गा जी ने यह नहीं बताया कि तुम्हारा मारने वाला गोकुल में वसुदेव जी रखे, नहीं, उन्होंने पहली बुझा दिया कि तुम्हारा मारने वाला कहीं और जन्म लिया है, क्यों व्यर्थ बच्चों को मारते हो। दुर्गा जी ने कहा तो कंस डर गया, और देवकी के प्रति और वसुदेव के प्रति बहुत श्रद्धा हो गया कि हमारी बहन तो दुर्गा की जननी है, दुर्गा को जन्म दी है। कंस दुर्गा का भक्त था, इसलिए बड़ा महत्व हो गया। देवकी वसुदेव को गया और क्षमा याचना किया, कहा कि हमसे भूल हो गई, देवताओं ने मुझसे गलत करा दिया है। मैं तो सोचा था कि देवता लोग सत्यवादी होते, लेकिन देवता लोग भी झूठ बोले, मेरा क्या दोष है। बहुत अनुनय विनय करके क्षमा याचना किया कि हमारा अपराध क्षमा कर दीजिए, मेरी बहन तुमने दुर्गा को जन्म दिया है। हाथ की बेड़ी हथकड़ी खोल दिया है, क्षमा याचना किया। देवकी वसुदेव क्षमा भी कर दिए। बहुत दिनहीन होकर के बात कर रहा था तो भगवान आए हैं, अनंत ब्रह्मांड के अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण चंद्र सर्वलोक कई महेश्वरम, सबके सुहृद हैं, सबके पालन करता हैं। आज उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं पूरे विश्व में। तो भगवान श्री कृष्ण से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हम सबकी मति अपने श्री चरण कमलों में बसाइए, और माया के संसार, माया के अथाह सागर से हमें अपने चरणों में स्थान प्रदान कर दीजिए, और सबकी मति भगवान में लगे, यही भगवान श्री कृष्ण से कामना है। और खूब हर्षोल्लास के साथ ऐसे ही खूब प्रचार हो, भगवान का जन्मोत्सव प्रति वर्ष हो, और सब लोग सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सभी सुखी हो, निरामय हो, सबका मंगल हो, किसी को कोई दुख न हो, सभी कृष्ण भावना भावित हो, यही भगवान श्री कृष्ण से कामना है। धन्यवाद। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की
1: जय।
0: कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की
1: जय।
0: शील प्रभुपाद की
1: जय।
0: कृष्ण बलराम की
1: जय।
0: ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो। शील प्रभुपाद की धन्यवाद।
1: परम पूजनीय अनंत कृष्णदास गोस्वामी महाराज की तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। महाराज को कृपया जोरदार ताली से, हम महाराज जी को हृदय से धन्यवाद करते हैं जो अमृत धारा
2: प्रश्नोत्तर। प्रिय दर्शकों, इस समय आप हमारा कार्यक्रम जो है इसका सीधा प्रसारण देख रहे हैं, और ये जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव है इसमें आप भी भाग ले रहे हैं, और ये सब हो रहा है हमारे MBC द्वारा जिसका सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। तो अभी आपने प्रवचन सुना प्रभु अनंत कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा, और इस प्रवचन के बाद अभी यहाँ के जो युवा हैं वो अभी आपके लिए कुछ भजन कीर्तन इत्यादि प्रस्तुत करेंगे।
1: क्योंकि प्रसारण हो रहा है पूरे मॉरिशस भर में, तो फिर से कृष्ण बलराम मंदिर की ओर से आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। आज के ये जो भव्य रूप से जन्माष्टमी मना रहे हैं पूरे मॉरिशस भर में, और एक बार फिर आपको याद दिला दें कि श्री कृष्ण बलराम मंदिर में हमने सभी युवा के लिए भी, बच्चे के लिए भी अन्य कार्यक्रम हमने तैयार किया है। यहाँ पर मेन पंडाल है जहाँ पर कार्यक्रम सांस्कृतिक चल रही हैं, और बगल में यूथ टेंट है, फिर किड्स कॉर्नर है, और एक जगह है जहाँ पर गौ माता की भी सेवा हो रही है, और फिर मंदिर है जहाँ पर कुछ धीमे धीमे कीर्तन चल रही हैं। तो हर प्रकार के व्यक्ति का हमने प्रयोजन किया है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं, पूरा मनोरंजन हमारे साथ तक रहिए है।

और तत्पश्चात हमारे मध्य में हमारे नौजवान लोग आप लोगों के सामने सुंदर सुंदर कीर्तन प्रस्तुत करेंगे, और वे लोग यहाँ पर हैं तो उनसे निवेदन करते हैं कि वो लोग आप लोगों के समक्ष सुंदर कीर्तन जो कि उन्होंने तैयार किया है विशेष रूप से इस जन्माष्टमी उत्सव के लिए वे लोग प्रस्तुत करें। तो एक जोरदार ताली से उनको स्वागत करते हैं। कृष्ण बलराम युवा कीर्तन पार्टी।

दर्शकों, इस समय श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर बनाके से यह कार्यक्रम जो है आप इसका सीधा प्रसारण देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आज हम मना रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी। और अभी मंदिर के अंदर आप देख रहे हैं कि अभिषेक किया जा रहा है, और जबकि पंडाल में अन्य कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और अभी अभी प्रभु ने बताया कि किस तरह से यहाँ पर युवाओं द्वारा एक कीर्तन जो है वो आयोजन किया गया है, जिसे हमें सुनने का भी अवसर प्राप्त होगा। और बच्चों के लिए भी यहाँ पेंटिंग हो रही हैं, बच्चे जो हैं यहाँ पर उनके लिए किड्स कोना है। और वहीं पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गौ माता की भी सेवा की जा रही है। तो जितने भी हमारे दर्शक इस समय हमारे साथ न होकर हमारे साथ हैं, उन सबों का हम स्वागत करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि हम इस समय हमारा कार्यक्रम जो है इसका सीधा प्रसारण हो रहा है बनाकेय के श्री श्री कृष्ण बलराम टेम्पल से। और आप देख रहे हैं कि इस समय यहाँ पे किस तरह से अभिषेक किया जा रहा है। तो भजन कीर्तन हम सुनेंगे, और यहाँ पर आपके लिए अन्य कार्यक्रम भी रखे गए हैं। यहाँ पर हम जो कृष्ण लीला हैं उस पर नृत्य भी होने वाले हैं, और कृष्ण लीला पर एक नाटक भी आप

0: हरे कृष्णा। तो जोरदार ताली से इनको धन्यवाद करते हैं हमारे कृष्ण बलराम मंदिर जी के युवा संस्था। और यदि ज्यादा सुनना चाहते हैं तो बगल में
1: हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी दुनिया भर में श्री कृष्ण के भक्त बड़े प्रेम से मनाते हैं और भव्य रूप से मंदिरों में इसे मनाई जाती है। श्री कृष्ण का जन्म भगवान विष्णु का अवतार है और श्री कृष्ण का संदेश संसार में धर्म के मार्ग पर चलने के लिए ही था। लेकिन श्री कृष्ण अपने बाल कथाओं के लिए भी काफी प्रसिद्ध हैं, चाहे वो पूतना का वध हो, गोवर्धन पर्वत हो अपनी उंगली पे उठाना, या तो फिर गोपियों के घर माखन चुराना और माखन चुरा कर खाने पर मैया यशोदा से झूठ बोलना हो, या कालिया नाग के फनों पे नृत्य करना। इनकी इतनी सारी कथाएं, इतनी सारी लीलाएं हैं और अगर हमें समय रहा तो हम ये कथाएं आप तक अवश्य पहुंचाएंगे। अभी फिर हम आपको बता दें कि हमारा ये जो प्रसारण है, सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर जो कि बनाके में है, तो इस मंदिर से जो सीधा प्रसारण है इस समय आप देख रहे हैं। तो पंडाल में यहाँ पर हमने आपको बताया कि पंडाल में यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस समय अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जो मंदिर है यहाँ पर श्री कृष्ण का श्रृंगार करेंगे थोड़ी देर में, और देख सकते हैं कि दरवाज़ा अभी बंद है लेकिन भक्तों की भीड़ अभी भी लगी हुई है। भक्त जो हैं यहाँ पर फूल लेकर आ रहे हैं, प्रसाद लेकर आ रहे हैं, फल लेकर आ रहे हैं। कुछ यहाँ पर सिर्फ दर्शन के लिए आते हैं और कुछ बस अपने मन की बात ईश्वर से कहने के लिए आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी मंदिर में भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया है और पंडाल में बहुत सारे भक्त इस समय बैठे हैं और ये जो पंडाल में कार्यक्रम हो रहा है इसका आनंद उठा रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, हम आपको ले चलते हैं पंडाल में और देखते हैं वहाँ पे जो अन्य कार्यक्रम है। तो अभी जैसे आपने कीर्तन सुना, अभी हम थोड़ी देर में एक नृत्य देखेंगे, श्री कृष्ण लीला जो यहाँ के जो गुरुकुल के बच्चे हैं वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में तो आप तो सबसे पहले जानते हैं कि ये हम सभी जानते हैं कि मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे और उनका विवाह भी करवा दिया। लेकिन जब भविष्यवाणी हुई और उनको पता चला कि देवी

उनकी यशोदा मैया के पास। और जिस दिन कृष्ण का जन्म हुआ उस रात एक दिव्य प्रकाश फैल गई थी। वैसे यमुना पार करते समय मौसम भी बहुत खराब था, जोरों की बारिश हो रही थी, पर प्रभु की लीला, शेषनाग उनको वर्षा से बचाते रहे और कान्हा अपनी लीलाएं रचता रहा और दुष्टों को एक के एक करके सबको सबका अंत करता रहा। तो देख सकते हैं आप, अभी भी मंदिरों में भीड़ लगी है। यहाँ पे जो भक्त हैं, कुछ भक्त यहाँ पर बैठकर भजन का आनंद ले रहे हैं और कुछ अभी भी प्रसाद चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। और हम जितने भी हमारे श्रोता इस समय, दर्शक हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो हम आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हैं।

आज के नाटक का शीर्षक है अजामिल उद्धार। यह श्रीमद् भागवतम से लिया गया एक पावन प्रसंग है।

0: कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री
1: प्रभुपाद की जय।
2: क्या हालत
1: से भी सलाह के

0: जरा इधर आओ, मुझे पानी दो। नारायण नारायण।
1: आया पिताजी, अभी आया।

0: अजामिल, तेरा समय समाप्त हुआ। पापी अधर्मी, चल हमारे साथ, नरक के द्वार तेरा इंतजार कर रहे हैं। जीवन भर तूने केवल वासना, चोरी और दुराचार किया है। अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ दिया, धर्म का त्याग कर दिया। आज यमराज का न्याय तुझे घसीट कर ले जाएगा।
1: नहीं, नहीं, तुम कौन हो? इतने भयानक रूप, तुम्हारी आंखें जैसे जलते अंगारे। मुझे बचो, मुझे बचाओ। नारायण, नारायण, बेटा ना।

0: रुक जाओ यम के दूतो, रुक जाओ। इस जीवात्मा को छूने का साहस भी मत करना।
1: तुम कौन हो? हमारे कार्य में बाधा डालने वाले दिव्य पुरुष, तुम कौन हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मृत्यु के समय केवल यमराज की आज्ञा चलती है? इस अजामिल ने जीवन भर केवल पाप किए हैं, इस पर केवल हमारा अधिकार है। इसे हटने को कहो, अन्यथा युद्ध होगा।
2: यमदूतों, तुम धर्म की व्याख्या अधूरी जानते हो। इस जीव ने अंत समय में परमपिता जगत ईश्वर साक्षात

0: नारायण का नाम पुकारा है। जिसने भगवान का नाम ले लिया वह समस्त पापों से मुक्त हो गया।
1: झूठ, बिल्कुल झूठ। यहां तो अपने बेटे को पुकार रहा था, ये नारायण इसका बेटा है, भगवान नहीं।
0: चाहे किसी भी भाव से, अनजाने में या किसी और को पुकारने के बहाने भी यदि मुख से नारायण निकल जाए तो वह नाम अपने प्रभाव से पापों का नाश कर देता है। जैसे अनजाने में भी आग को छूने से हाथ जल जाता है, वैसे ही नारायण नाम अजामिल के जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म कर चुका है। अब छोड़ो इसे। अब अजामिल हमारी छत्र छाया में है। हरि नाम का उच्चारण करने के कारण इसे अपने जीवन सुधार का एक दूसरा अवसर दिया जा रहा है। किसी भी परिस्थिति में मनुष्य यदि हरि नाम का उच्चारण करता है तो यमदूत उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है।

ये क्या हुआ? हमारे हाथों से शिकार निकल गया। चलो चलो स्वामी यमराज के पास चलते हैं। आज तो सृष्टि के नियम ही बदल गए।

0: धर्मराज दुहाई हो, न्याय कीजिए स्वामी। आज ब्रह्मांड में घोर अनर्थ हो गया है।
1: शांत हो जाओ यमदूतो, शांत हो जाओ, संयम रखो। बताओ यमलोक के इतिहास में ऐसा क्या अनर्थ हो गया जो तुम इतने विचलित हो?
0: हे प्रभु, हम आपकी आज्ञा से अजामिल नाम के एक महापापी के प्राण लेने मृत्युलोक गए थे। वह जीवन भर पाप की कीचड़ में रहा, लेकिन जैसे ही हमने उसे बांधा, वहां अत्यंत तेजस्वी दो पुरुष आधम के। हाँ स्वामी, उन्होंने हमें बलपूर्वक रोक दिया। हमने आपके दंड विधान की दुहाई दी, पर उन्होंने हमारी एक न सुनी और अजामिल को हमारे पाश से मुक्त करा लिया। स्वामी, क्या इस संसार में आपके न्याय से ऊपर कोई सत्ता है? क्या आपके नियम बदल गए हैं?
1: ओम नमो नारायणाय। हे यमदूतो, तुम लोग अज्ञानी हो, इसलिए ऐसा कह रहे हो। सुनो, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के केवल एक ही परम स्वामी है, भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण। मैं तो केवल उनके आदेश का पालन करने वाला एक सेवक हूं।
0: क्या ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी?

0: आप भी उनके अधीन हैं, तो फिर आपका दंड विधान किसके लिए है स्वामी?
1: मेरा दंड केवल उन लोगों के लिए है जो भगवान की भक्ति से विमुख है, लेकिन जो मनुष्य चाहे वह कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि अंत समय में या जीवन में कभी भी सच्चे मन से या अनजाने में भी प्रभु के नारायण नाम का, प्रभु के कृष्ण नाम का उच्चारण कर लेता है, तो वह मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है।
2: हे स्वामी, तो क्या केवल नाम लेने से ही सारे पाप धुल जाते हैं?
1: हां, नाम की महिमा अपरंपार है। सुनो और इसे गांठ बांध लो। संसार में जितने पाप करने की शक्ति मनुष्य में है, उससे हजार गुना अधिक पापों को नष्ट करने की शक्ति भगवान के
3: दर्शकों, इस समय आप एक नाटक देख रहे हैं और ये है।

0: तो प्यारे दर्शकगण, अभी आपने गोलोक आनंदा कलाकारों द्वारा एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति देखी, एक नाटक देखी। वैसे श्री कृष्ण जी के अवतार में प्रेम और नीति, कोमलता और वीरता, लीला और ज्ञान, मित्रता और दिव्यता सब एक साथ दिखाई देते हैं। वो सुदामा के सच्चे मित्र हैं, द्रौपदी के रक्षक भी हैं, अर्जुन के सारथी और भक्तों के लिए करुणा के सागर भी है। कृष्ण का नाम प्रेम है, कृष्ण की मुरली मधुरता, कृष्ण की गीता ज्ञान है, कृष्ण का जीवन धर्म और कृष्ण की भक्ति जीवन को अर्थ देने वाली दिव्य यात्रा है। इस समय हमारा सीधा प्रसारण हो रहा है श्री श्री राधा गोलोकानंदा टेम्पल इस्कॉन फेनिक्स से। अब इस्कॉन फेनिक्स में स्थित टेम्पल ऑफ यूनिटी प्रोजेक्ट जो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसकी एक प्रस्तुति आप देख पाएंगे और इसकी प्रस्तुति हिज ग्रेस रघुवर दास द्वारा की जाएगी।
1: मनमोहना मोरा कृष्णा

0: इस टेंपल ऑफ यूनिटी की सबसे बड़ी खास इसका यूनिटी मानी की एकता का संदेश है। ये एक ऐसा स्थान बनने की कल्पना है जहाँ व्यक्ति अपनी जाति, धर्म, भाषा या सामाजिक पहचान से परे एक मानव के रूप में शांति, प्रेम, आध्यात्म का अनुभव कर सके। मंदिर की ऑफिशियल विजन भी इसे मॉरिशस के सभी वर्गों और फेथ के लोगों के लिए डिवोशन, नॉलेज और पीस का केंद्र बताती है। आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, एक बार फिर आपको वापस ले चली श्री कृष्ण बलराम टेम्पल इस्कॉन बोनाकई की ओर।
1: हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से आप तमाम श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज पूरा विश्व में इस्कॉन संस्था के जरिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े पैमाने से मनाया जा रहा है और हर साल हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। बताया गया है कि भगवान इस संसार में अपने स्वइच्छा से प्रकट होते हैं और कारण जब जब अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म का नाश होता है, तब तब श्री कृष्ण इस संसार में आते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य है धर्म का स्थापना करना, भक्तों का पोषण करना और इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण इस संसार में आते हैं। बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण आज के तारीख में लोग श्री कृष्ण को ईश्वर मानते हैं और वास्तव में श्री कृष्ण ईश्वर है, परमात्मा है, परम ब्रह्म है। कहते हैं कि भगवान की व्याख्या इस प्रकार से शास्त्र बताते हैं कि ऐश्वर्यस्य सामग्रस्य वीर्यस्य यशासः श्रीय ज्ञान वैरक चैव सन्नम भाग इतिंगना। कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास 6 ऐश्वर्य होगा वही व्यक्ति भगवान कहलाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण उनका पहला ऐश्वर्य है धनवान। भगवान सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है। शास्त्र बताता है कि ईशवाशम इदम सर्वम यत किंचा जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भौमजिता मागृदः कश्यस्विदनम। इस संसार में हम लोग जन्म लेते हैं, खाली हाथ जन्म लेते हैं और खाली हाथ इस संसार से जाते हैं, लेकिन भगवान इस संसार में हम और आप जैसे जन्म नहीं लेते हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तत्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति सो अर्जुना। भगवान कहते हैं कि उनका जन्म, उनका कर्म पूरी तरह से दिव्य है और इस संसार के वो मालिक हैं। जब जब देखते हैं कि संसार में अधर्म बढ़ रहा है तो हम लोगों का ख्याल रखने के लिए प्रभु संसार में अवतरित होते हैं। तो भगवान जो है सबसे ऐश्वर्यशाली व्यक्ति है, 6 ऐश्वर्यशाली व्यक्ति हैं भगवान श्री कृष्ण। तो पहला ऐश्वर्य भगवान का है वेल्थ, मतलब भगवान सबसे वेल्दी व्यक्ति है, सबसे धनवान है। इस संसार उनका है, जो संसार हम लोगों को दिखाई नहीं भी दे रहा है वो भी वो संसार के मालिक है, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं भगवान। उदाहरण के तौर पे जब भगवान श्री कृष्ण संसार में थे तो वो द्वारकाधीश कहलाते थे। द्वारका में भगवान राजा थे और आप लोगों की जानकारी के लिए भगवान उन्होंने 16108 विवाह किए, 16108 विवाह मतलब 16108 पत्नी थे भगवान के। और साथ साथ सिर्फ पत्नी नहीं थे 16108 बल्कि उनके 16108 महल भी थे।

ये है भगवान की बरप्पन, भगवान की ऐश्वर्यता, उनकी विभूति। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने आप को 16108 रूप में विभाजित किया। ऐसा नहीं कि भगवान जब एक पत्नी के साथ थे तो दूसरे के पत्नी, मतलब अपने दूसरे पत्नी के साथ नहीं थे। भगवान एक पत्नी के साथ थे और 16107 पतियों के साथ उसी समय थे, अपने आप को उन्होंने विस्तार किया। तो ये साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। साधारण व्यक्ति जब एक पत्नी के साथ रहेगा तो दूसरे के साथ नहीं रह पाएगा, लेकिन भगवान 16108 पतियों के साथ उसी समय विराजमान थे। तो इसका मतलब होता है कि भगवान कृष्ण जो है स्वयं भगवान है, ये कोई साधारण व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। ये रहा भगवान का पहला विभूति। दूसरा विभूति, भगवान जो है वो रूपवान थे। रूपवान मतलब ब्यूटीफुल, भगवान सबसे सुंदर व्यक्ति है। हम लोग देख सकते हैं कि कृष्ण जब इस संसार में थे तो इतना सुंदर थे कि सिर्फ मनुष्य तो आकर्षित होते ही थे भगवान के प्रति, लेकिन साथ साथ पक्षियां और जो हिरण वृक्ष सब उनसे आकर्षित होते थे। भगवान का रूप अचिंत्य है, उनका रूप दिव्य है। और भगवान का जो रूप है वो अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम अध्यान पुराण पुरुषम नव यौवनम च। भगवान की खूबसूरती जो है वो घटता नहीं है, बल्कि धीरे धीरे प्रतिदिन बढ़ता जाता है। और हम इस संसार में, यदि इस संसार में हम लोग देखेंगे कि जो व्यक्ति आज खूबसूरत है, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो खूबसूरती जो है वो धीरे धीरे घटता चला जाता है, लेकिन भगवान की खूबसूरती बढ़ता जाता है। इसलिए इसको विभूति बताया गया है। भगवान जो है उनका पांच अंग ऐसा है जिसको कमल की तुलना किया जाता है। कमल पुष्प की जो पंखुड़ियां है ना, वो भगवान के अलग अलग अंग की मतलब बताया गया है। जैसे भगवान का जो नेत्र है वो कमल नयन है, भगवान का नेत्र कमल नयन, उनका जो नेत्र है वो कमल की पंखुड़ियां के जैसे हैं। भगवान के जो हाथ हैं वो भी कमल के जैसे हैं। भगवान के चरण है उसको भी कमल बताया गया है, चरणारविंद। भगवान का कमल भी चरण कमल से उनकी उपमा दी गई है। उनके नाभि भी कमल नाभि। इस तरीके से भगवान जो है बहुत ही सुंदर है। भगवान पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं और उनके जो सर हैं उनके सर में पगड़ी डाला जाता है, इतनी सुंदर से उनकी पगड़ी भगवान पहनते हैं। और उनके पगड़ी में एक मोर पंख होते हैं। भगवान का शरीर जो है ना वो तीन अंग से वो टेढ़े मेढ़े होते हैं। उनका गला जो है थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, उनका कमर थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, और उसका चरण जो है वो टेढ़े रहते हैं। तो इसको कहते हैं त्रिभंग रूप में भगवान जब दर्शन देते हैं तो इतना आकर्षित, इतना खूब सुंदर दिखते हैं कि देवी देवता लोग भी आकर्षित हो जाते हैं भगवान की सुंदरता से। तो ये रहा भगवान के दूसरा विभूति। और तीसरा विभूति है भगवान का, वो है यशवान। भगवान बहुत ही फेमस है, मतलब नामचीन है, लोकप्रिय है। और ऐसा नहीं है कि बस जब वो आए थे तब लोकप्रिय हुए, नहीं, भगवान पहले भी लोकप्रिय थे, आज भी भगवान लोकप्रिय है और आने वाले दिनों में भी लोकप्रिय रहता है। इस संसार में यदि हम लोग इस मॉरिशस में जी रहे हैं तो मॉरिशस आइलैंड में यदि कोई व्यक्ति नामचीन है, फेमस है, तो शायद दो चार अन्य देश में भी फेमस हो सकता है, लोग उसको जानते हैं, लेकिन पूरा दुनिया में उनको नहीं जान पाएंगे। और यदि जान पाएंगे भी तो लेकिन दूसरे लोक में उसको नहीं पहचानेंगे। लेकिन भगवान की लोकप्रियता इस संसार से लेकर के आध्यात्मिक संसार तक लोकप्रिय है। ये रहा भगवान का विभूति। और कहते हैं कि भगवान त्यागवान है। त्यागवान मतलब भगवान पूरी तरह से अपने जो विभूति से आकर्षित नहीं रहते, अटैचमेंट बिल्कुल नहीं है भगवान का। जैसे भगवान इस संसार में आए थे रामचंद्र, भगवान रामचंद्र के रूप में, तो जब उन्होंने उन ये संदेश मिला उनके माँ कैकेयी के द्वारा कि आपको 14 साल वन में जाना पड़ेगा, एक सन्यासी की तरह, एक त्यागी की तरह रहना पड़ेगा, तो भगवान उसको बहुत सहजता से उसको स्वीकार किया। मतलब भगवान पूरी तरह से त्यागवान है। एक बार एक व्यक्ति
मुझसे मिला था और मुझसे कह रहा था कि प्रभु जी आप त्यागी

हो, मतलब आप रिनाउंस हो। तो मैंने कहा ऐसा कोई खास नहीं है, जो जो मतलब जो बुरी आदत है उसको हम लोग त्याग दिए, जो नहीं खाना चाहिए वो उसको नहीं खा रहे हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो उसको नहीं पी रहा है, इस तरीके से हम लोग जो बैड हैबिट्स हैं उसको त्याग दिए, खास बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं खास तो है, इस संसार में रहते हुए यदि आप एंजॉय नहीं करोगे भौतिक संसार को तो आप डेफिनेटली आप त्यागी है। तो फिर मैंने कहा कि आप भगवान पर विश्वास करते हो? उन्होंने कहा मैं बिल्कुल भगवान पर विश्वास नहीं करता हूँ। तो फिर मैंने उस व्यक्ति को कहा तो आप महात्यागी हुए? तो उन्होंने कहा अरे कैसे प्रभु जी, हम थोड़ी महात्यागी हुए, आप सब कुछ त्यागे हैं। मैंने फिर उससे कहा कि देखो मैं छोटे छोटे चीज को त्यागा हूं, लेकिन आप तो भगवान को ही त्याग दिए, इसका मतलब आप महात्यागी हो। तो फिर उसको थोड़ा मतलब रियलाइजेशन हुआ कि बस भगवान की तरफ मोड़ना चाहिए। हम लोगों को इस तरह से महात्यागी नहीं बनना है, हम लोगों को बस भगवान के शरणागत होना है। आज के इस आधुनिक काल में जहाँ पर लोग नशा पान कर रहे हैं, ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो हम और आप सभी लोगों को मिल करके इस संसार को मतलब ऐसे डायरेक्शन में लाना चाहिए जो इस सब से हम लोग फिर इस बुरी आदतों से बच सकते हैं। अपने बच्चों को अच्छे आदत सिखाना चाहिए, खुद अच्छे आदत अपनाना चाहिए और बच्चों को अच्छा संग देना चाहिए। और ये मुमकिन कब होगा? जब हम सब लोग मिल करके सत्संग में आएंगे, गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, तब जा करके हम लोग अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे। तो भगवान का एक अन्य विभूति है जिसको कहते हैं नॉलेजेबल। भगवान पूरी तरह से ज्ञानवान भी है। ज्ञानवान मतलब देख सकते हैं कि इस संसार में यदि कोई व्यक्ति बोलता है, पढ़ता है, तो कितने साल लगता है उनको स्कूल जा करके, कॉलेज यूनिवर्सिटी जा करके, तब जा करके कुछ उसको ज्ञान मिलता है। लेकिन भगवान जब उन्होंने अर्जुन को शिक्षा दिया, भगवद गीता की शिक्षा, 20-25 मिनट में उन्होंने पूरा गीता अर्जुन को सुना दिया। साथ साथ कहते हैं कि भगवान अपना सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। जब भगवान इस संसार में थे तो जब उन्होंने कंस का वध कर दिया, तो कंस जब उसकी मृत्यु हो गई तो उनके दो पत्नी थी कंस का, एक नाम था अस्ति और दूसरे पत्नी का नाम था प्राप्ति। तो ये दो उनके दो पत्नी जो है ना अपने पिता के यहाँ चले गए। तो उसका पिता का नाम था जरासन। जरासन जब उसको पता चला कि कृष्ण नाम का एक व्यक्ति उनके मतलब उनके बेटी का हस्बैंड को मतलब उसके बेटी के पति को मार डाला, तो बहुत गुस्सा किए उन्होंने। एक तो वो राक्षस थे तो उन्होंने मथुरा में आक्रमण किया कृष्ण को मतलब खत्म करने के लिए, ये उद्देश्य से। लेकिन क्या हुआ, कृष्ण और बलराम ने जरासन की सभी सेनाओं को मार गिराया। कितने लाखों की संख्या में आए थे मथुरा में अटैक करने के लिए, लेकिन कृष्ण बलराम ने उनकी सब सेनाओं को मार गिराया और जरासन को ऐसे ही छोड़ दिया। फिर जरासन निराश होकर के फिर अपना देश वापस गया और फिर जितने भी राक्षस कोने कोने में गुफाओं में छुपे थे सबको उन्होंने एकत्र किया, फिर एक जूट बनाया, एक आंदोलन बनाया, एक टीम बनाया, फिर से दोबारा मथुरा में आक्रमण किया। इस बार भी भगवान ने उन राक्षसों को, उन सेनाओं को मार गिराया और जरासन को फिर छोड़ दिया। और इस तरीके से तीन बार, चौथे बार, पांचवे बार, छठे बार, ऐसे करते करते 17 बार भगवान ने जरासन की सेना को मार गिराया। इसका मतलब कि जरासन सभी राक्षसों को एकत्र करते थे, तो भगवान का उद्देश्य था कि राक्षसों को मारना, तो जरासन उसको हेल्प कर रहे थे। इस तरीके से भगवान इसीलिए जरासन को छोड़ते थे कि जरासन अभी जाएगा, जितने भी राक्षस इधर इधर छुपे हुए सबको एकत्र करके फिर कृष्ण के सामने लाता था और कृष्ण सबको मार गिराता था, सबका वध करता था। तो इस तरीके से भगवान ने अपना बुद्धि प्रयोग किया और जरासन का जितने भी मतलब सेना इत्यादि थे सबको डिफीट किया, सबको हरा दिया। तो भगवान जो है बहुत ही बुद्धिमान है, उनके जैसे बुद्धिमान, उनके जैसे नॉलेजेबल इस संसार में है ही नहीं।

इसको कहते हैं विभूति, इसको कहते हैं ऐश्वर्य। और कहते हैं कि भगवान का एक दूसरा गुण है, विभूति है, वो कहते हैं बलवान। भगवान रूपवान के साथ साथ, धनवान के साथ साथ, त्यागवान के साथ साथ बलवान भी थे। कहते हैं कि भगवान जब इस संसार में आए थे, जब अवतरित हुए थे, तो तकरीबन सिर्फ 6 दिन के थे, 6 महीने या 6 साल के नहीं, सिर्फ 6 दिन के थे प्रभु। एक राक्षस भेजे थे कंस ने, जिसका नाम था, उनका नाम था पूतना। 6 दिन के छोटा श्री कृष्ण पूतना को भी खत्म कर दिया, एक विकराल राक्षसी पूतना। भगवान जब 7 साल के थे, गोवर्धन पर्वत उठा लिए थे, 7 दिन 7 रात। आप यकीन नहीं करेंगे, 7 साल के लड़का गोवर्धन पर्वत उठा लिए थे। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, इसीलिए कहते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये बात हम लोगों को मानना चाहिए कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, एकल ईश्वर कृष्ण अर सब वृत्या। कहते हैं कि एक बार प्रभुपाद जी का एक शिष्य था, इसका नाम था यदुरानी, माताजी थी वो। तो उन्होंने, प्रभुपाद जी ने उनको कहा था कि देखो यदुरानी, तुम एक ऐसा चित्र बनाओ जिसमें भगवान कृष्ण एक पर्वत उठा रहे, मतलब गोवर्धन उठा रहे हैं। तो वो यदुरानी एक चित्रकार थी, उन्होंने फिर वो चित्र बनाया। लेकिन वो चित्र में क्या दिखाया कि भगवान का बड़े बड़े मसल है और पर्वत उठाए हुए हैं, और उसका मुंह, उसका जो चेहरा है थोड़ा गंभीर था। फिर प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं, भगवान जब गोवर्धन पर्वत उठाए तो वो मुस्कुरा रहे थे, ऐसा उसका मसल इत्यादि एकदम साधारण जैसे ही चित्र बनाओ कि मुस्कुरा रहे थे, 7 साल का लड़का दिख रहे थे। और इस तरीके से भगवान, मतलब कहने का मतलब है कि भगवान बिना कोशिश ताकत नहीं लगाते थे, साधारण तौर पे जितने भी कारनामा उन्होंने किए वो बहुत ही सरलता से किए। तो इसको कहते हैं कि भगवान जो है शत ऐश्वर्यशाली है। यदि भगवान को एक नाम दिया जाएगा तो वो नाम है श्री कृष्ण। कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षण, सर्व आकर्षण। इस संसार में हम लोग देखते हैं कि जो व्यक्ति सुंदर होता है लेकिन बलवान नहीं होता है, कभी कभी लोग सुंदर होते हैं, बलवान होते हैं, लेकिन धनवान नहीं होता है। लेकिन ये 6 ऐश्वर्य जो है परिपूर्णता से भगवान पर दिखते थे, इसीलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो चलो हम आप और आप मिल करके श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाए और अपने जीवन को सार्थक करें, क्योंकि यदि हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, तो हम लोगों का जन्म सार्थक हो जाता है। और कलयुग में भगवान श्री कृष्ण अपने नाम के रूप में अवतरित होते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। जो व्यक्ति इस महामंत्र का गान करता है, इस महामंत्र को गाता है, उसको मतलब साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो सकता है। और भगवान के नाम में और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कहते हैं कि इति शोदशकम नाम नाम कली कलम सनासनम, भगवान का नाम में इतनी पावरफुल है, इतनी मतलब भगवान के नाम इतनी शक्तिशाली है कि कली का जो कलमश है उसको विध्वंस कर सकता है, कली का जो कलमश है उसको विध्वंस कर सकता है भगवान श्री कृष्ण का नाम। इसलिए हम सब लोगों को ये हरे कृष्ण महामंत्र गाना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। इस तरीके से हम लोगों को सच्चा आनंद, सच्चा सुकून की प्राप्ति हो सकती है। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर विश्व में मनाया जा रहा है, जहाँ पर हमारे इस्कॉन सेंटर हैं सभी लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं और कृष्ण जन्माष्टमी में भाग ले रहे हैं और इस तरीके से अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। आप लोगों के ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।

दर्शकों, इस समय हमारा सीधा प्रसारण हो रहा है बनाक्या के श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर से, और हम सब मिलकर कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं एक साथ। और कृष्ण जन्माष्टमी पूरे मॉरिशस के मंदिरों में अभी श्री कृष्ण के नाम के साथ यहाँ पर सभी हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, इसी का जाप कर रहे हैं। मंदिरों में कीर्तन इत्यादि हो रही हैं, भजन गाए जा

और कृष्ण के नाम के साथ जुड़कर मन को प्रसन्न कर रहे हैं। और हम जब बात करते हैं श्री कृष्ण की, तो श्री कृष्ण कहते हैं किसी भी मनुष्य की परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं रहती। सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, ये सब जीवन के चरण हैं जो आते हैं और फिर चले जाते हैं। इसलिए जब समय अच्छा हो तो अहंकार मत करो, और जब बुरा हो हिम्मत मत हारो। जीवन एक चक्र है जो लगातार घूमता रहता है। धैर्य, विश्वास और सही कर्म करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति को पार कर लेता है। वैसे तो हम श्री कृष्ण से ये भी सीखते हैं कि समय चाहे जैसा भी हो, मन स्थिर रखो और अपने कर्तव्य से कभी पीछे मत हटो।

दर्शकगण, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पवित्र अवसर पर की जाने वाली एक अत्यंत भक्तिमय सेवा है कृष्ण अभिषेक। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति और राधा जी, उन पर पवित्र जल, दूध, दही, घी, शहद और अन्य द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है। इस पवित्र विधि को स्नान सेवा या अभिषेक सेवा भी कहा जाता है। वैसे अभिषेक का सबसे गहरा अर्थ केवल भगवान की मूर्ति को पवित्र द्रव्यों से स्नान कराना नहीं, बल्कि अपने मन को प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से पवित्र करना है। जब भक्त कृष्ण का अभिषेक में भाग लेता है तो उसके हृदय में वात्सल्य और भक्ति का भाव जागृत होता है, जैसे यशोदा मैया अपने बाल गोपाल को प्रेम से स्नान करा रही हो।

तो दर्शकों इस समय आप देख रहे हैं कि यहाँ मंदिर के अंदर श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर के अंदर जुमुना के में है, यहाँ पर भक्तों की भीड़ अभी भी लगी हुई है, सब कृष्ण का नाम ले रहे हैं और बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब दर्शन होंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं कि कैसे लोग ताली बजा रहे हैं, हरे कृष्ण गा रहे हैं और कृष्ण के नाम के साथ बस झूम रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर में आप देख पाएंगे बुनाके और फिनिक्स दोनों मंदिरों से अभिषेक, जो अभी थोड़ी देर में किया जाएगा, और फिर उसके बाद आरती कीर्तन दोनों मंदिरों से होगी, जिसका सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे। और फिर उसके बाद रात 12 बजे जब दरवाजे खुलेंगे तब आप श्री कृष्ण बलराम और श्री राधा कृष्ण के दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि दोनों मंदिरों से आप इस कार्यक्रम का प्रसारण देख रहे हैं। तो दोनों मंदिरों से आपको यहाँ पर राधा रानी, श्री कृष्ण और श्री कृष्ण बलराम के दर्शन होंगे। गुरु श्री प्रभुपाद की।

दर्शकों, कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जीवन कठिन नहीं, उसकी सोच कठिन होती है। इसलिए अपनी सोच पे ज़रा ध्यान दीजिएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। कभी कभी मनुष्य जो होता है इतनी गलत चीज़ें सोचने लगता है कि उसके जीवन में सब गलत होने लगता है। कृष्ण जी का संदेश यही है कि अपना मन साफ रखो और जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, अपनी सोच को कभी गलत मत होने देना। अच्छा सोचोगे तो जीवन में अच्छा ही होगा। जिस तरह से रणभूमि में जब अर्जुन युद्ध के लिए झिझक रहे थे, श्री कृष्ण ने उन्हें कहा था कि पार्थ, यदि पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो जाए तब भी अपने धर्म से पीछे मत हटना, क्योंकि सत्य की

0: भेड़ से नहीं धर्म से आती है।
1: हरे कृष्ण
2: हरे कृष्ण,
1: बोलिए हरे कृष्ण
2: हरे कृष्ण,
1: कृष्ण कृष्ण
2: कृष्ण कृष्ण,
1: हरे
2: हरे हरे,
1: सब लोग हाथ ऊपर कीजिए, हरे राम
2: हरे
1: राम राम
2: राम
1: हरे हरे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महा महामहोत्सव की जय।

0: लोग सभी लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हरे कृष्णा,
1: हरे कृष्णा।
0: आप लोग खड़े हो जाइए। और जाएगा मत नहीं, सिर्फ खड़े हो जाएं और जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही कीजिए। आप लोग दोनों हाथ ऊपर कीजिए, दोनों हाथ। यदि तीन हाथ हैं तो वो भी आप लोग खड़े कर सकते, कोई बात नहीं। दोनों हाथ ऊपर और मेरा जो पैर है ना, दाएं बाएं हो रहा है, लेफ्ट राइट। आप लोग भी कीजिए ये एक्सरसाइज। इसे करने से जितने भी परेशानियां हैं जीवन में, ग्रह इत्यादि है ना, सब चला जाता है। सभी लोग कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाते हैं, जो बूढ़े हैं वो जवान हो जाते हैं। सभी लोग

की भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आज की आनंद की वृंदावन धाम की निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। हरे कृष्णा।

हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आप सभी दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी के संदर्भ में एमबीसी की तरफ से शुभकामनाएं। तो प्रिय दर्शकों, अभी आप इस समय देख रहे हैं श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर जो बनाके से है, इसका सीधा प्रसारण। तो जितने भी हमारे कृष्ण भक्त हैं, आज के लिए उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। भव्य रूप से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है और हम आशा करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के चलते आपने वो पल जिए जो आप शायद अगर मंदिर के अंदर होते तो जीना चाहते। हमारी छोटी सी कोशिश की कि हम ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा पाए, जहां पर आपने देखा किस तरह से यहां पर भव्य रूप से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। भजन, कीर्तन, नृत्य, नाटक, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम थे जो आज इस कार्यक्रम में आपको हमने दिखाया। तो चलिए, इसी के साथ हम आपको कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर एमबीसी की तरफ से

श्री कृष्ण का अवतार हमें याद दिलाता है कि जब जब धर्म कमजोर पड़ता है और अधर्म का प्रभाव बढ़ता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में धर्म और सत्य की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। हेतु कृष्ण का संदेश केवल धर्म की विजय तक सीमित नहीं है,

पूरा जीवन प्रेम, करुणा, मित्रता, कर्तव्य, ज्ञान और समर्पण का अद्भुत संगम है दर्शकगण। जी हाँ, आपने हमें लाइव देखा, हमारा सीधा प्रसारण हुआ श्री कृष्ण बलराम टेम्पल इस्कॉन बोनाकॉय से और श्री श्री राधा गोलोकानंदा टेम्पल इस्कॉन फिनिक्स से। कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल शुभकामनाएं आप सभी को। बस इस जन्माष्टमी पर हम अपने हृदय को कृष्ण का मंदिर बनाएं, जहां प्रेम हो, भक्ति हो, सेवा हो, विनम्रता हो और सबके लिए मंगल की कामना हो। भगवान श्री कृष्ण हम सबके जीवन में शांति, प्रेम, आनंद और आध्यात्मिक प्रकाश भर दे। कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। हरे कृष्णा।

अभी आप सुन रहे थे आज का वो सीधा प्रसारण जो बहुत ही महान पर्व के लिए बना चल रहा था, श्री श्री राधा गोलोकानंद मंदिर, श्री श्री राधा गोलोकानंद मंदिर इस्कॉन फिनिक्स और श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर बुना के ऐसे जन्माष्टमी के उत्सव और पूजन का सीधा प्रसारण था। और यह प्रसारण यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोगों के जीवन में श्री कृष्ण आशीर्वाद के फूल बरसाते रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए हम आपको अब सुनवाते हैं रेडियो मॉरिशस पर चल रहे गानों का सिलसिला। और आप लोगों के जीवन में खुशियाँ रहे, श्री कृष्ण आप लोगों के जीवन को खुशियों से आनंद से भरते, ऐसी प्रार्थना करते हैं श्री कृष्ण जी से।

नंद के घर जन्मे नंदलाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: और सर्दी की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।